बोल जी वाहे गुरु, एक ओंकार। वाहे गुरु जी की फतेह। श्री भगौती जी सहाय वार। श्री भगौती जी के पातशाह दसवीं प्रथम भगौती समरका गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगद गौर ते अमरदास रामदास होई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आइया जस डठे सब दुख जाय। ते

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 meters ਯਾਨੀ 873 kilohertz ਤੇ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 6 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਮਾਚਾਰ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। ये कार्रवाई 18 सितंबर को हुए उरी आतंकी हमले के बाद की गई थी, जिसमें 18 भारतीय जवान शहीद हुए थे। इस कार्रवाई ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की सुरक्षा नीति में बदलाव को दर्शाया। इसके बाद वर्ष 2019 में बालाकोट और वर्ष 2025 में ऑपरेशन सिंदूर से भी पाकिस्तान पर कार्रवाई की गई। आकाशवाणी पर प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
2: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति अब आतंकवाद के प्रति कतई बर्दाश्त न करने की है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में रबी अभियान 2026 के लिए 2 दिन के राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में आगामी रबी सीजन की तैयारियों और कृषि क्षेत्र की प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी। मंत्रालय के अनुसार सम्मेलन में केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय तथा कृषि उत्पादन उत्पादकता और किसानों की आय बढ़ाने के लिए साझा रणनीति बनाने पर विचार किया जाएगा। मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत करेंगे। इसे देश में पशुधन बीमा सेवाओं के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच के रूप में काम करेगा। आज से शुरू होने वाली 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित हो गई है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBEA ने इसकी पुष्टि की है। ये फैसला भारतीय बैंक संघ IBA के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। AIBEA ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हड़ताल से जुड़े मुद्दों पर भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस UFBU के बीच हुई बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम में संशोधन किया है। इसमें दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तारीख अब 30 अक्टूबर होगी। नोटिस जारी करने और दावे आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया 30 नवंबर तक जारी रहेगी। अंतिम मतदाता सूची 4 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय आज केंद्र सरकार के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें 2000 रुपए से

0: अधिक के चुनिंदा यूपीआई मर्चेंट लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर लगाने का निर्णय लिया गया है। तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्ट इंडीज को 8 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। एशियाई खेलों में पुरुष क्रिकेट के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज भारत का सामना अफगानिस्तान से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 से खेला जाएगा। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में वर्तमान चैंपियन भारत प्रतियोगिता में सीधे क्वार्टर फाइनल में पहुंचा है और अपनी जीत का सिलसिला जारी रखने का लक्ष्य रखेगा। जापान एशियाई खेलों में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कल 4 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज से ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। ज्ञान अमृत
2: जन जने ता भगत जन कह दाता कह सूर नहीं तो जननी बाज रहे काहे गवावे नूर। उस परवरदिगार दे हुक्म नाल इंसान इस लोक विच माता दे उदर तों जन्म लेंदा है। इसी ही सिलसिले विच इस धरती ते गुरुआं पीरां शूरवीरां योध्यां ने जन्म लिया। उसकी रजा विच रहन वाले प्रभु प्यारे भगत देश भगत भी बन विचरे और अपने मकसद दे विच कामयाब हो गए। गुरुआं पीरां ते योध्यां दे जीवन तो प्रेरणा लेके ऐसी शख्सियत उसारी हो गई जो कि देश लई एक मिसाल बन विचरे। पूर्ण रूप च रब दी रजा विच रह के उसका उपासक उसकी भक्ति करन वाला भगत ही देश भगत बन निबड़ता है। ऐसे भगत ही चिंतक दार्शनिक ते शहीद हो निबड़ते ने। गल पावे देश लई आजाद होने वाले शहीद भगत सिंह हुरंद ही क्यों ना होवे। बहुआयामी शख्सियत दे स्वामी सन शहीद भगत सिंह। आपने अपने जीवन काल विच 70 दे करीब पुस्तकां पढ़ियां वाचियां और उस तो कुछ ना कुछ सिखिया। आजादी संग्राम दे दौरान अपनी सजा भुगतदे हुए भी उन्होंने 404 पन्नियां दा ग्रंथ ही लिख छड़िया जिस विचों उन्हां दी शख्सियत दी झलक भली भांत प्राप्त हुंदी है। देश लई शहीद हुंदियां जो उन्होंने नारे लगाए इनकलाब जिंदाबाद दे नारे दे विच भी एक संदेश लुप्त है कि असी देश नू आजाद करवाना है देश दी सेवा करनी है और असी देश दे विच समानता स्थापित करनी है। ऐसे देश भगतां नू ऐसे शूर वीरां नू प्रणाम है। इस धरती दी मिट्टी ते ही वेद रचे गए दर्शन दे पता नहीं किन्ने भेद रचे गए। इस धरती दे हर जर्रे ते बरसिया सी कुल इल्हाम राम रहीम गौतम बुद्ध नानक दी धरती ए राजगुरु सुखदेव भगत सिंह दी धरती ए अमर शहीदां दी धरती नू लख लख कोट कोट प्रणाम। अमर शहीदां दी धरती नू लख लख कोट कोट प्रणाम।
1: आओ सर्वन करदे हां भक्ति संगीत दा प्रोग्राम आराधना।

भरत के साथ आए अयोध्यावासी मंदाकिनी तट पर ठहरे हुए हैं। माताओं, गुरु तथा मंत्री से आज्ञा लेकर भरत निषाद राज और शत्रुघ्न के साथ श्री राम के आश्रम के समीप पहुंचते हैं। माता कैकेयी की करनी का ध्यान आते ही उनके मन में संकोच उत्पन्न होता है, किंतु श्री राम की सदाशयता और उदारता के प्रति वो उतने ही आश्वस्त हैं। आश्रम और प्रकृति की शोभा देख भरत के मन में वैसे ही आनंद का संचार होता है जैसे भूखे व्यक्ति को श्रेष्ठ भोजन प्राप्त करने पर होता है। रमणीय वन, सुहावनी पर्वत श्रृंखला, मुनियों के मनोरम निवास स्थान, वन प्रांतर के पशु पक्षी मन में एक सुखद साम्राज्य की कल्पना जगाते हैं। एक ऐसा परिवेश जहां केवल आनंद और मंगल की सृष्टि हो रही है। निषाद राज एक ऊंचे भूखंड पर चढ़कर भरत को श्री राम का आश्रम दिखाते हैं।

0: ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਰਾਤ 10:20 ਤੇ ਫਿਲਮ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਰਾਤ 10:30 ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਚਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਮਾਂ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ 6:55 ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਚ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣੋਗੇ।
1: ਸੰਪ੍ਰਤਿ ਵਾਰਤਾਃ ਸ੍ਰੂਯਂਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਚਕਃ ਪੁਨੀਤ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ। अथ वार्ताः। भारतम् अद्य सर्जिकल प्रहारस्य दशमीं वार्षिकीम् आमानयति। यः विश्वस्य समक्षं नरेन्द्र मोदी प्रशासनस्य उग्रवाद विरोधी नीतेः नवीनम् उदाहरणं प्रादर्शयत्। 16-2000 वर्षे सितंबर मासस्य 28-29 दिनांकयोः भारतीय सैन्य बलम् उरी प्रहारस्य प्रत्युत्तरे सति सीमा रेखां विलंघ्य आतंकवादी शिबिराणि व्यनाशयत्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी संप्राह यत् अस्य साहसिक प्रहारस्य संकल्पः एव बालाकोट वायु प्रहारस्य अथ सिंदूराभियानस्य आधारशिलां अरचयत्।
2: 10 वर्ष पहले 28-29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। सर्जिकल स्ट्राइक ने डंके की चोट पर पूरी दुनिया के सामने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया था। बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब्रवीत यत् शल्य प्रहारः दीर्घकालात् आतंकवादं प्रति भारतस्य निर्णायकं प्रत्युत्तरं आसीत्। सः 8-2000 वर्षस्य सितंबर मासे दिल्ल्यां संभूतान् श्रृंखलाबद्ध विस्फोटान् तथा मुंबय्याः 16-11 प्रहारं संस्मृत्य अवदत् यत् एतासु घटनासु बहुभिः निरपराधैः जनैः प्राणाः त्यक्ताः। प्रधानमंत्री स्पष्टं उक्तवान् यत् अधुना भारतम् आतंकवादस्य उपरि शून्य सहिष्णुता नीतिम् अनुसरति। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघः संप्राख्यापयत् यत् अद्यारभ्य त्रिदिनात्मकं राष्ट्रव्यापी बैंक कार्यस्थगनं स्थगितताम् अमुञ्चत्। भारतीय बैंकिंग संघेन सह संजातायां मंत्रणायां समयबद्धं च विचार्य संस्था निर्णयम् अगृह्णात्। सामाजिकान्तर्जालीये संदेशे संघः प्राह यत् वित्तीय विवादानां परिहारार्थं द्वयोः पक्षयोः सहमतिः अभवत्, अतः एतत् कार्यस्थगनं निरस्तम्। विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः अवोचत् यत् भारतं कनाडा देशश्च स्वीय द्विपक्षीय संबंधान् उच्चस्तरं नेतुं तत्परौ वर्तेते। असौ न्यूयॉर्क नगरे संयुक्त राष्ट्र महासभायाः प्रसंगे कनाडा देशस्य विदेश मंत्रिणा सह मिलितवान्। सामाजिक माध्यमेन संसूचयत् डॉक्टर जयशंकरः अवदत् यत् इयं मंत्रणा अतीव सफला आसीत्, उभौ देशौ च संबंधानां दृढ़ीकरणाय कार्यं कुरुतः। कृषि कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान अद्य नवदिल्ल्यां रवि अभियान 20-26 निमित्तं द्विदिवसीयं राष्ट्रीय कृषि सम्मेलनं समुद्घाटितवान्। कृषि मंत्रालयः प्राह यत् अस्य सम्मेलनस्य मुख्यं उद्देश्यं तावत् केन्द्र राज्ययोः पारस्परिकं समन्वयं विधाय कृषि उत्पादनस्य उत्पादकतायाः कृषकाणाम् आयस्य च संवर्धनार्थं एकां नीतिं रचयितुम् अस्ति। भारत निर्वाचन आयोगः दिल्ल्यां संप्रवर्तमानायाः विशेष गहन पुनरीक्षण योजनायाः काल विपर्ययम् अकरोत्। पुरुष क्रिकेट क्रीडायां विराट कोहली, शुभमन

0: इत्येतयोः भव्येन शतकेन गतरात्रौ तिरुवनन्तपुरमनगरे प्रथमायाम् एकदिवसीयक्रीडायां वेस्टइण्डीजदलं पराभूय भारतेन अष्टस्तोभैः विजयं समधिगतम् इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। इस वेले सवेर दे 7 बजे ने पेश ने हुण तक दियां मुख खबरां।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम विच सर्जिकल स्ट्राइक अते ऑपरेशन सिंदूर नू भारत दी दहशतगर्दी विरोधी नीति दी एक नवी मिसाल दसिया, कहा कि अग्गे भी दहशतगर्द हमलियां दा जोरदार जवाब दिता जावेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत किसी होर देश दे इलाके ते कब्जा करना नहीं चाहता, पर किसी खतरे की स्थिति विच अपनी सुरक्षा ते रणनीतिक खुद मुख्तियारी की राखी करेगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि तकनोलॉजी एक मेडिकल डॉक्टर दे मनुखी एहसास की थान नहीं ले सकती। देश अज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वरेगांठ मना रहा है। देश अज महान इनकलाबी शहीद आजम भगत सिंह का जन्म दिहाड़ा मना रहा है। इस मौके अज लुधियाणा विखे जश्ने इनकलाब होगा। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री शिवराज सिंह चौहान अज नवी दिल्ली विच दो रोज़ा राष्ट्रीय खेतीबाड़ी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। पशु पालन अते डेयरी विभाग अज नवी दिल्ली विच पशु धन बीमा पोर्टल की शुरुआत करेगा। ये पोर्टल हिंदी अते अंग्रेजी तो इलावा 11 खेतरी भाषावां विच उपलब्ध होगा। पंजाब सरकार वालों पट्टीदर जातां दी बहुगिनती वाले 3763 पिंडां नूं मॉडल पिंडां वजों विकसित करन लई एक पहलकदमी की शुरुआत। विकास कार्यां लई 201 करोड़ रुपए जारी। तरन तारण दे नौशहरा पन्नुआ विखे भलके 29 सितंबर नूं जिला पदरी किसान मेला लगाया जा रहा है। अते पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने जिला मोगा विखे तैनात SHO इंस्पैक्टर सुनीता बावा अते पंजाब होमगार्ड गुरअवतार सिंह नूं 50,000 रुपए रिश्वत लेंदियां रंगे हाथ काबू किया है। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 7:02 ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੋਹਣੀ ਸਵੇਰ।

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298

बस जी, फिर इस गीत तो बाद लता जी का ऐसा चंगा समा आया कि अज तक उन्हां दे सुर उन्हां दी आवाज समा बन रही है। लता जी की आवाज़ संगीत की पछाण है, भारत की पछाण है। भारत चीन की जंग साल 1962 विच हुई सी। इस जंग तो बाद 27 जनवरी 1963 विच दिल्ली के रामलीला मैदान विच एक प्रोग्राम हो रहा सी, जिथे लता मंगेशकर जी गा रहे सन। इस प्रोग्राम च उन्होंने ये गीत गाया सी।

0: हुणे तुसी सुन रहे सी प्रोग्राम सोनी स्वेर। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। इस वेले स्वेर दे 8 बज रहे ने। हुण तुसी सुनोगे समाचार प्रभात 8:15 मॉर्निंग न्यूज़ ते 8:30 खबरां पंजाबी विच।
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत की पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर

0: सर्जिकल स्ट्राइक की आज 10वीं वर्षगांठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत की आतंकवाद रोधी नीति का नया उदाहरण बताया। आज से प्रस्तावित 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा तैयार करने की परियोजना शुरू की। मौसम विभाग का आज उत्तराखंड, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में विराट कोहली और शुभमन गिल के शतक की बदौलत भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद ये कार्रवाई की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। वर्ष 2019 में बालाकोट और वर्ष 2025 में ऑपरेशन सिंदूर से भी पाकिस्तान पर कार्रवाई की गई थी। आकाशवाणी पर कल प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा और सुशासन के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये प्रयास लोगों के जीवन में बदलाव ला रहे हैं। आज हमारी विशेष श्रृंखला में बताएंगे कि इस सोच को लोथल स्थित राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर जैसी दूरदर्शी पहल के जरिए किस तरह साकार किया जा रहा है।
2: गुजरात के लोथल में प्राचीन हड़प्पा कालीन डॉकयार्ड के पास आकार ले रहा राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर भारत के 4,500 वर्षों से अधिक पुराने समृद्ध समुद्री इतिहास को प्रदर्शित करने वाला देश का पहला राष्ट्रीय संस्थान बन रहा है। 1230 करोड़ से अधिक की लागत से निर्मित हो रहे इसके प्रथम चरण का कार्य तीव्र गति से जारी है। वही इसके तहत 266 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक लाइट हाउस संग्रहालय भी बनाया जा रहा है। लोथल की ऐतिहासिक धरोहर को सजीव करने और इसके तकनीकी स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
1: लोथल में ये जो हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसको ऐसे बनाया जा रहा है कि भारत का सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी इस इतिहास को आसानी से जान सके। इसमें अति आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके बिल्कुल उसी युग को फिर से सजीव करने का प्रयास किया जा रहा है।
2: इस परियोजना के महत्व को रेखांकित करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा,
3: मैरीटाइम हेरिटेज की बात है तो हमारे पास इस सेक्टर का 5000 वर्ष का लंबा इतिहास और लोथल इसका एक जीवंत प्रतीक है। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से विश्व का सबसे बड़ा मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम इस लोथल में बनाने जा रहे हैं।
2: प्राचीन विरासत और अत्याधुनिक तकनीक के अद्भुत संगम के साथ लोथल का यह राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर भारत के गौरवशाली नौवन इतिहास का एक भव्य प्रतीक बन रहा है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: आज से प्रस्तावित 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित हो गई है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBEA ने इसकी पुष्टि की है। ये फैसला भारतीय बैंक संघ IBA के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। AIBEA ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हड़ताल से जुड़े मुद्दों पर भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बीच हुई बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम में संशोधन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए कल से 2 दिन तक दिल्ली के सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में विशेष शिविरों का एक और चरण आयोजित किया जाएगा।
4: दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का काम जारी है। निर्वाचन आयोग की संशोधित समय सारिणी के अनुसार दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम

0: तारीख अगले महीने की 30 तारीख है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार दावों और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया 30 नवंबर तक चलेगी और अंतिम मतदाता सूची अब 4 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। इससे पहले दिल्ली के सभी मतदान केंद्रों पर फॉर्म 6 के जरिए नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर लगाए गए थे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए कल और बुधवार को राजधानी के सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों एक बार फिर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है, हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
3: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा तैयार करने की परियोजना शुरू की है। इसके अंतर्गत एक साझा डिजिटल मंच पर पर्यटन से जुड़ी विभिन्न सेवाओं और सुविधाओं तक पहुंच मिल सकेगी। मंत्रालय ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC के साथ मिलकर नेशनल डिजिटल टूरिज्म स्टैक तैयार करने की पहल की है। पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल विश्व पर्यटन दिवस पर भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में इस परियोजना की शुरुआत की। पर्यटन सचिव भुवनेश कुमार ने कहा कि नेशनल डिजिटल टूरिज्म स्टैक की परिकल्पना एक टिकट एक पास की है, जिससे पूरे भारत को एक ही यात्रा अनुभव से जोड़ा जा सकेगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में रबी अभियान 2026 के लिए 2 दिन के राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में आगामी रबी सीजन की तैयारियों और कृषि क्षेत्र की प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी। मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत करेंगे। इसे देश में पशुधन बीमा सेवाओं के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच के रूप में काम करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजसेवी अशोक सिंघल को श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मोदी ने कहा कि अशोक सिंघल का जीवन इस विचार को दर्शाता है कि दूसरों के कल्याण के लिए काम करना व्यक्तिगत उपलब्धियों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कल से राष्ट्र अशोक सिंघल की जन्मशती मना रहा है। उन्होंने कहा कि अशोक सिंघल ने सामाजिक एकता और समानता को मजबूत करने के लिए काम किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज भारत रत्न लता मंगेशकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि लता मंगेशकर ने अपनी दिव्य गायन प्रतिभा से पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। देश आज शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती मना रहा है। भगत सिंह का जन्म वर्ष 1907 में आज ही के दिन पंजाब के तत्कालीन लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो पाकिस्तान में है। एक रिपोर्ट।
4: भगत सिंह का जन्म क्रांतिकारियों के परिवार में हुआ था। उन्होंने देश की आजादी के लिए खुद को कुर्बान करके अपने नाम को सार्थक किया। उनकी जयंती मनाने के लिए लुधियाना में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में जश्न ए इनकलाब नाम का एक राज्य स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। लोग उनके पैतृक गांव खटखट कला में इस महान सपूत को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंच रहे हैं। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जालंधर।
1: मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत के असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बिजली चमकने के साथ आंधी और तेज हवाएं चल सकती हैं। आज हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकल, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, ओडिशा और तेलंगाना में भी आंधी और बिजली के साथ वर्षा होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को बारिश और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य चलाने

0: निर्देश दिए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि खराब मौसम को देखते हुए कई जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद करने के निर्देश दिए गए हैं।
1: सीतापुर में सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गई हैं। इसके बाद लखीमपुर खीरी, बहराइच, बलरामपुर, अयोध्या और गोरखपुर में भी लोगों की मौतें हुई हैं। लगभग 1020 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। घाघरा और राप्ती नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हालात को देखते हुए अधिकारियों को प्रभावित लोगों को तत्काल राहत और सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग ने आज राज्य के पूर्वी और पश्चिमी जिलों के कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: और अब खेल खबरों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
2: तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। 296 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत ने 41 ओवर और 4 गेंद में 2 विकेट खोकर 300 रन बनाकर जीत हासिल की। विराट कोहली ने नाबाद 139 रन और कप्तान शुभमन गिल ने 110 रन बनाकर भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। ये विराट का एक दिवसीय क्रिकेट में 55वां शतक है। इसके साथ ही वो सचिन तेंदुलकर के बाद एक दिवसीय क्रिकेट में 15,000 रन पूरे करने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। भारत की ओर से कुलदीप यादव ने 4 विकेट लिए और उन्हें मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। अब बात एशियाई खेलों की। एशियाई खेलों के 9वें दिन आज पुरुष क्रिकेट के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में वर्तमान चैंपियन भारत का सामना अफगानिस्तान से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा। इसके अलावा मुक्केबाजी, एथलेटिक्स, निशानेबाजी और हॉकी में भी भारत अपनी चुनौती पेश करेगा। इससे पहले कल भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण, 16 रजत और 17 कांस्य सहित कुल 37 पदक लेकर 12वें स्थान पर है।
0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आयुष्मान भारत और हर नागरिक के लिए डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के संयुक्त सचिव किरण गोपाल वास्का शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विषय से संबंधित सवाल पूछ सकते हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
3: धन्यवाद विशाल। सर्जिकल स्ट्राइक के 10 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कड़ा संदेश हिंदुस्तान सहित कई अखबारों में है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सर्जिकल स्ट्राइक ने आतंक के खिलाफ भारत का संकल्प दर्शाया। आप शांति चाहते हैं तो युद्ध के लिए रहें तैयार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान दैनिक जागरण में है। रक्षा मंत्री ने एक कार्यक्रम में कहा, भारत किसी देश की भूमि नहीं मांगता और युद्ध भी नहीं चाहता, लेकिन किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रीय सुरक्षा पर कभी समझौता नहीं करेगा। साबरमती स्टेशन से दौड़ी देश की पहली LNG ट्रेन, गृह मंत्री अमित शाह ने झंडी दिखाकर किया रवाना। अमर उजाला के अनुसार LNG आधारित दोहरे ईंधन वाली तकनीक अपनाने के साथ भारत चुनिंदा देशों में शामिल। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को मिले स्थायी सीट, जर्मनी और जापान को नहीं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ के बयान को नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता दी है। पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में एक छात्रा के साथ कथित दुष्कर्म की खबर के बाद तोड़फोड़ और आगजनी को अखबारों ने सचित्र दिया है। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, रात भर प्रदर्शन के बाद केस दर्ज, SIT गठित, यूनिवर्सिटी ने बताया अफवाह।
0: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत की पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की आज 10वीं वर्षगांठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत की आतंकवाद रोधी नीति का नया उदाहरण बताया। आज से प्रस्तावित 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा तैयार करने की परियोजना शुरू की। मौसम विभाग का आज उत्तराखंड, दक्षिणांतरिक कर्नाटक और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में विराट कोहली और शुभमन गिल के शतक की बदौलत भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. India marks 10th anniversary.

नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं चंचल शर्मा। पहला बुलेटिन दियां खास खबरां। भारत वल्लों पाकिस्तान स्थित दहशतगर्दी टिका

0: प्रोग्राम चल रहा है जी महक पंजाब दी। प्रोग्राम च हुणे तुसीं सुनिया फिल्म गुड्डी चोलिया गीत, ते प्रोग्राम दे बाकी गीत तुहानू सुनवावांगे इस छोटे जे अंतराल तो बाद।
1: ए कस्टमर केयर किथे है? हाँ मैडम।
2: हाँ जी।
1: केवाईसी अपडेट ले मेनू वार वार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवावां ले।
1: ए कस्टमर केयर किथे है? हाँ मैडम।
2: हाँ जी।
1: केवाईसी अपडेट ले मेनू वार वार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवावां ले निर्धारित समय ते केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर होवेगा किवें?
2: जेकर पछाण जा पते विच कोई बदलाव नहीं है ता अपने बैंक जा एटीएम जा बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी कोल जाके जा बैंक नाल रजिस्टर्ड ईमेल जा मोबाइल नंबर राही जा मोबाइल बैंकिंग ऐप राही जा पत्र राही उसकी डिक्लेरेशन दियो।
1: अच्छा ते जेकर कोई बदलाव होंदा है ता
2: फिर पछाण अते पते दा नवीनतम सबूत दे के केवाईसी अपडेट करवा सकदे हो।
1: बस
2: बस
1: समझ गया।
2: अपना केवाईसी अपडेट करवाने लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत कैंप या बैंक शाखा ते जाओ।
3: आरबीआई कहता है
2: जानकार बनो सुचेत रहो।
4: जापान दे खेड मैदानां विच हुण गूंजेगा एशिया दा दम। खेडां दे सब तों वड्डे महाकुंभ एशियन खेडां दा रोमांच हुण आकाशवाणी जलंधर तुहाडे तक पहुंचाएगा। कौन रचेगा इतिहास? कौन चुम्मेगा जित दा सिखर? भारतीय खिडारी

0: ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਤ 8:30 ਵਜੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਮੇਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: हेलो,
4: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाए। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
5: अजिही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लिए रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
6: जापान के खेड मैदान हुण गूंजेगा एशिया का दम। खेडां दे सब तो वड्डे महाकुंभ एशियन खेडां दा रोमांच हुण आकाशवाणी जलंधर तुहाडे तक पहुंचाएगा। कौन रचेगा इतिहास, कौन चुमेगा जित दा सिखर, भारतीय खिडारी किन्ने मैडल करनगे अपने नाम, ये सब जानने लई सुनो जापान च हो रही एशियन खेडां दी रोजाना रेडियो रिपोर्ट 19 सितंबर तो 4 अक्टूबर तक रात 10:00 तो 10:20 तक आकाशवाणी जलंधर के वख-वख चैनल्स से, FM रेनबो, प्राइमरी चैनल, DRM ते DTH चैनल्स से। ये नाल नाल अपडेट्स जानोगे FM रेनबो चैनल से 20 सितंबर तो 3 अक्टूबर तक। एशियन खेडां दी पल पल दी खबर सिर्फ आकाशवाणी जलंधर से।
7: एक जरूरी सूचना, आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच पंजाब दे 10 जिलियां जलंधर, शहीद भगत सिंह नगर, मलेरकोटला, संगरूर, बरनाला, बठिंडा, मानसा, फिरोजपुर, मोगा अते फरीदकोट लई कॉन्ट्रैक्ट आधार ते पार्ट टाइम कोरेस्पोंडेंट्स दे अहुदे लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मंग कीती जांदी है। अर्जी फार्म लैण अते भेजण लई पता हैड आफ आफिस आकाशवाणी नेड़े BMC चौंक जलंधर ए। उम्मीदवार अर्जी फार्म समेत वधेरे जानकारी आकाशवाणी दी वैबसाइट www.newsonair.nic.in ते जाके वैकेंसी कॉलम तो भी डाउनलोड कर सकदे ने। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 7 अक्टूबर 2026 है। ध्यान रहे, ए कोई नियमित रोजगार नहीं है।
8: अंतराल तो बाद एक बार फिर तुहाड़े सारयां दा स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो रहा जी, हैलो फरमाइश। ते प्रोग्राम सुनन वाले सारे स्रोतियां नू तुहाड़ी होस्ट ते दोस्त देविका दी प्यार भरी नमस्कार। भई दोस्तों, तुहानू सारयां नू पता है कि इस प्रोग्राम विच तुसी सुनदे हो अपने पसंदीदा हिंदी फिल्मी गीत। ते इसलिए करना की है वह भी मैं तुहानू दस दिनी हाँ। भी तुसी चुकना है फोन ते मिलाना साडा नंबर। जी हाँ, साडा नंबर है 2342-1173। ते जिहड़े कॉलर सानू जलंधर तो बाहरों कॉल करनगे ना, वो जलंधर का एरिया कोड लगाना ना भुलन। जलंधर का एरिया कोड है जी 0181। ते दोस्तों, अज का जिहड़ा साडा प्रोग्राम है ना, अज का साडा प्रोग्राम आधारित है स्वर कोकला लता मंगेशकर दे उत्ते। ते अज दे प्रोग्राम विच तुहानू लता मंगेशकर जी दे गाए हुए गीत सुनवाए जाणगे। सो इंतज़ार किस गल दा, भई चुक लो फोन ते मिलाओ साडा नंबर ते पहुँचो साढ़े स्टूडियो। ते जो तक साढ़े को पहले कॉलर पहुँचते ने ना, आओ तुहानू सुनवाने लता मंगेशकर दा गाया फिल्म लम्हे चो लिया एक खूबसूरत गीत।

0: फिल्म लम्हे चो ले लता मंगेशकर दे गाए इस गीत तो बाद प्रोग्राम हैलो फरमाइश च साडे कोल अज दे पहले कॉलर भी आ पहुंचे ने। आओ जानदे आ कौन आए ने, कित्थों आए ने ते केड़ी फरमाइश लेके आए ने। हैलो
1: हैलो सत श्री अकाल भैन जी।
0: सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे ने ते कित्थों बोल रहे ने?
1: बलजीत सिंह पिंड बजीतपुर तो मां भैन जी।
0: बलजीत जी बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम विच, की हाल चाल ने?
1: ठीक है जी, धन्यवाद जी तुहाडा
0: जी। जी जी जी, अज फिर

0: फिल्म अभिमान दे इस गीत तो बाद प्रोग्राम हेलो फरमाइश च अगले कॉलर भी आ पहुंचे ने। आओ जानते हैं कौन आए ने ते कित्थों आए ने। हेलो
1: हेलो सत श्री अकाल मैडम जी।
0: सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे ने ते कित्थों बोल रहे ने?
1: मैं राजू बोल रहा जी, चंडीगढ़ तो।
0: राजू जी बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम विच, की हाल चाल ने?
1: बहुत वधिया ने, थोड़ा भी स्वागत है जी।
0: जी जी शुक्रिया जी। ते राजू जी अज तक प्रोग्राम ने शुरू शुरू च कॉल लग गई है ना? अपनी मर्जी का कोई भी गीत लगा दी है। देखो जी अज साडा जेड़ा प्रोग्राम है ना लता मंगेशकर जी दे आधारित है, ते तुहानू लता जी दा गाया फिल्म दिल तो पागल है चुलिया एक गीत सुनवा रहे हैं लता जी ते उदित नारायण दी आवाज़ां च। उम्मीद है तुहानू ये गीत पसंद आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी कॉल करने लई।
1: धन्यवाद जी, धन्यवाद।

प्रोग्राम हैलो फरमाइश च हुणे तुसी सुन रहे सी फिल्म लेकिन चुलिया गीत ते इस गीत तो बाद अगले कॉलर भी साडा नंबर 2443173 मिला के साडे कोल आ पहुंचे ने आओ जानते हैं कौन आए ने ते कित्थों आए ने हैलो सत श्री अकाल जी कौन बोल रहे ने ते कित्थों बोल रहे ने नाम दस दो सर कौन बोल रहे हो नहीं नहीं कौन सर अपना नाम तो दसो पहले कौन बोल रहे हो शिकायत हुंदी है सर कॉलर्स दी शिकायत हुंदी है जी साडी कॉल नहीं मिलदी है ना ते तुसी शिकायत करदे पे हो चलो आपां तुहाडी कोई शिकायत नहीं रहन देनी तुसी गाना दसो अज केड़ा सुनना चाहुंदे हो उम्मीद करदे आ कि जदों तुसीं अगली वारी कॉल करोगे ना तुहाडी कोई शिकायत नहीं रहेगी ते तुहाडी सारी शिकायतां जिहड़ियां ना दूर हो जाणगियां हुण अपना पसंदीदा गीत इंजॉय करो जी बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करन लई

0: ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1930 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਡਾਇਲ ਕਰੋ ਜਾਂ www.cybercrime.gov.in ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਓ।
1: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਲੋ ਫਰਮਾਇਸ਼, ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋਹਰਟਸ 'ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 11 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਮਾਚਾਰ।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद ये कार्रवाई की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। आकाशवाणी पर कल प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
3: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
2: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन एशियन अवसंरचना निवेश बैंक की 11वीं वार्षिक बैठक और निवेशक संवाद 2026 में भाग लेने के लिए कतर की राजधानी दोहा पहुंच गई हैं। इस वार्षिक बैठक में सदस्य प्रतिनिधिमंडल, नीति निर्माता और अन्य संबंधित पक्ष बैंक की रणनीतिक दिशा, संचालन प्राथमिकताओं और भविष्य के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने घोषणा की है कि आज से शुरू होने वाली 3 दिन की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित कर दी गई है। ये निर्णय भारतीय बैंक संघ के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। सोशल मीडिया पोस्ट में ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने कहा है कि ये निर्णय कल रात भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बीच हड़ताल से संबंधित मुद्दों पर हुई बैठक के बाद लिया गया। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम में संशोधन किया है। युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए कल से 2 दिन तक दिल्ली के सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षा संस्थानों में विशेष शिविरों का एक और चरण आयोजित किया जाएगा। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा तैयार करने की परियोजना शुरू की है। इसके अंतर्गत एक साझा डिजिटल मंच पर पर्यटन से जुड़ी विभिन्न सेवाओं और सुविधाओं तक पहुंच मिल सकेगी। मंत्रालय ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के साथ मिलकर नेशनल डिजिटल टूरिज्म स्टैक तैयार करने की पहल की है। मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत करेंगे। इसे देश में पशुधन बीमा सेवाओं के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम।

0: माना जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच के रूप में काम करेगा। देश आज शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए एक वीडियो साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि भगत सिंह ने कम उम्र में ही मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत रत्न लता मंगेशकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि लता मंगेशकर ने अपने दिव्य गायन प्रतिभा से पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित 46वें शतरंज ओलंपियाड में नोना ग्रैपिंटशिवाली ट्रॉफी बरकरार रखने पर भारतीय शतरंज खिलाड़ियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने खिलाड़ियों के जुनून और दृढ़ संकल्प की सराहना की। जापान के आइची नागोया में एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारत और अफगानिस्तान के बीच क्वार्टर फाइनल मैच खराब मौसम के कारण रद्द होने के कारण रैंकिंग के लिहाज से भारत को सेमीफाइनल में प्रवेश मिल गया है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला नेपाल और श्रीलंका के बीच होने वाले क्वार्टर फाइनल के विजेता से होगा। भारतीय शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज सुबह के सत्र में 1% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 730 अंक गिरकर 73,170 पर और निफ्टी 231 अंक गिरकर 22,909 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 864 किलोहर्ट्ज, एफएम 100.8 मेगाहर्ट्ज, एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज, एफएम 103.6 मेगाहर्ट्ज अते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। साडे स्रोते न्यूज़ ऑन एयर ऐप दे जरिए ते नाल दे नाल वेव्स ऐप दे जरिए आकाशवाणी जलंधर दे प्रोग्राम सुन सकदे ने। प्रोग्राम ਧਮਕ ਜਲੰਧਰ ਪੈਂਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੀਪਾਲੀ ਵਧਵਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਭਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਅਦਾਬ ਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।

प्रोग्राम धमक जलंधर पैंती और बड़ा ही खूबसूरत गीत असी सारिया ने सुन लिया। हुण तुहाडी फरमाइशां दी वारी, हुण उडीक हो रही होएगी कि सारिया नालों पहला बाजी किन्ने मारी। लो फिर नाम दस दिंदे हां, VPO मिड्डूखेड़ा डिस्ट्रिक्ट श्री मुक्तसर साहब तो कृष्ण कुमार, राम प्रताप, ज्योति, सुमन ते मनीषा, इन्हां लई ताड़ियां। और अगला सुनेहा साढ़े कोल पहुंचिया कृष्णा पार्क दिल्ली तो सुखिंदर सिंह जौड़ा, सीटी दीवाना ते गुरवंश सिंह जौड़ा दा, पिंड लूना म्याना तहसील पायल डिस्ट्रिक्ट लुधियाना तो दर्शन सिंह, अवतार सिंह, जबर जंग सिंह चीमा, मेहताब वीर सिंह रायपुर और इन्हों का सारा परिवार पूरे वेले सिर पहुँच गया जी। और अगले सुनेहे दे नाल मेन बाजार हठूर तहसील जगराउं जिला लुधियाना तो इकबाल सिंह हठूर, रजिंदर कौर इंजीनियर, अमनदीप सिंह, सिमरजीत कौर हठूर, बहुत बहुत शुक्रिया जी, क्योंकि सारियां नूं इंतजार हो रहा होंदा भी शायद साडा ही पहला सुनेहा जिहड़ा है वो आकाशवाणी दे वेड़े गया है। हमेशा अलग अलग नाम जिहड़े ने वो असी बोलते हाँ और कई बार हुंदा कि किसी स्रोते दा फिर द्वारा तो पहला जिहड़ा सुनेहा है वो पहुँच जाता है। अगले सुनेहे दे नाल पिंड शाहपुर महतपुर तो बूटा सिंह, विजयपाल सिंह, अजयपाल सिंह, पाहुलजोत सिंह, अनाहत कौर, लवप्रीत कौर, परविंदर कौर, हरप्रीत कौर ते गगनदीप सिंह, पिंड नथाणा बठिंडा तो हरजिंदर चिंदा, जसवीर जसी, सीता और गीता, इन्हों का सुनेहा मिल गया। हरीश सहगल खन्ना तो जगदीश सहगल, राज सहगल, पूजा पार्थ और सारा इन्हों का परिवार सहगल परिवार, पिंड साबुआना फाजिलका तो करण कंबोज, चरण रियांश, मानव अनुरीत कंबोज ते परीश कंबोज। अगली फरमाइश के नाल साढ़े तक

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: जापान दे खेड मैदानां विच हुण गूंजेगा एशिया दा दम। खेडां दे सब तों वड्डे महाकुंभ एशियन खेडां दा रोमांच हुण आकाशवाणी जलंधर तुहाडे तक पहुंचाएगा। कौन रचेगा इतिहास, कौन चुम्मेगा जित दा सिखर, भारतीय खिडारी किन्ने मैडल करनगे अपने नाम, ये सब जानने लई सुनो जापान च हो रही एशियन खेडां दी रोज़।

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ੀ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਧਮਕ ਜਲੰਧਰ ਪੈਂਦੀ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿਨ ਦੇ 12 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋ ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਅਰੋੜਾ। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद ये कार्रवाई की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
2: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक की 11वीं वार्षिक बैठक और निवेशक संवाद 2026 में भाग लेने के लिए कतर की राजधानी दोहा पहुंच गई हैं। इस वार्षिक बैठक में सदस्य प्रतिनिधिमंडल, नीति निर्माता और अन्य संबंधित पक्ष बैंक की रणनीतिक दिशा, संचालन प्राथमिकताओं और भविष्य के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने अमरीकी संसद की प्रतिनिधि सभा के विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष ब्रायन मास्ट के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल से मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों देशों के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विकास पर चर्चा हुई। इस दौरान रक्षा, औद्योगिक और तकनीकी सहयोग पर विशेष बल दिया गया। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम में संशोधन किया है। युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए कल से दो दिन तक दिल्ली के सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षा संस्थानों में विशेष शिविरों का एक और चरण आयोजित किया जाएगा। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा तैयार करने की परियोजना शुरू की है। इसके अंतर्गत एक साझा डिजिटल मंच पर पर्यटन से जुड़ी विभिन्न सेवाओं और सुविधा तक पहुंच मिल सकेगी। मंत्रालय ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के साथ मिलकर पर्यटन से जुड़ी सेवाओं और जानकारी के लिए एक साझा डिजिटल व्यवस्था, नेशनल डिजिटल टूरिज्म स्टैक तैयार करने की पहल की है। मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत करेंगे। इसे देश में पशुधन बीमा सेवाओं के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच के रूप में काम करेगा। देश आज शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि भगत सिंह ने कम उम्र में ही मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित 46वें शतरंज ओलंपियाड में नोना गाप्रदाश्वली ट्रॉफी जीतने पर भारतीय शतरंज खिलाड़ियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने

0: खिलाड़ियों के जुनून और दृढ़ संकल्प की सराहना की। जापान में आयोजित एशियाई खेलों 2026 में भारत की ईशा सिंह ने आज आईची नागोया में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीता। वहीं भारतीय एथलीट पिंकी बलहारा ने आईची नागोया में महिलाओं के अंडर 78 किलोग्राम कुराश स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया की लिम गरम को हराया। वहीं भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारत और अफगानिस्तान के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला खराब मौसम के कारण रद्द कर दिया गया था। गत चैंपियन भारत को आईसीसी T20 रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर होने के कारण सेमीफाइनल में जगह मिली है। सेमीफाइनल का मुकाबला भारत और नेपाल, कृपया दोबारा सुने, सेमीफाइनल में भारत का सामना नेपाल और श्रीलंका के बीच होने वाले क्वार्टर फाइनल के विजेता से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। पेश कर रहे हैं प्रोग्राम वस्ते विड़े।

0: भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद ये कार्रवाई की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक की 11वीं वार्षिक बैठक और निवेशक संवाद 2026 में भाग लेने के लिए कतर की राजधानी दोहा पहुंच गई हैं। इस वार्षिक बैठक में सदस्य प्रतिनिधिमंडल, नीति निर्माता और अन्य संबंधित पक्ष बैंक की रणनीतिक दिशा, संचालन प्राथमिकताओं और भविष्य के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने अमरीकी संसद की प्रतिनिधि सभा के विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष ब्रायन मास्ट के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल से मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों देशों के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विकास पर चर्चा हुई। इस दौरान रक्षा, औद्योगिक और तकनीकी सहयोग पर विशेष बल दिया गया। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज कहा कि देश में 100 करोड़ से अधिक लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा है। इसमें 60 करोड़ से अधिक नागरिकों के लिए 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, 25 करोड़ लोगों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम स्वास्थ्य सुरक्षा, 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त अनाज और किसानों तथा महिलाओं को वित्तीय सहायता शामिल है। वे नई दिल्ली में आयोजित औद्योगिक संबंध और श्रम तथा पुरस्कार संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत करेंगे। इसे देश में पशुधन बीमा सेवाओं के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में चलती बस में एक नाबालिग के साथ हुए कथित सामूहिक दुष्कर्म का आज स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा कि ऐसे मामले कानूनी व्यवस्था की विफलता को उजागर करते हैं। न्यायालय ने कहा कि अपर्याप्त रोशनी, खराब निगरानी और अन्य आवश्यक प्रशासनिक सुविधाओं के अभाव के कारण सार्वजनिक स्थानों को उच्च जोखिम वाले क्षेत्र बनने नहीं दिया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने 2000 रुपए से अधिक के लेन देन पर व्यक्ति से व्यापारी यूपीआई पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर लगाने के केंद्र के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये शुल्क अगले महीने की 15 तारीख से लागू होना है। 2000 रुपए से अधिक के यूपीआई भुगतान पर एमडीआर लगाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कहा कि ये मामला कानूनी से अधिक तकनीकी है। जापान में एशियाई खेलों में भारत की ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीत लिया है। वहीं भारतीय एथलीट पिंकी बलहारा ने महिलाओं के अंडर 78 किलोग्राम कुराश स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। महिला मुक्केबाजी में लवलीना बोरगोहाइन ने 75 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया की सियांग सियोन को हराकर पदक पक्का कर लिया है। उधर भारतीय क्रिकेट टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। एशियाई खेलों में भारत 4 स्वर्ण सहित कुल 39 पदकों के साथ तालिका में 12वें स्थान पर है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1.3% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 945 अंक गिरकर 72,952 पर और निफ्टी 299 अंक लुढ़क कर 22,842 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। आओ तुहानू जानकारी दे दईए अज रात तक प्रसारित किए जाण वाले प्रोग्राम ते उहनां दे प्रसारण समय दी। हुण तो थोड़ी देर बाद 1:10 ते तुसी प्रादेशिक खबरां सुणोगे। सवा 1 तो लैके 2:15 तक प्रोग्राम सुणोगे फौजी वीरां लई। इस विच खबरां अपने निर्धारित समय ते प्रसारित कीतियां जाणगियां। बाद दोपहर 2:30 रंगली धरती प्रोग्राम च अज तुसी बलजिंदर सिंह आजाद कविश्री ते साथियां वालों कविश्री सुणोगे। दूजी सभा च 4 दियां मुख खबरां तो बाद 4:02 ते हिंदी फिल्म संगीत सुणोगे सदा बहार नगमे। शाम 4:30 तुसी श्री दरबार साहिब अमृतसर तो शब्द कीर्तन का सीधा प्रसारण सरवण करोगे ते शाम 5:30 सरवण करोगे साडा रोजाना प्रोग्राम गुरबाणी विचार। देहाती प्रोग्राम का समा रहेगा शाम 6:30। अज इस विच काम दियां गल्लां, अज दे पा, आलुआं दा म्यारी बीज उत्पादन, इस बारे जानकारी देंगे डॉक्टर सुखविंदर सिंह। हलका तो बचा, इस बारे जानकारी देंगे डॉक्टर चरण कवल सिंह। इस तो इलावा कल दे प्रोग्राम मौसम दा हाल ते गीत संगीत भी सुनाया जाएगा। 7:10 ते साडे दिल्ली केंद्र तो सुनोगे जन सेवा से देश सेवा। 7:45 का समा रहेगा विविधा का। अज इस विच तुसी व्यंग्य वार्ता सुनोगे अब दिल भी प्रदूषित होने लगा है। वार्ताकार होंगे प्रेम विज। इस तो बाद चंद गजलां समात फरमाओगे। रात 8 तुसी हिंदी गीत सुनोगे ते 8:10 ते जन सेवा तो देश सेवा तक। इसका विषय होएगा खेल महाकुंभ तो खेलो इंडिया। 8:30 पंजाबी च खबरां सुनोगे। 8:40 ते पंजाबी गीतां दा लुत्फ उठाओगे। साढ़े दिल्ली केंद्र तो तुसी सुनोगे 8:45 ते समाचार संध्या, 9 न्यूज एट 9, 9:15 स्पॉटलाइट ते रात 9:30 आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो पंजाबी नाटक सुनोगे उडीक। 10 साढ़े दिल्ली केंद्र तो 20 एशियन खेडा दियां मुख झलकियां सुन सकोगे। आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो 10:20 ते फिल्म म्यूजिक लुत्फ उठाओगे। मुशायरा समात फरमाओगे रात 10:30। शोरा हजरात मोहम्मद मुअज्जम सैफी, हमजा बिलाल, मोहम्मद मुकर्रम सैफी ते डॉक्टर संदीप कुमार होंगे। इस तो इलावा खबरां आपो अपने समय मुताबक प्रसारित कीतियां जाणगियां। डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दे जरिए दिने 3 तुसी सुनोगे प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां ते रात 11:10 दा समा रहेगा सौगात दा। इस सन अज रात तक प्रसारित कीते जाण वाले प्रोग्राम ते उहनां दा प्रसारण समा। असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हां। दोपहर दे 1:10 होण जा रहे ने। कुछ ही पलां च तुसी सुनोगे प्रादेशिक खबरां।

0: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
1: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
0: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
1: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू एचआईवी दा वी खतरा हो सकदा है।
2: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा वी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर एचआईवी होण दा शक है ता सरकारी हॉस्पिटल विच एचआईवी दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जन हित विच जारी।
3: वही मोनू, तू आजकल सोशल मीडिया ते बहुत स्टोरियां स्टेटस ते ज्ञान वंडदा।
1: ओ मैं ता समझदारी बहुत आ, बस कदे मान जा नहीं कीता।
3: अच्छा, फिर एक गल दा जवाब दे, एचआईवी किवें फैलदा है?
1: एचआईवी
3: नहीं पता ना समझदार वीरे, ता सुन, एचआईवी किवें संक्रमित सुई सिरिंज सांझा करन नाल संक्रमित व्यक्ति दे नाल असुरक्षित यौन संबंध बनाउण नाल संक्रमित खून जां खून दे उत्पादां दी वरतों नाल संक्रमित गर्भवती मां तों उस दे होण वाले बच्चे नूं एचआईवी दी बीमारी हो सकदी है।
2: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: जापान दे खेड मैदानां विच हुण गूंजेगा एशिया दा दम। खेडां दे सब तों वड्डे महाकुंभ एशियन खेडां दा रोमांच हुण आकाशवाणी जलंधर तुहाडे तक पहुंचाएगा। कौन रचेगा इतिहास, कौन चुम्मेगा जित दा सिखर, भारतीय खिडारी किन्ने मैडल करनगे अपने नाम, ये सब जानण लई सुणो जापान च हो रही एशियन खेडां दी रोजाना रेडियो रिपोर्ट 19 सितंबर तों 4 अक्टूबर तक रात 10 बजे तों 10:20 तक आकाशवाणी जलंधर के वक् वक् चैनल्स से, FM रेनबो, प्राइमरी चैनल, DRM ते DTH चैनल्स से। ये नाल नाल अपडेट्स जानोगे FM रेनबो चैनल से 20 सितंबर तो 3 अक्टूबर।

0: एक जरूरी सूचना, आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच पंजाब दे 10 जिलों जलंधर, शहीद भगत सिंह नगर, मलेरकोटला, संगरूर, बरनाला, बठिंडा, मानसा, फिरोजपुर, मोगा अते फरीदकोट लई कॉन्ट्रैक्ट आधार ते पार्ट टाइम कोरेस्पोंडेंट्स दे अहुदे लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मंग कीती जांदी है। अर्जी फार्म लैण अते भेजण लई पता हेड ऑफ ऑफिस आकाशवाणी नेड़े बीएमसी चौंक जलंधर ए। उम्मीदवार अर्जी फार्म समेत वधेरे जानकारी आकाशवाणी दी वैबसाइट www.newsonair.nic.in ते जाके वैकेंसी कॉलम तो भी डाउनलोड कर सकदे ने। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 7 अक्टूबर 2026 है। ध्यान रहे, ए कोई नियमित रोजगार नहीं है।
1: फौजी वीरो, प्रोग्राम च पद्मावत फिल्म दा गीत तुहाड़े नज़र कर रही हां। आवाज़ नीति मोहन दी, गीतकार सिद्धार्थ गरिमा ते संगीतकार ने संजय लीला भंसाली।

0: एशियाई खेलों में आज खवातीन के 25 मीटर पिस्टल मुकाबले और अंडर 78 कुराश मुकाबले में भारत ने चांदी और कांसे के तमगे जीते हैं। अब खबरें तफसील से। सुप्रीम कोर्ट ने 2000 रुपए से ज्यादा के पर्सन टू मर्चेंट यानी बाज यूपीआई लेन देन पर MDR यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट नाफिज करने के मरकजी सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इन चार्जेस का इतलाक अगले महीने की 15 तारीख से होना है। 2000 रुपए से ज्यादा की यूपीआई अदायगी पर MDR नाफिज किए जाने को चैलेंज करने से मुतालिक एक दरख्वास्त की समाअत करते हुए अदालत आलिया ने कहा कि मामला कानूनी एतबार से कम लेकिन तकनीकी लिहाज से ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज और दीगर मुतालिका फरीकों को हिदायत दी है कि वो 4 हफ्ते के अंदर अंदर अपने जवाबी हलफनामे दाखिल करें। बैंक यूनियनों के यूनाइटेड फोरम ने ऐलान किया है कि बैंकों की मुजवजा 3 रोजा मुल्कगीर हड़ताल जो आज से शुरू होना थी मुलतवी कर दी गई है। भारतीय बैंकों की एसोसिएशन IBA के साथ समझौता होने के बाद इस सिलसिले में फैसला किया गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर ऑल इंडिया बैंक मुलाजमीन एसोसिएशन ने कहा है कि यह फैसला कल रात भारतीय बैंकों की एसोसिएशन और 7 बैंक यूनियनों के मुत्तहदा फोरम के दरमियान हड़ताल से मुतालिक मामलात पर मीटिंग के बाद किया गया। इससे कबल बैंक यूनियनों के मुत्तहदा फोरम और सरकारी मिल्कियत के बैंकों की बाज दीगर यूनियनों और अंजुमनों ने 28 से 30 सितंबर तक पूरे मुल्क में 3 दिन की हड़ताल का नारा दिया था। पाकिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर भारत की सर्जिकल स्ट्राइक्स को आज 10 साल मुकम्मल हो रहे हैं, जिससे दुनिया के सामने दहशतगर्दी से निमटने की नरेंद्र मोदी सरकार की पॉलिसी की एक नई मिसाल कायम हुई थी। साल 2016 में 28 और 29 सितंबर को भारतीय फौज ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के इलाके में कंट्रोल लाइन के उस पार दहशतगर्दों के लॉन्च पैड्स को निशाना बनाते हुए सर्जिकल स्ट्राइक्स की थीं। उरी में दहशतगर्दाना हमले के तनाजुर में बराह रास्त और फैसला कुन फौजी कार्रवाई के तहत यह ऑपरेशन अंजाम दिया गया था। उरी के हमले में 19 भारतीय फौजियों की जान गई थी। कल आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दहशतगर्दों के ठिकानों के खिलाफ 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक को एक तारीखी संग मील करार दिया। जनाब मोदी ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक से कंट्रोल लाइन के उस पार कार्रवाई अंजाम देने में भारतीय फौज का रोल उजागर हुआ।
1: 10 वर्ष पहले 28-29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। LOC के उस पार जाकर हमारे वीर जवानों ने जिस तरह आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की थी वो देख दुनिया हैरान थी। सर्जिकल स्ट्राइक ने डंके की चोट पर पूरी दुनिया के सामने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया था।
0: मेहनत और रोजगार के महकमे के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज कहा है कि मुल्क के 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को समाजी तहफ्फुज़ के दायरे में लाया गया है। इनमें 60 करोड़ से ज्यादा शहरियों के लिए 5 लाख रुपए का सेहत से मुतालिक कवरेज, 25 करोड़ अफराद के लिए ESIC के तहत सेहत की देखभाल की यकीनी फराहमी, 80 करोड़ से ज्यादा अफराद को मुफ्त अनाज और किसानों खवातीन को माली मदद शामिल है। वजीर मौसूफ नई दिल्ली में सनती राबतों और लेबर और अवार्ड से मुतालिक कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे।
2: हम 25 करोड़ लोगों को ESIC की हेल्थ सिक्योरिटी दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं, 10 करोड़ किसान के अकाउंट में हर 4 महीने 2000 रुपया डालते हैं। आज देश के 10 स्टेट ऐसे है जो महिला के अकाउंट में प्रति महीने कोई न कोई 2000, 1500, 1200 ऐसी अमाउंट डालते हैं। तो मैंने कहा कि क्या सोशल सिक्योरिटी का पार्ट नहीं बन सकता, और कैलकुलेशन चालू करा तो उन्होंने स्वीकारा कि इंडिया आज 101 करोड़ यानी कि 68% लोगों को सोशल सिक्योरिटी देता है।
0: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली कौमी राजधानी खत्ते में एक चलती बस में एक नाबालिग लड़की की मुबैना इज्तिमाई आबरूरेजी का ये कहते हुए अपने तौर पर नोटिस लिया है कि इस तरह के वाकयात से कानून नाफिज करने वाले हुक्काम की नाकामी उजागर होती है। जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस विनोद चंद्रन पर मुश्तमिल एक बेंच ने कहा कि नाकाफी रोशनी, खराब निगरानी और दीगर जरूरी इंतजामी सहूलियात के फुकदान की वजह से पार्कों और बसों समेत अवामी मकामात को बड़े खतरे वाले जोन नहीं बनने दिया जा सकता। गुज़श्ता महीने 16 साल की एक लड़की ग्रेटर नोएडा में एक स्लीपर बस में सवार हुई थी, जिसकी बस के कंडक्टर और ड्राइवर ने मुबैना आबरूरेजी की थी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। गंगटॉक सिक्किम और

0: लियो गोम्पा त्वांग अरुणाचल प्रदेश से तलबा के ग्रुपों ने आज राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। ये तलबा कौमी यकजहती टूर के हिस्से के तौर पर राष्ट्रपति भवन पहुंचे। मुल्क आज अजीम इनकलाब पसंद शहीद आजम भगत सिंह का 119वां यौम पैदाइश मना रहा है। आज ही के दिन 1907 में भगत सिंह पंजाब के लायलपुर जिले के बांगा गांव में पैदा हुए, जो अब पाकिस्तान में है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने भगत सिंह को खराज अकीदत पेश किया है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि भगत सिंह की गैर मामूली शुजात और बहादुरी ने आजादी की तहरीक में एक नई जान फूंकी थी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल कर रहे हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और पुख्ता अज़्म के साथ ये सफर आगे बढ़ा है और ये सिलसिला आज भी जारी है। अपनी खसूसी सीरीज के तहत आज हम इस बात का तस्करा कर रहे हैं कि तलाक सलासा के कानून से किस तरह मुस्लिम खवातीन की जिंदगी में तब्दीली आई है।
1: नरेंद्र मोदी सरकार ने मुस्लिम खवातीन की जिंदगी में उम्मीद और सलामती का एहसास लाने के लिए काम किया है, जिन्हें तीन तलाक या तलाक सलासा के रिवाज के वजह से दुश्वार हालात में छोड़ दिया गया था। तलाक सलासा के खिलाफ कानून बनाकर नरेंद्र मोदी सरकार ने ये दिखा दिया है कि सियासी कुव्वत इरादी के साथ कानून के जरिए उन समाजी रस्मों रिवाज पर तवज्जो दी जा सकती है, जिनका लोगों पर नामुवाफिक असर पड़ता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि मजकूरा कानून भारतीय आइन के ऐन मुताबिक मुस्लिम खवातीन को बराबर के हुकूक देता है। कानून बनने के बाद से साल के दौरान तलाक़े सलासा के मामलात में 80% से ज़्यादा की गिरावट देखने में आई है। तीन तलाक की रोकथाम से मुतालिक कानून के तहत मुस्लिम खवातीन को कानूनी तहफ्फुज मिल गया है, जो इससे पहले समाजी दबाव की वजह से खामोशी इख्तियार किए रहती थी। लखनऊ से सुशील चंद तिवारी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शोएबा।
0: खाम तेल की कीमतों में उछाल के तनाजुर में मुल्क के शेयर बाजारों में तकरीबन 1.3% की गिरावट देखने में आई है। सेंसेक्स में तकरीबन 1000 पॉइंट्स की गिरावट आई और ये 72972 पर आ गया। इसी तरह निफ्टी भी 299 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 22842 पर आ गया। एशियन गेम्स 2026 में आज खवातीन के 25 मीटर पिस्टल इनफरादी मुकाबले में भारत की ईशा सिंह ने चांदी का तमगा जीता। 21 साला निशानेबाज ने 38 पॉइंट्स के साथ दूसरा मकाम हासिल किया। भारतीय एथलीट पिंकी बालहारा ने खवातीन के अंडर 78 किलोग्राम के कुराश मुकाबले में कांसे का तमगा जीता। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में जनूबी कोरिया की लिम गाराम को 3-0 से हराया। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। सुप्रीम कोर्ट ने यूपीआई लेन देन पर एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट नाफिज करने के मरकजी सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। बैंकों की मुजवजा 3 रोजा मुल्कगीर हड़ताल जो आज से शुरू होना थी मुलतवी कर दी गई है। पाकिस्तान में दहशत गर्दों के ठिकानों पर भारत की सर्जिकल स्ट्राइक्स को आज 10 साल मुकम्मल हो रहे हैं। आज मुजाहिद आज़ादी शहीद भगत सिंह को उनकी यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। और जापान में जारी एशियाई खेलों में आज खवातीन के 25 मीटर पिस्टल मुकाबले और अंडर 78 कुराश मुकाबले में भारत ने चांदी और कांसे के तमगे जीते हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ।
3: ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਸਮਾਚਾਰ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਲੰਧਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਲਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਲੈਣ ਅਤੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪਤਾ ਹੈਡ ਆਫ ਆਫਿਸ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਨੇੜੇ BMC ਚੌਂਕ ਜਲੰਧਰ ਏ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਸਮੇਤ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.newsonair.nic.in ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੈਕੈਂਸੀ ਕਾਲਮ ਤੋਂ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ।

0: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 2:15 ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने यूपीआई लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। बैंकों की आज से शुरू होने वाली 3 दिन की प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी हड़ताल स्थगित। भारत पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। शहीद आजम भगत सिंह की आज 119वीं जयंती। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच सेंसेक्स में करीब 1000 अंकों की गिरावट, निफ्टी भी 299 अंक गिरा। और एशियाई खेलों में भारत ने आज महिलाओं की 25 मीटर

0: हिमाचल में रजत और अंडर 78 किलोग्राम कुराश स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने 2000 रुपए से अधिक के यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये शुल्क 15 अक्टूबर से प्रभावी होने हैं। न्यायालय ने केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य प्रतिवादियों से जवाब मांगा है और 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा कि ये मुद्दा कानूनी से अधिक तकनीकी है। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए अपर सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरामन ने पीठ को बताया कि भुगतान गेटवे के 96% उपयोगकर्ता इससे मुक्त रहेंगे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने घोषणा की है कि आज से शुरू होने वाली 3 दिन की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित कर दी गई है। ये निर्णय भारतीय बैंक संघ के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। सोशल मीडिया पोस्ट में ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने कहा कि ये निर्णय कल रात भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बीच हड़ताल से संबंधित मुद्दों पर हुई बैठक के बाद लिया गया। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कुछ अन्य यूनियनों और एसोसिएशनों ने 5 दिवसीय बैंकिंग प्रणाली को लागू करने और प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन PLI योजना को वापस लेने की 2 प्रमुख मांगों को लेकर हड़ताल का आह्वान किया था। केंद्र सरकार कर्नाटका और महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए टीमें भेजेगी। नई दिल्ली में रबी फसल अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही। संवाददाताओं से श्री चौहान ने कहा कि महाराष्ट्र और कर्नाटका सरकारों ने अपने अपने राज्यों के बड़े हिस्से में सूखा घोषित कर दिया है।
1: राज्य सरकारों ने महाराष्ट्र में बड़े हिस्से पर और कर्नाटक में भी बड़े हिस्से पर सूखा घोषित किया है। भारत सरकार राज्यों के साथ डट के खड़ी रहेगी। कर्नाटक में भी 3 अक्टूबर को टीम बना के भेज रहे हैं वहां की स्थिति के आकलन के लिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से बात हुई है तो भाभी हम टीम की तैयारी कर रहे हैं। मैं स्वयं भी उन राज्यों में जाके स्थिति देखूंगा और हम अपने किसानों के साथ, राज्य सरकारों के साथ पूरी ताकत से खड़े रहेंगे इस परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए।
0: श्री चौहान ने कहा कि शुरुआत में आशंका थी कि अल नीनो के प्रभाव से बुवाई का क्षेत्र कम हो सकता है और महत्वपूर्ण चुनौतियां उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने देश भर में पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
1: जो प्रयास किए भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खाद की कोई कमी नहीं आई। खाद की व्यवस्था करने के लिए सरकार कृत संकल्पित है, लेकिन हम ये जोर जरूर दे रहे हैं कि जितना जरूरी है उतने खाद का उपयोग, संतुलित उपयोग, उसके लिए खेत बचाओ अभियान हम फिर चलाएंगे ताकि सॉयल हेल्थ कार्ड में जो सिफारिश की है, माटी में जो तत्व कम है उसके आधार पर कितना खाद चाहिए उतना खाद डाला जाए तो मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद ये कार्रवाई की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
3: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ 0 टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने आज देशवासियों से जनगणना के लिए समय निकालने का आग्रह किया है। मन की बात कार्यक्रम में किए गए अपने आह्वान को याद करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जनगणना में भाग लेना सभी नागरिकों का राष्ट्रीय कर्तव्य है। प्रधानमंत्री

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि 3 तलाक कानून कैसे मुस्लिम महिलाओं के जीवन में बबदलाव लाने में मदद कर रहा है।
1: 3 तलाक की प्रथा से प्रभावित मुस्लिम महिलाओं को कानूनी सुरक्षा और अधिकार दिलाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 लागू किया। इस कानून के तहत तत्काल 3 तलाक को गैर कानूनी और दंडनीय बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये कानून संविधान की भावना के अनुरूप मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार और न्याय सुनिश्चित कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2: भारत के संविधान की भावना को, बाबा साहब अम्बेडकर की भावना को आदर करते हुए हमारी मुस्लिम बहनों को भी समान अधिकार मिले, उनके अंदर भी एक नया विश्वास पैदा हो, भारत की विकास यात्रा में वो भी सक्रिय भागीदार बने, इसलिए हमने इस महत्वपूर्ण निर्णय को किया।
1: मुस्लिम मामलों के विशेषज्ञ रजा रिजवी का कहना है कि 3 तलाक कानून ने मुस्लिम महिलाओं को उनके वैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक करने और उन्हें सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
3: ये कानून केवल एक कानूनी बदलाव नहीं है, बल्कि महिला के सम्मान और उसके अधिकारों की रक्षा से जुड़ा विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिला सशक्तिकरण को विकास से जोड़ा।
1: मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम ने उन महिलाओं के लिए कानूनी सुरक्षा का प्रावधान किया है जो 3 तलाक की स्थिति में सामाजिक और पारिवारिक दबाव के कारण अपनी बात सामने नहीं रख पाती थीं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ तेजी से बढ़ते आंवला उद्योग के लिए जाना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में आंवला उद्योग में प्रतापगढ़ के योगदान की सराहना की। आइए सुनते हैं इस पर हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि आंवले ने प्रतापगढ़ को एक मजबूत पहचान दी है। उन्होंने कहा कि प्रतापगढ़ के सावित्री फुले सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं के आंवले से बने उत्पाद आज ODOP के तहत नए बाजारों तक पहुंच रहे हैं, जिससे उनकी आय में बढ़ोतरी हुई है।
5: आंवले ने प्रतापगढ़ को एक मजबूत पहचान दी है और अब यही पुरानी पहचान यहाँ के किसानों और महिलाओं के लिए नए अवसर लेकर आ रहे हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP के माध्यम से यहाँ आंवले से जुड़े स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा मिला है।
4: सावित्री फूले सेल्फ हेल्प ग्रुप की कमलेश कुमारी ने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा,
6: प्रधानमंत्री को हम धन्यवाद देते हैं, सावित्री फूले स्वयं सहायता समूह बनाए हैं, आंवला का लड्डू मुरब्बा जूस बर्फी भी यही हमारा प्रोडक्ट बनता है।
4: प्रतापगढ़ जनपद में 196 से अधिक आंवले के उत्पाद की इकाइयां हैं और यहां बने उत्पाद देश के अलग अलग हिस्सों के साथ कई देशों में भेजे जा रहे हैं। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश में 100 करोड़ से अधिक लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा है। वे आज नई दिल्ली में आयोजित औद्योगिक संबंध और श्रम तथा पुरस्कार संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
7: हम 25 करोड़ लोगों को SIC की हेल्थ सिक्योरिटी दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं, 10 करोड़ किसान के अकाउंट में हर 4 महीने 2000 रुपया डालते हैं। आज देश के 10 स्टेट ऐसे हैं जो महिला के अकाउंट में प्रति महीने कोई ना कोई 2000, 1500, 1200 ऐसी अमाउंट डालते हैं। तो मैंने कहा कि क्या सोशल सिक्योरिटी का पार्ट नहीं बन सकता, और कैलकुलेशन चालू करा तो उन्होंने स्वीकारा कि इंडिया आज 101 करोड़ यानी कि 68% लोगों को सोशल सिक्योरिटी देता है।
0: संयुक्त राष्ट्र महासभा में विश्व नेताओं ने शिक्षा, कौशल, प्रौद्योगिकी और रोजगार के माध्यम से वैश्विक समृद्धि को गति देने में युवा आबादी की क्षमता का उल्लेख किया। उन्होंने चेतावनी दी कि AI का बढ़ता उपयोग रोजगार को लेकर अनिश्चितता बढ़ा सकता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि AI मानव सशक्तिकरण और आर्थिक समृद्धि के लिए परिवर्तनकारी शक्ति बन सकता है, लेकिन उन्होंने इसके दुरुपयोग से होने वाले नुकसानों के बारे में चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि देशों को अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप AI मॉडल विकसित करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक की 11वीं वार्षिक बैठक और निवेशक संवाद 2026 में भाग लेने के लिए कतर की राजधानी दोहा में हैं। इस बैठक में सदस्य प्रतिनिधिमंडल, नीति निर्माता और अन्य संबंधित पक्ष बैंक की रणनीतिक दिशा, संचालन प्राथमिकताओं और भविष्य के मुद्दों पर चर्चा करेंगे।

0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। देश आज शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। भगत सिंह का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1907 में पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है।
1: शहीद आजम भगत सिंह के मन में देश की आजादी के लिए लड़ने का जज्बा अपने परिवार से ही मिला था। उनके दादा, पिता और चाचा सभी स्वतंत्रता आंदोलन में पूरी तरह सक्रिय थे। भगत सिंह खुद भी इस आंदोलन से जुड़े और देश की आजादी के लिए आवाज उठाने वाले क्रांतिकारी बन गए। अंग्रेजों के कठोर और दमनकारी कानूनों का विरोध करने के लिए उन्होंने साल 1929 में केंद्र विधानसभा में ऐसे बम फेंके जिससे किसी की जान न जाए। इसके बाद उन्होंने खुद को अंग्रेजों के हवाले कर दिया और गिरफ्तारी दी। साल 1931 में अंग्रेजों ने उन्हें फांसी दे दी। शहीद भगत सिंह की शहादत ने पूरे देश में गुस्से और प्रेरणा की एक जबरदस्त लहर पैदा कर दी, जिसने उनके बलिदान को ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध का एक शक्तिशाली प्रतीक बना दिया। उनके अदम्य साहस ने देश के युवाओं में जोश भर दिया और भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा और गति दी, जिससे गुलामी की जंजीरों को तोड़ने को देशवासियों का संकल्प और अधिक मजबूत हो गया। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के सत्र में 1.3% की गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 956 अंक गिरकर 72,939 पर और निफ्टी 306 अंक लुढ़क कर 22,835 पर पहुंच गया। और अब एशियाई खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
2: जापान एशियाई खेलों में भारत की ईशा सिंह ने महिलाओं के 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीत लिया है। वहीं भारतीय एथलीट पिंकी बलहारा ने महिलाओं के अंडर 78 किलोग्राम कुराश स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। महिला मुक्केबाजी में लवलीना बोरगोहाइन ने 75 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया की सियोंग सियोन को हरा कर पदक पक्का कर लिया है। वहीं भारतीय क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला नेपाल और श्रीलंका के बीच होने वाले क्वार्टर फाइनल के विजेता से होगा। एशियाई खेलों में भारत पदक तालिका में 12वें स्थान पर है। अब तक भारत कुल मिलाकर 39 पदक जीत चुका है, जिनमें 4 स्वर्ण, 17 रजत और 18 कांस्य पदक शामिल हैं।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एशियाई खेलों में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर ईशा सिंह को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि ईशा सिंह के शानदार प्रदर्शन में उनके कौशल, सटीकता और निरंतरता की झलक दिखाई देती है। मौसम विभाग ने कल तक दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच आज दिल्ली के कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हुई। विभाग के अनुसार कल तक केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। वहीं अगले 2 दिनों के दौरान आंध्र प्रदेश में तेज हवाएं चल सकती हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने यूपीआई लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। बैंकों की आज से शुरू होने वाली 3 दिन की प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी हड़ताल स्थगित। भारत पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। शहीद आजम भगत सिंह की आज 119वीं जयंती। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच सेंसेक्स में करीब 1000 अंकों की गिरावट, निफ्टी भी 306 अंक गिरा। और एशियाई खेलों में भारत ने आज महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल में रजत और अंडर 78 किलोग्राम कुराश स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: जापान दे खेड मैदानां विच हुण गूंजेगा एशिया दा दम। खेडां दे सब तों वड्डे महाकुंभ एशियन खेडां दा रोमांच हुण आकाशवाणी जलंधर तुहाडे तक पहुंचाएगा। कौन रचेगा इतिहास, कौन चुम्मेगा जित दा सिखर, भारतीय खिडारी किन्ने मैडल करनगे अपने नाम, ये सब जानण लई सुनो जापान च हो रहीयां एशियन खेडां दी रोजाना रेडियो रिपोर्ट 19 सितंबर तों 4 अक्टूबर तक रात 10 बजे तों 10:20 तक आकाशवाणी जलंधर दे वक वक चैनल्स ते FM रेनबो, प्राइमरी चैनल, DRM ते DTH चैनल्स ते। इदे नाल नाल अपडेट्स जानोगे FM रेनबो चैनल ते 20 सितंबर तों 3 अक्टूबर तक। एशियन खेडां दी पल पल दी खबर सिर्फ आकाशवाणी जलंधर ते।

0: एक जरूरी सूचना, आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच पंजाब दे 10 जिलिया जलंधर, शहीद भगत सिंह नगर, मलेरकोटला, संगरूर, बरनाला, बठिंडा, मानसा, फिरोजपुर, मोगा अते फरीदकोट लई कॉन्ट्रैक्ट आधार ते पार्ट टाइम कोरेस्पोंडेंट्स दे अहुदे लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मंग कीती जांदी है। अर्जी फार्म लैण अते भेजण लई पता हेड ऑफ ऑफिस आकाशवाणी नेड़े बीएमसी चौंक जलंधर है। उम्मीदवार अर्जी फार्म समेत वधेरे जानकारी आकाशवाणी दी वैबसाइट www.newsonair.nic.in ते जाके वैकेंसी कॉलम तो भी डाउनलोड कर सकदे ने। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 7 अक्टूबर 2026 है। ध्यान रहे, ए कोई नियमित रोजगार नहीं है।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 864 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.8 मेगाहर्ट्ज़, एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज़ अते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकदे हो, नाल दे नाल न्यूज़ ऑन एयर ऐप दे जरिए भी तुसी आकाशवाणी जलंधर दे प्रोग्राम सुन सकदे हो। रंगली धरती, रंगली धरती प्रोग्राम च अज तुसी बलजिंदर सिंह आजाद कविश्री ते साथियां वालों कविश्री सुनो, शहीद भगत सिंह।
2: हिंदुस्तान दी पावन धरती, जिस धरती दे गुरुआं ते पीरां ने अवतार लिया और इसे ही पावन धरती ते देश भगतां ने आजादी दवाउण दे विच बड़ा ही वड्डा हिस्सा पाया। साडे भारत दा इतिहास जिहदे अंदर बहुत वड्डे देश भगतां ने कुरबानियां दित्तियां, अज हिंदुस्तान के इतिहास में जे कुरबानिया का इतिहास कह लिया जाए तो कोई अतकथनी नहीं। अज जिस देश भगत की गल कर लगा वह है सरदार भगत सिंह। सरदार भगत सिंह सरदार कृष्ण सिंह जी के ग्रह विखे पैदा हो के दुनिया के लोगों जो कुछ दिता वो दास्तान कहने तो पहला आओ उन्होंने जन्म की गल करा। सरदार कृष्ण सिंह जी के घर यह महान योद्धा जिमें प्रगट होया तस्वीर कविता दे साथी इउं कह रहे हैं।
3: साल 1907 दा सितंबर महीना जद सी

0: रंगत ऐसी चढ़ गई सी छेती छेती।
1: सुपने करे सकार ने बने इनकलाबी, किशन सिंह कर जन्मे आए कबीर पंजाबी।
0: अर्जन सिंह सुनाम दा नित बीर कहा।

0: अंदर इन्हां ने छोटियां छोटियां मीटिंगां करके नाल दी नाल अपनी पढ़ाई जारी रखी, नाल दी नाल इन्हां ने इस युद्ध नूं अंजाम देण वास्ते पक्का मन दे अंदर फैसला धार लिया सी। और अज समां बणिया और सलाह की गई कि सब तो पहला लाला लाजपत राय की मौत का बदला ले लिया जाए। ये बदला लैण वास्ते सब तो पहला निशाना बनिया मिस्टर स्कॉट नूं सामने रख के कि इहनूं मौत का जाम पला दिता जाए, इहदे जीवन की लीला खत्म कर दिती जाए। पर खालसा जी जो फैसला हो चुका सी उहदे मुताबक कई वारी परमात्मा नूं जो चंगा लगता है वह करिया करदा है। सतगुरां की बाणी का फरमान है, मता करे पछम कै ताई पूर्व ही लै जात है। अज जदों उस फैसले के मुताबक ये सारे नौजवान निकले और सामने सांडरस निकल आया मोटरसाइकिल पर सवारी करता हुआ अगे जा रहा है। सब तो पहला फैसला होया कि इस पापी नूं सोध देना चाहिए। सारे ने इको इशारे दे नाल सलाह करके सांडरस के उपर हमला करके उन्हूं जिवें मौत दे घाट उतारिया। उस वेले दा सीन कविता रही साथी इउं कह रहे हन,
1: जो जालम मजलूमा उत्ते

एक बार फिर तो स्वागत जी प्रोग्राम दे विच और प्रोग्राम थोड़ा अपना चिट्ठियां मिठियां इस वेले चल रहा है और इस प्रोग्राम दे लई तुसी सानू खत लिखदे हो हर रोज 3 बजे तो लैके 4 बजे तक। इस प्रोग्राम नू असीं तुहाडे वास्ते लैके आउंदे हां AIR दी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र और इस वेले गुरदास मान हुणां दे गाए गीत दी फरमाइश साडे तक पहुंची है। बहुत सारे दोस्तां ने चिट्ठी लिखी है कि गुरदास मान दी आवाज़ दे विच गीत सानू सुना दित्ता जावे और ये दोस्त जो इस वेले सानू चिट्ठियां भेज रहे ने जिन्होंने चिट्ठी भेजी है जी उन्हां दा बहुत बहुत शुक्रिया। और चिट्ठी शामिल करदे आ मुहम्मद पुरसोत्र ढाणी रतिया तो, जीवन सिंह बूक, शंटी बूक, सिमरन बूक, कौशल्या रानी, गुरशिंदर बूक, बब्बू बूक, कुलदीप, कीरत, भूषण खेड़ा, जशन और पूरा बूक परिवार जिन्होंने सानू

और इस तो अलावा अगला मैसेज जिहड़ा है भेजण वाले दोस्त जिहड़े ने उन्हां दा नाम है जी जसवीर जसी की आवाज़ में कहते गीत सुना दिता जाए न्यू माधोपुरी लुधियाना तो सुरेंद्र शर्मा सीमा शर्मा प्रिंस शर्मा और पूरी शर्मा फैमिली उन्होंने सानू चिट्ठी भेजी है और इस तो अलावा होर बहुत सारिया चिट्ठिया जिहड़ियां तुहाडे तक पहुंचिया ने साढ़े तक इन्हां दे विच ने गिदड़बाहा तो मनजीत तनेजा परवीन तनेजा पायल बेबी नाशा बेबी कैरवी उन्होंने चिट्ठी भेजी है सुरेंद्र कौर की आवाज़ में कोई भी गीत सुना दिता जाए कहिंदे कृष्णा नगर टीवी टावर सोमिनरी हिल्स नागपुर तो नाना डोंगर दिवे रमताई सीमाताई रीमाताई दीक्षाताई डोंगर दिवे राहुल डोंगर दिवे उन्होंने चिट्ठी भेजी है और कहिंदे कि लता जी की आवाज़ में हिंदी गीत सुना दिता जाए सो ये हिंदी गीतों की फरमाइशों का प्रोग्राम तो नहीं है पंजाबी गीत असं इस प्रोग्राम सुनाते हैं पर हिंदी पंजाबी गीत जो है लता जी की आवाज़ में असं तुहानू जरूर सुनावांगे मैं जरूर कोशिश करांगी उन्हां दी आवाज़ में पंजाबी गीत प्रोग्राम च शामिल किया जाए और अज उन्हां दा जन्मदिन भी है लता जी का और अज असी जन्मदिन जिहड़ा है लता मंगेशकर जी का मना रहे हैं और तुहानू सारयां नू आकाशवाणी परिवार वालों लता जी की जन्मदिन दियां बहुत बहुत मुबारकां और इस तरह अमरगढ़ तहसील सादूल शहर फुल तो कुलवंत मान लखविंदर कौर मान खुशप्रीत कौर मान गुरनूर मान हरविंदर मान राजा सिंह मान कुलविंदर कौर मान के एस मान और पम्मी बाई की आवाज़ में कहते गीत सुना दिता जाए जरूर सुनावे जी आदर्श नगम लोर तो राज शर्मा मीना शर्मा जुगेश शर्मा मैंडी शर्मा सौरभ शर्मा शाइना शर्मा निवान शर्मा हुणा ने मैसेज किया है बाबू सिंह तिमान बलजिंद्र कौर तिमान रवनीत निशू भुपिंदर हुणा ने मुक्तसर तो मैसेज किया है कोई भी गीत सुना दिता जाए बजरंग लाल शर्मा जगमोहन सिंह अरनेजा दिनेश कुमार शर्मा नरेश कुमार शर्मा हुणा ने चिट्ठी भेजी है जी सानू श्री गंगानगर तो कोई भी गीत कहिंदे सुना दिता जाए गांधी चौंक रोपड़ तो हरदेव मीका बलविंदर विरक जतिंग विरक मीका विरक हुणा ने कोई भी गीत कहिंदे सुना दिता जाए और इस तो अलावा हरजिंदर सिंह भाटिया शेजल सेंजल भाटिया नवदीश भाटिया पप्पी भाटिया जमशेदपुर तो अपनी पसंद का कहिंदे कोई भी नगमा सुना दिता जाए शुक्रिया जी जिला जलौन यूपी तो सत्येंद्र कुमार आदर्श सार्थक अलौकिक उन्होंने सानू चिट्ठी भेजी है कोई भी गीत कहिंदे सुना दिता जाए और इस तो इलावा कनेरा महला पटियाला तो मुकेश बत्ता नीलम बत्ता नितिन बत्ता पलक बत्ता करण बत्ता गीतू बत्ता निहारका और हार्दिक और वंश बत्ता उन्होंने कोई भी गीत कहिंदे सुना दिता जाए पिंड पक्षी कुर्द फरीदकोट दसनाम सिंह गिल गुरिंदर गिल गुरलीन गिल परिवार कोई भी गीत कहिंदे सानू सुना दिता जाए सो शुक्रिया जी सारे दोस्तों का इन्ने प्यार दे नाल खत भेजन दे लई अगला गीत जसवीर जसी उन्होंने आवाज़ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ

प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां इस वेले चल रहे हैं 3:44 और 23 सैकेंड इस वेले स्टूडियो की घड़ी ते हो रहे हैं और अगला खत प्रोग्राम दे विच शामिल कर दें। इस खत नूं भेजन वाले दोस्त बहुत सारे दोस्त बहुत ही खूबसूरत नाम और इन्होंने सानू खत भेजा जी। गुरप्रीत कौर तंगोरी, जसवीर कौर, महकप्रीत कौर, सहजप्रीत सिंह, पिंड तंगोरी, जिला SAS नगर मोहाली तो चिट्ठी भेजी है जी। सब तो पहला प्यार भरी सत श्री अकाल, सत श्री अकाल जी। और गीत इन्होंने कोई नहीं लिखिया, सो किसी भी गीत के नाल कहिंदे नाम शामिल कर लिया जाए जरूर जी। रामनाथ अतापुर कलोनिया जिला श्री फतेहगढ़ साहब तो डाकखाना चनार थल कला तो चिट्ठी भेजी है जी। और इन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ रुख लगाओ पानी बचाओ दा संदेश दिता है जी। जरूर जी बिल्कुल, तुहाडा संदेश बहुत ही खूबसूरत और आपां सारे रल मिल के इस दे उत्ते अमल करिए तां किन्ना खूबसूरत बन जाए साडा आला दुआला। और सत श्री अकाल भेज रहे हैं, सत श्री अकाल जी। श्री फतेहगढ़ साहब तो रामनाथ अतापुरी, सुखमनजीत, सहजप्रीत कौर उन्होंने चिट्ठी भेजी है शामिल करन दे लई, कहिंदे तुहाडा धन्नवाद प्रोग्राम दे विच चिट्ठी शामिल कीती, बहुत बहुत शुक्रिया जी तुहाडा भी। सो गीत तो इन्होंने नहीं लिखिया पर चलो कोई गल नहीं, असी चिट्ठी इन्हें शामिल कर ली है। कनेरा महला पटियाला तो मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन बत्ता, पलक बत्ता, करण बत्ता, गीतू बत्ता, निहारका वंश और हार्दिक हुणा ने सानू चिट्ठी भेजी है। कोई भी गीत कहिंदे सुना दिता जाए। पिंड इस्लाम वाला जिला फाजिलका तो सोहन लाल हुणा ने चिट्ठी भेजी है। नाल ने इन्हां दे ओम प्रकाश रानी और शगन राती, लवकुश वर्मा, हनू राठी, अमन गौड़, कंचन कंचन बीरट, कुलदीप ढींगरा, पिंड कुड़ियाणा, बाबू सिंह मैनेवाला, छत्रपाल सिंह खंगूड़ा, रजिंदर सिंह खंगूड़ा, गुरमेज सिंह विरक पिंड कमालवाला तो, और रणजीत कौर पट्टी, बोर सिंह पट्टी, काका पट्टी, और ये बहुत सारे दोस्त इन्होंने अलग अलग पिंडा तो सानू जिहड़ा है अपना इको ही खत भेजा है। और ये सारे दोस्त मैनूं लगता रल मिल के प्रोग्राम नूं सुनते हैं रेडियो नूं। और अमरिंदर गिल उन्हां दी आवाज़ विच कहिंदे गीत सुना दिता जाए, अगर गीत ये नहीं होया जिहड़ा तुसीं लिखिया है तो कोई होर गीत सुना दीए जी, जरूर तुहानू पसंद आएगा। मैनू पूरी पूरी उम्मीद है इस गल की। और बहुत बहुत शुक्रिया कि तुसीं इन्नी दूरों सानू इन्ने खूबसूरत खत जिहड़े लिखते हो। अगला खत बंसी लाल संधू पिंड तेका मेंढी तो पोतरा कबीर और जैजबीर और संधू वरनीत संधू त्रिया इन्हां दे वरनीत और पवनीत कौर संधू और सारा संधू परिवार, लाडी सिंह धालीवाल हुणा ने सानू रणधीर सिंह और जंगूरी हुणा ने सानू ये जंगूरी लिखिया शायद इन्हां ने अंग्रेजी दे विच नाम लिखा है। सो बेटी बचाओ देश बचाओ और रुख लगाओ दा नारा इन्होंने दिता है। खत पढ़न वाले दोस्तों इन्होंने कहिंदे कि प्यार भरी सत श्री अकाल, बहुत बहुत शुक्रिया बंसी लाल संधू जी, बहुत ही खूबसूरत खत और नाम जिहड़े तुसीं सानू लिख के भेजे ने।

श्री गुरु रविदास नगर मलोर तो नानक चंद विजय कुमार बंटी कुमार जॉनी कुमार कृष्ण कुमार देवानंद सीमा नजाकत एली और कुमार जसल धन्नालाल नथन राम हुणा ने सानू चिट्ठी भेजी है गायक शमशाद बेगम की आवाज़ में कहिंदे गायिका की आवाज़ में गीत सानू सुना दिते जावे जरूर सुनावांगे जी जिहड़ा गीत तुसीं लिखिया है जरूर मैं कोशिश करांगी यही गीत प्रोग्राम च शामिल किया जाए सो लता जी की आवाज़ में एक पंजाबी गीत सुनते हैं और पंजाबी हिंदी गीत की फरमाइश आई सी पर वो गीत असीं नहीं सुना सकते पर लता जी की आवाज़ में पंजाबी गीत मैं प्ले कर रही हूँ तुहाडे सब दे रेडियो सैट ते आ रहा है अज उन्हां दा जन्मदिन भी है और इस करके असीं लता जी नूं याद करदे हां जिहड़ा है जिहड़े उन्हां दे बहुत ही खूबसूरत गीत ने वो साडे दिल दे विच रूह दे विच हमेशा वसदे रहिंदे।

एक दोस्त होर ने इन्हां दी चिट्ठी मैं पहलां पढ़ चुकी हाँ जी। गुरु रविदास नगर मलोड़ तो इन्हें चिट्ठी भेजी सी नानक चंद विजय कुमार बंटी कुमार उन्हें बहुत सारे साथी शमशाद बेगम उन्हां दी आवाज़ दे विच कहिंदे गीत सुना दिता जाए सो ये बहुत ही खूबसूरत गीत शमशाद उन्हां दी आवाज़ दे विच।

प्यार एक खूबसूरत एहसास जो दिलों को करीब लाता है। सच्चे प्यार में ना कोई दिखावा होता है ना कोई डर, बस एक दूसरे पर विश्वास और दिल में खूबसूरत सा असर।

नजरें जब किसी की कद्र करना सीख जाएं, तो रिश्ते अपने आप खूबसूरत बन जाते हैं। किसी को अपना समझना ही प्यार की पहली निशानी है, और किसी की नजरों में काबिल बन जाना जिंदगी की सबसे प्यारी कहानी है। आकाशवाणी तेज जलंधर केंद्र तो पेश किया जा रहा है प्रोग्राम सदाबहार गीत। प्रोग्राम च अगला नगमा जब जब फूल खिले फिल्म चोलिया, आवाज लता मंगेशकर दी। इस गीत नु लिखिया आनंद बख्शी ने और संगीत निर्देशक कल्याण जी आनंद जी।

ये समा है सुहाना, हवाओं में है प्यार, हर तरफ बिखरी है खुशियों की बहार। चांदनी रात और दिल में मीठी सी उमंग, ऐसे खूबसूरत पल में क्यों ना सुने कोई मधुर तरंग। सदाबहार गीतांश। अगला गीत प्रेम रोग फिल्म दा, आवाज लता मंगेशकर दी, गीतकार ने संतोष आनंद और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

कुछ गलियां सिर्फ रास्ते नहीं होती, उनमें बचपन की यादें और अपनों का प्यार बसता है। वक्त आगे बढ़ जाता है मगर बीते दिनों की खुशबू दिल में हमेशा वैसी ही रहती है। मिठिया यादानु समेट के रखिया होया सी इस खूबसूरत नगमे ने। प्रोग्राम सदाबहार गीत दा आखिरी नगमा दो रास्ते फिल्म चलिया, आवाज लता मंगेशकर दी, गीतकार ने आनंद बख्शी ते संगीतकार ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: उस्तत मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार। इस शब्द का गायन किया सी भाई बख्शीश सिंह ते उन्होंने रागी जत्थे ने। बाबा नानक देव जी ने उदासियां दौरान हाजियां दी शंका निवृत्ति इन्हां लफ्जां च कीती कि शुभ अमलां दे सिट्टे वजों ही किसे दे जीवन नूं जाणिया जांदा है। उस अनुसार ही वड्डे अते छोटे दा निर्णा हुंदा है। हवाला इस तरह मिलदा है, पुच्छन फूल किताब नूं हिंदू वड्डा के मुसलमान होई, बाबा आखे हाजियां शुभ अमलां बाजो दोनों रोई। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने शुभ कर्मन दी परिभाषा ही बहु अर्थी करदे होए शुभ कर्मन दी जाचना अकाल पुरख पासों कीती। सुनदे हां प्रोफेसर बलविंदर पाल सिंह होरां पासों वार्ता, शुभ कर्मन ते कब हो न टरो।
1: शुभ अशुभ दा अंतर करन दे लई बुद्धि दी वरतों करनी हुंदी है। तर्कशीलता अते विवेकशीलता दे आधार ते बहुत लोग परंपरा विचले शुभ अशुभ नूं छड़ चुके हन, बहुत सारे दुबदा विच पए रहिंदे हन अते कुछ ऐसे भी हन जो मनो तां विज्ञानक सोच अते गुरबाणी दी विवेक अनुसार निश्चा दृढ़ रखते हैं, पर समाजिक लोकाचारी दे करके जां धार्मिक कर्मकांड दे करके अविवेकी क्रियाचार भी करी जांदे हन। शुभ कर्मन ते कबहू ना टरो एक जाचना है, एक निश्चा ते दृढ़ता है जो अरदास रूप विच परम पिता परमात्मा पासों मंग कीती गई है। इत्थे शुभ कर्मन विच कर्मकांड वाले शुभ अशुभ कारज नहीं आउंदे, सगो मानवता दे कल्याण, धर्म दे जयकार अते मनुखी हक्कां दी राखी वाले शुभ कर्मन दी गल आखी गई है। दशमेश पिता ने अपने सवैये देह शिवा बर मोहे ए है शुभ कर्मन ते कमहू ना टरो विच परम पिता अकाल पुरख पासों यह वर मंगया है कि वह चंगे मानववादी कम्मां तों कदे भी पिछे ना हटन। इस शुभ कर्मन विच गरीबां दी पीड़ा दूर करन दे लई

0: कि राजक रहीम है कि करमन करीम है। किरत करो जे प्रेरणा है तो अजिहा शुभ करमन किया जाए जो रोजी दे मौके पैदा करता रहे। ठीक यही बख्शिश चौथे सतगुरु श्री गुरु रामदास जी ने श्री अमृतसर साहब की स्थापना वेले की, जदों भांत भांत के कित्यां कारोबारां दे कारीगरां नूं रास पूंजी दे के ते बाजारां दे स्थापित करके अमृतसर का विकास किया। ये भी शुभ करमन की बात पाउंदा है। जदों मक्के विखे हाजियां नाल संवाद होया तां गुरु नानक देव जी पासों उन्हां बयान दवाना चाहिया कि हिंदू या मुसलमान दोवां विचों किहड़ा वड्डा ते चंगा है। गुरु नानक देव जी ने तत् दी गल आखी, बाबा आखे हाजियां शुभ अमलां बाजों दोनों रोई, भाव चंगे कम्मां तों बिना सब नूं रोणा पैंदा है। वह आप भी दुखी हुंदे हन ते दूजियां लई भी दुख पैदा करदे हन। शुभ करमन ते कभू ना टरों दे निश्चे विच सदा ही सब दे लई उद्दम भलाई लाभ खुशी खेड़ा अते चंगा नतीजा है। सरबंसदानी पिता दे इस आदर्श वाक बचन नूं जीवन विच प्रमुखता देन नाल अपना भी भला है अते सरबत दा भला भी इसे विच है।
1: शुभ करमन ते कभो न टरो, ये वार्ता सुना रहे सन प्रोफेसर बलविंदर पाल सिंह। निज तो उपर उठ के समाज अते देश कौम लई कुछ कर सकना, इथों तक कि अपना आपा वार देना, इस दी जाच गुरबाणी सिखाउंदी है। ताही ते साहिबे कमाल साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी जाचना करदे ने, देह सेवा बरमोहे एह शुभ करमन ते कभो न टरो। इस स्वईये दा गायन कीता है भाई अमरीक सिंह जख्मी ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

देह सेवा बरमोहे एहै, सुब करमन ते कब हो न टरो। ए स्वयेदा गायन कीता सी भाई अमरीक सिंह जख्मी ते उन्हां दे रागी जत्थे ने। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी अनुसार उही जीव धन है जो मुख तों परमात्मा दा नाम उचारदा है ते मन विच्चों विकारां नाल जूझ के मन अते जगत ते जित प्राप्त करन दी लालसा रखदा है। तन जियो ते को जग मैं, मुखते हर चित मैं जुद विचार है। सरवण करदे हां डॉक्टर अलंकार सिंह होरां पासों इस सवैये दा गायन।

तन जियो तेह को जग में मुक्ते हर चित में जुद विचार है। इस वैयद गायन कीता सी डॉक्टर अलंकार सिंह होरां।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार के निपटान, भुगतान और संदेश प्रणालियों के एकीकरण तथा केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राओं से संबंधित पहलुओं के समय पर क्रियान्वयन के लिए कदम उठाने पर सहमत हुए हैं। दोनों पक्षों ने आज मुंबई में निवेश संबंधी भारत यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के दौरान इस समझौते पर सहमति जताई। बैठक की अध्यक्षता वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अबुधाबी निवेश प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक शेख हामिद बिन जायद अल नहयान ने की। श्री गोयल ने कहा कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, जहाज निर्माण, खाद्य सुरक्षा और जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ रहा है।
1: हम सालाना और नियमित रूप से बैठकें करते रहे हैं और दोनों पक्षों के व्यापारिक समूहों की संतुष्टि के अनुसार ठोस और महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान कर रहे हैं। आज हमने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, पोत निर्माण, आधुनिक बंदरगाहों के विकास, खाद्य सुरक्षा, विशेष रूप से खाड़ी क्षेत्र के लिए कृषि नवाचार, लॉजिस्टिक्स के विस्तार, AI और उभरती प्रौद्योगिकियों पर मिलकर काम करने, ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा फिनटेक क्षेत्र में अपने सहयोग का विस्तार करने जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को बढ़ाने पर भी चर्चा की है।
2: एक्सपेंडिंग आवर कोऑपरेशन इन द फिनटेक सेक्टर।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि मानव अंतरिक्ष उड़ान, स्टार्टअप और नए अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत फ्रांस अंतरिक्ष सहयोग ने एक नए चरण में प्रवेश किया है। डॉ. सिंह ने आज नई दिल्ली में फ्रांस के उच्च शिक्षा अनुसंधान तथा अंतरिक्ष मंत्री फिलिप बैप्टिस्ट के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत फ्रांस अंतरिक्ष साझेदारी 6 दशक से अधिक पुरानी है, जिसमें रॉकेट प्रयोगों से लेकर गगनयान और संयुक्त उपग्रह मिशन तक शामिल हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि देश ने पश्चिम एशिया में जारी संकट और होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यवधान के बावजूद कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में आई चुनौतियों का अब तक सफलतापूर्वक सामना किया है। कोलकाता में मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में श्री पुरी ने ये बात कही। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार स्थिति पर लगातार नजर रख रही है और ये सुनिश्चित करेगी कि आपूर्ति में आए व्यवधान नियंत्रण से बाहर न हो। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि बेहतर सड़क बुनियादी ढांचे के कारण देश की माल ढुलाई लागत में कमी आई है। श्री गडकरी नई दिल्ली में एक निजी मीडिया सम्मेलन में बोल रहे थे। श्री गडकरी ने कहा कि IIM बंगलुरु, IIT कानपुर और IIT चेन्नई के अध्ययनों के आधार पर भारत की माल ढुलाई लागत में लगभग 6% की कमी आई है। सरकार ने आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा योजना पोर्टल की शुरुआत की। ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एक एकीकृत डिजिटल मंच उपलब्ध कराएगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य पशुधन बीमा सेवाओं को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और सुलभ बनाना है। सर्वोच्च न्यायालय ने 2,000 रुपये से अधिक के UPI लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये शुल्क 15 अक्टूबर से प्रभावी होने हैं। न्यायालय ने केंद्र सरकार, रिजर्व बैंक और अन्य प्रतिवादियों से जवाब मांगा है और 4 सप्ताह के अंदर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा कि मुद्दा कानूनी से अधिक तकनीकी है। देश में इस वर्ष अगस्त में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP द्वारा मापे गए औद्योगिक उत्पादन में वार्षिक आधार पर 8% की वृद्धि हुई। सरकार की ओर से जारी ताजा आंकड़ों से संकेत मिलता है कि औद्योगिक गतिविधि का विस्तार स्वस्थ गति से जारी है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज भी पदक जीतने का सिलसिला जारी रखा है। निशानेबाजी, क्रिकेट, कुराश, एथलेटिक्स और मुक्केबाजी में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। भारत ने आज अपने खाते में 3 और पदक जोड़े हैं। भारत की पुरुष क्रिकेट टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। निशानेबाजी में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25

0: पिस्तौल स्पर्धा में रजत पदक जीता। विद्या रामराज ने महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में कांस्य पदक जीतने के साथ एक नया रिकॉर्ड भी बनाया है। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण, 18 रजत और 19 कांस्य सहित कुल 41 पदक के साथ 12वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स ते आकाशवाणी दा ही जलंधर केंद्र है। ते आओ झात मारदे हां साडे बाकी रहिंदे प्रोग्रामां वल्लों।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स ते आकाशवाणी दा ये जलंधर केंद्र है। त्याओ सुनदे आ देश प्रेम दा एक गीत।

0: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी का ये जलंधर केंद्र है। स्टूडियो घड़ी के मुताबिक 6:20 हो रहे हैं तो आओ हुण सुनते हैं प्रदेशक खबरां।
1: पापा दी उम्र भर दी कमाई उन्हां दी सिख्या
2: अते हमेशा साडी फिकर करना वैसे उन्हां दी इक जमा पूंजी बैंक विच भी है
1: पर क्लेम करना मुश्किल होवेगा
2: हुण होर भी आसान हो गया है बैंक दी वेबसाइट जा शाखा ते जाओ क्लेम फॉर्म भरो दस्तावेज जमा करो 15 दिनां च रकम प्राप्त करो अते नॉमिनी नाल क्लेम दा निपटारा होवे होर भी आसान
3: आरबीआई कहिंदा है
2: जानकार बनो सचेत रहो।
4: नमस्कार ये आकाशवाणी है हुण तुसीं चंचल शर्मा तो प्रदेशक खबरां सुनो। पहला इस बुलेटिन दीआं खास खबरां भारत वालों पाकिस्तान के दहशतगर्दी टिकाणियां ते कीती गई सर्जिकल स्ट्राइक की अज 10वीं परेकांड है। भारतीय जनता पार्टी पंजाब के प्रधान केवल सिंह ढिल्लों ने कहा सूबे च नशा की मौजूदा स्थिति तरसयोग है ते सरकार इस नूं काबू करन विच असफल रही है। देश अज महान इनकलाबी शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती मौके श्रद्धांजलि भेंट कर रहा है। पंजाब का सूबा पदरी समागम लुधियाना विखे पंजाब पुलिस मुखी गौरव यादव ने कहा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के मुद्दे से पुलिस जांच शुरू कर दी गई है दंगा करन जां करवाउण वाले किसी भी व्यक्ति नूं बख्शा नहीं जाएगा। अते एशियाई खेडां विच भारत दी ईशा सिंह ने औरतों के 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत मुकाबले च चांदी दा तमगा जितया भारत की मर्दां की क्रिकेट टीम भी सैमीफाइनल विच पहुंची। ते हुण खबरां विस्थार नाल भारत अज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वरेगंढ मना रहा है। 28-29 सितंबर 2016 की रात को फौज ने कंट्रोल रेखा के पार दहशतगर्दी टिकाणों खिलाफ निशानाबद्ध कार्रवाइया की। यह कार्रवाइया 18 सितंबर को उरी दहशतगर्दी हमले तो बाद की गई जिस 18 भारतीय जवान शहीद हो गए सन। इस कार्रवाई ने दहशतगर्दी खिलाफ भारत की सुरक्षा नीति में एक तब्दीली की निशानदेही की। इस तो बाद साल 2019 बालाकोट ते 2025 ऑपरेशन सिंदूर विच पाकिस्तान खिलाफ कार्रवाइया की गई। कल आकाशवाणी से प्रसारित अपने मन की बात प्रोग्राम च प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक नूं अहम प्राप्ति दस्या। उन्हां कहा कि पिछले दहाके विच दहशतगर्द विरोधी भारत का नज़रिया बदल गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दहशतगर्दी हमलों के लंबे समय तो बाद सर्जिकल स्ट्राइक भारत की एक फैसलाकुन कार्रवाई सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनतक सेवा च 25 साल पूरे हो रहे ने। एक अजिहा सफर है जिहड़ा जन सेवा तो देश सेवा दे मंत्र ते अटुट वचनबद्धता नाल प्रभाषित हुंदा है ते इह सिलसिला जारी है। सेवा ते सुशासन की इसे सोच तो प्रेरित होकर सरकार 2047 तक एक विकसित भारत के टीचे नूं हासिल करन लई लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास ते समाजिक सशक्तिकरण राही इस समर्पण लोगों के जीवन च तब्दीली लिया रहा है। अज सेवा संकल्प अभियान की इस विशेष लड़ी असीं तुहाडे लई एक मिसाल लैके आए हाँ कि किस तरह इस दृष्टिकोण नूं पीएम स्वनिधि योजना राही अमल च लिया गया। होर वेरवे नाल एक रिपोर्ट।
5: प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 2020 फड़ी लगाउण वाले विक्रेतावां नूं कार्यशील पूंजी कर्जियां राहीं रस्मी वित्तीय प्रणाली विच लिया के उन्हां दे जीवन विच बदलाव लियाउण दे मंतव नाल शुरू कीती गई सी। इस योजना हेठ अगस्त 2026 तक 78 लाख तो वध विक्रेतावां ने 19,171 करोड़ तो वध दे 1.18 करोड़ तो वध कर्जे प्राप्त कीते हन। पंजाब विच भी बहुत सारे फड़ी लगाउण वाले विक्रेतावां ने अपने कारोबार शुरू करन लई कर्जे प्राप्त कीते हन अते ਕੀਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ 2 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਮੀਨੂ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ।
6: ਮੇਰਾ ਪੀਐਮ ਸਵਨਿਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਿਆ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ 20,000 ਦਾ ਲੋਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਰਾਇਟੀ ਹੋਰ ਭਰੀ ਜੀ। 18 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ 50,000 ਦਾ ਲੋਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਲਈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।
7: ਕਰੋਨਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਨ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਪੀਐਮ ਸਵਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੋਨ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੋਂਸ ਮਿਲਿਆ। ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 50,000 ਦਾ ਲੋਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ

0: प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव प्रतिष्ठा जैन ने दूजा इनाम हासिल किया। जापान च एशियाई खेडों में भारत की ईशा सिंह ने महिलावां दे 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत मुकाबले च चांदी का तमगा जितया। इस दौरान भारत की मर्दां की क्रिकेट टीम भी एशियाई खेडों के सैमीफाइनल में पहुंच गई है। ते आखर च खास खबरां एक बार फिर तो भारत वालों पाकिस्तान के दहशतगर्दी टिकाणे ते की गई सर्जिकल स्ट्राइक की अज 10वीं वरेगंढ। देश अज महान इनकलाबी शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती मौके श्रद्धांजलि भेंट कर रहा है। एशियाई खेडों च भारत की ईशा सिंह ने औरतों के 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत मुकाबले च चांदी का तमगा जितया। इस दे नाल ही ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਰਾਤ 8:30 ਤੇ। ਨਮਸਕਾਰ।
1: ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਦਿਹਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ।

0: आजो पंच साहब लांग आओ।
1: आगे जी आगे जी और सुनाओ। मैं क्या पहले जय हिंद महाराज।
0: जय हिंद जी, जय हिंद। सुनाओ पंच साहब की हाल चाल।
1: हाल चाल
0: हाँ
1: बहुत बढ़िया। मिठी मिठी कितने बारिश हो जाती है तो होर माहौल बढ़िया बन जाता है। किण मिण लाई हुई है, रब ने मौसम बदल रहा है।
0: वैसे देखो हुण जिहड़ा आ मौसम है ना, रब थोड़ी जी मेहर रखे
1: जी
0: कि झोना पक्कन वाला
1: सही गल कही।
0: है जी।
1: वैसे बदलाव जिहड़ा कुदरत दा नियम है।
0: हाँ
1: मैं बदलाव दी जदों गल करदा तां मैनूं ओह समां वी याद आउंदा है कि जदों देश दे विच गुलामी दी हवा वगदी सी तां आजादी दा वातावरण तैयार हो रिहा सीगा। ओह वी
0: हाँ
1: बदलाव दा इक समां सी।
0: बहुत। देखो जी साडे जदों आपां गल करदे आं जिन्हां दा आपां जन्म दिहाड़ा मनाया,
1: लै तुसीं तां पहुंच गए उत्थे
0: शहीद भगत सिंह
1: जी जी बिल्कुल
0: के उन्हां ने जो देश दे लई जवानी दे विच देश लई जो कुर्बानी कीती है ना,
1: जी
0: उस शहादत दा तां कोई मुकाबला ही नहीं जी।
1: हाँ। और उन्होंने जो सानू संदेश दिता वो कहिंदे पढ़ो लिखो अपनी आज़ादी दे लई अपने हक्कां दे प्रति जागरूक होवो, है ना।
0: हाँ
1: और गूंगी बोली सरकार नू जिहड़ी सुनदी नहीं सीगी उन्हों उस वेले अंग्रेजी सरकार नू
0: जगाया।
1: जगाया।
0: हाँ
1: हाँ
0: दसता
1: जी
0: कि तुसीं सानूं बहुती देर तक जिहड़ियां गुलामी दियां जंजीरां 'च जकड़ के नहीं रख सकते।
1: नहीं रख सकते।
0: हाँ जी रंग दे बसंती। क्योंकि देखो आपां गल करदे ने पंच साहिब कि कुछ चीज़ां जिहड़ियां खानदान 'चों मिलदियां ने कि उहनां दा चाचा भी इसे काम च सी, इसे विच जिदा आपां कहने लहर च चलदा पिया सी पगड़ी संभाल, ते उहनां नूं गुड़ती एक तरीके नाल मिल गई कि मैं जिहड़ा हैगा यही काम करना हैगा, मैं तां देश दी आजादी जिहड़ी हैगी है ना ये लै के आउणी आ।
1: लिखण वाले ने लिखिया कि जदों किसी वेले उन्हां नूं इह कहा गया ना भी तुसीं माफ़ी मंग लो ते तुहाडी जिहड़ी फांसी की सज़ा जिहड़ी माफ़ हो जाएगी, तां ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੀਣ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ
0: ਜੀ
1: ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੌਤ ਦੇ ਸਦਕਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜਨਮ ਲੈਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
0: ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ 'ਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀ
1: ਨਹੀਂ ਹੋ
0: ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੀ।
1: ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ।
0: ਸੋ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਾਰੋਹ ਮਨਾਏ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਦਿਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ।
1: ਅੱਛਾ ਜੀ
0: ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ।
1: ਲਓ ਫਿਰ
2: ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

0: एसी देहाती प्रोग्राम मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी दाई जलंधर केंद्र है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी

0: पल। जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: तो जुड़े हुए हो आकाशवाणी के जलंधर केंद्र के नाल, ते आओ तुहानू लै चलदे हां साडे दिल्ली केंद्र, जिथों तुसी सुनोगे जन सेवा देश से देश सेवा।

ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 12वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा, शिक्षा और कौशल, भविष्य की नींव। इसमें भाग ले रहे हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग।

0: कुटुक यूजीसी के पूर्व सदस्य प्रोफेसर सुषमा यादव और वरिष्ठ पत्रकार संजीव चोपड़ा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: एक छोटी सी उंगली जिसने पहली बार स्कूल की किताब को छुआ, एक गांव का बच्चा जिसके लिए स्कूल तक पहुंचना ही कभी सबसे बड़ी चुनौती थी, और एक युवा जिसके हाथ में डिग्री तो थी लेकिन दुनिया बदल रही थी और उसके सामने सवाल था कि क्या मेरी शिक्षा मुझे भविष्य के लिए तैयार कर रही है। क्योंकि शिक्षा सिर्फ कक्षा, किताब और परीक्षा का नाम नहीं है, शिक्षा वो नींव है जिस पर किसी व्यक्ति का भविष्य और किसी राष्ट्र की दिशा तय होती है। गुजरात में शाला प्रवेश उत्सव और गुणोत्सव जैसे प्रयासों से शुरू हुई एक सोच ने स्कूल में प्रवेश से लेकर सीखने की गुणवत्ता तक का सवाल उठाया, और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, निपुण भारत, विद्या प्रवेश, कौशल विकास, विशेषज्ञता आधारित उच्च शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा में सुधार ने शिक्षा को केवल डिग्री नहीं बल्कि ज्ञान, कौशल और क्षमता से जोड़ने की दिशा तय की। इसी यात्रा में परीक्षा पे चर्चा ने परीक्षा को जीवन का अंतिम पड़ाव नहीं बल्कि सीखने की यात्रा का एक पड़ाव मानने की बात की। तो गुजरात से दिल्ली तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में बिताए 25 वर्षों में क्या कुछ बदला इस दिशा में, आकाशवाणी की इस विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा में आज का हमारा विषय है शिक्षा और कौशल, भविष्य की नींव। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान उपस्थित हैं, वरिष्ठ पत्रकार संजीव चोपड़ा और हमारे साथ जुड़ रही हैं पूर्व यूजीसी सदस्य सुषमा यादव। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद और नमस्कार।
1: संजीव जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने शाला प्रवेश उत्सव और गुणोत्सव जैसे अभिनव प्रयोग शुरू किए थे, और इसका असर ये हुआ कि राज्य में ड्रॉपआउट रेट काफी कम हो गए, और यहीं से जब आगे बढ़े तो निपुण भारत और विद्या प्रवेश जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों को जब हम देखते हैं तो गुजरात के उस मॉडल और आज के राष्ट्रीय विजन के बीच आप किस तरह का समायोजन या संबंध देख पा रहे हैं?
3: जैसे भारत कोशिश कर रहा है कि विकसित भारत बनने की 2047 में, तो उसके लिए सबसे बड़ी जो जरूरत है वो है उसके नागरिकों की शिक्षा। जब देश शिक्षा में निपुण होगा तभी देश आगे तरक्की कर सकता है। तो इस विषय में जैसे प्रधानमंत्री जी ने जब 25 साल पहले अपनी यात्रा गुजरात से शुरू करी थी एज चीफ मिनिस्टर, तो उन्होंने वहां स्टेट में देखा, गुजरात तब शिक्षा के स्फेयर में इतना डेवलप्ड नहीं था, तो उन्होंने देखा ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा है, सोशल डिस्पैरिटीज बहुत ज्यादा हैं। सो उन्होंने ये दो इनिशिएटिव्स, एक शाला प्रवेशोत्सव जिसमें कि एंट्री एनरोलमेंट स्टूडेंट्स की बढ़ाने के लिए ये प्रयोग किया था 2003 में, सबसे पहले जो ड्रॉप आउट रेट था 37% था गुजरात में, तो धीरे धीरे करके इससे बढ़ते हुए बहुत कंसिडरेबल ड्रॉप आउट रेट रिड्यूस हुआ। तो एक तो ये था, और दूसरा था गुणोत्सव जिसमें कि इवैल्यूएशन और अकाउंटेबिलिटी बच्चों की देखी जाती है। तो इन दोनों इनिशिएटिव से उन्होंने आगे प्रयोग शुरू किया और उसको अब स्टेट लेवल, जैसे गुणोत्सव तो असम में भी अडॉप्ट हुआ और कुछ और स्टेट्स भी अब करना चाह रही हैं, और नेक्स्ट इनिशिएटिव 7th एडिशन जो है वो January 7, 2027 को होगा असम में, और गुजरात में तो चल ही रहा है। तो ऐसे इनिशिएटिव जो हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि एजुकेशन के फील्ड में जैसे भारत जाना जाता है अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड की वजह से, यूथ पॉपुलेशन जो यंग पॉपुलेशन है इंडिया की वो भारत में है और वर्ल्ड में पॉपुलेशन एज हो रही है, तो भारत का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब उसके जो नागरिक और यूथ हैं वो निपुण हो, शिक्षा के तरीके से स्किल्ड हो, निपुण हो, और तभी देश भी आगे तरक्की करेगा और तभी दुनिया में लीड कर सकता है भारत।
1: जी हाँ, हम अपने आकाशवाणी के श्रोताओं के लिए सरल शब्दों में बताएं तो गुणोत्सव जो योजना थी वो प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता, छात्रों के सीखने के स्तर, शिक्षकों की उपस्थिति और स्कूल के बुनियादी ढांचे का मूल्यांकन करने से जुड़ी थी। जब हम निपुण भारत की बात करते हैं तो इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि देश का प्रत्येक बच्चा प्राथमिक कक्षा के अंत तक बुनियादी साक्षरता और जो नंबर ज्ञान है उसे अवश्य हासिल कर ले। विद्या प्रवेश की जब हम बात करते हैं तो इसका मुख्य मकसद यही रहा कि पहली कक्षा में प्रवेश लेने वाले बच्चों को स्कूल के नए माहौल में ढलने और औपचारिक पढ़ाई के लिए मानसिक एवं भावनात्मक रूप से तैयार किया जा सके। विद्या प्रवेश की चर्चा को प्रोफेसर सुषमा जी अगर आगे बढ़ाएं तो जैसा कि विद्या प्रवेश के बारे में हमने बताया कि 3 महीने के प्ले बेस्ड स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल का मुख्य लक्ष्य रखा गया कि बच्चा जब स्कूल में जाए उससे पहले उसको एक

0: भावनात्मक और शैक्षणिक माहौल प्रदान किया जाए कि स्कूल जाने के लिए वो तैयार हो सके। कुछ समय पहले तक इस तरह की सोच रखना भी सरकारी स्तर पर किसी योजना को बनाया जाए कि बच्चा पहली कक्षा में जाने से पहले तैयार हो, इसके लिए कोई योजना लाई जाए, बहुत मुश्किल काम था। लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता थी कि इस योजना को न सिर्फ शुरू किया गया बल्कि इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। सामाजिक परिवर्तन के लिहाज से और बच्चों के मानसिक विकास के लिहाज से कैसे देखती हैं इस योजना को आप?
1: भारत में विद्या प्रवेश या विद्यालय जाना बच्चों के लिए एक प्रकार से एक पनिशमेंट होती थी, वो क्योंकि सीधे स्कूल में जाना घर का माहौल होता है जहाँ उस प्रकार की नियमबद्धता नहीं होती और बच्चा अपनी मर्जी का ऑलमोस्ट मालिक होता है, स्वामी होता है। और जब वो विद्यालय में जाता था तो बहुत सारे समय के अनुशासन की सीमाएं उस पर लग जाती थी। उस गैप को दूर करने के लिए यह एक प्रकार से मैं बहुत सुंदर प्रयास मानती हूँ जो स्कूल तैयारी मॉड्यूल बनाया गया, और ये NEP 2020 जिसको हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहते हैं, उसमें कहा गया कि लर्निंग शुड बी ए प्लेजेंट एक्सरसाइज, यानी सीखना आरंभ बच्चे का ऐसा होना चाहिए कि वो उसको एंजॉय करे, वो उसके लिए एक फन जैसी एक्सरसाइज हो। तो इस विद्या प्रवेश का यही उद्देश्य है। और आप जान सकते हैं कि बड़े शहरों में और शहरी उच्च वर्ग में प्ले स्कूल्स का कंसेप्ट आ चुका था लेकिन वो पूरे देश के बच्चों को उपलब्ध नहीं था, तो उनको भी खेल आधारित गतिविधियों के आधार पर सीखने की प्रक्रिया आरंभ करना, औपचारिक शिक्षा आरंभ होने से पहले उनको उस माहौल में सहज रूप से ढाल लेना और वहीं से निपुण भारत की भी नींव रखना। निपुण इज वेरी इंटरेस्टिंग, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। और आपको याद होगा आयुषर जैसी बहुत सारी संस्थाएं पहले ये कहती रही कि 10वीं तक बच्चा पहुंच जाता है देश के सरकारी विद्यालयों में, लेकिन ना वो पढ़ सकता है, ना वो लिख सकता है पूरी बात, और ना ही वो गणना में निपुण होता है। इसलिए वह मिशन रखा गया था और उसी की रणनीति की नींव मजबूत करने के लिए, बुनियाद मजबूत करने के लिए विद्या प्रवेश का ये एक बहुत सुंदर मॉड्यूल बनाया गया। और जिसमें ये हो सकता था क्योंकि ये प्रारंभिक है तो हर राज्य अपनी अपनी स्थानीय भाषा और सांस्कृतिक संदर्भ के अनुसार पाठ्य सामग्री तैयार कर सकता था ताकि बच्चे को बहुत अजनबी भाव ना लगे वहां पर, जैसा वो घर में अभी तक रहा उसी को थोड़ा आगे ले जाते हुए पढ़ना लिखना और गणना करना आरंभ कर दे। थोड़ा शाला प्रवेशोत्सव पर और गुणोत्सव पर भी बात करना चाहती हूँ क्योंकि वो कन्या केलमणि महोत्सव था एक तरह से, कि कन्या किस प्रकार से विद्यालय पहुंचे भी और फिर वहां रहे भी, क्योंकि ड्रॉपआउट दर बहुत ज्यादा थी उनकी, तो इसलिए बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष बल उसके माध्यम से दिया गया था। और 3 दिवसीय अभियान यानी जिसमें जनप्रतिनिधि भी और अधिकारी भी गांव-गांव जाकर बच्चों को बाल वाटिका, आंगनवाड़ी, प्राथमिक ये खेल विद्यालय इन सब में प्रवेश दिलाते, शिक्षण सामग्री किट वितरित करते, तो अपने आप ही एक नामांकन उत्सव जैसा बन जाता और बच्चों को भी इसमें रुचि होती और शिक्षक इसलिए सजग रहते क्योंकि इसमें जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों का विशेष ध्यान था। यही गुणोत्सव का भी एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है क्योंकि ये माना गया कि जितने सरकारी विद्यालय हैं उनमें गुणवत्ता कम होती जा रही। तो गुजरात में 2009 में जो शुरू हुआ, बेसिकली माननीय मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री जब ये मुख्यमंत्री थे तब भी, इसीलिए जाने जाते हैं कि इन्होंने जिस भी क्षेत्र पर ध्यान दिया वहां गुणवत्ता और जवाबदेही उत्तरदायित्व निश्चित करने पर बल दिया और विद्यालयी शिक्षा में इन तीनों के माध्यम से ड्रॉपआउट कम करने की बात और शिक्षा और शिक्षण और शिक्षार्थियों की गुणवत्ता बढ़ाने की बात कही गई।
0: चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और संजीव जी कुछ और योजनाओं पर चर्चा करते हैं। गुजरात से शुरुआत हुई डोमेन स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज की। हम अपने श्रोताओं के लिए बता दें कि किसी विशेष स्पेसिफिक विषय को लेकर शुरू की गई यूनिवर्सिटी को डोमेन स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज कहते हैं, जैसे राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी या ऊर्जा अनुसंधान संस्थान। इस तरह के विश्वविद्यालय आज राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके हैं। सवाल आपसे ये है संजीव जी कि जो पारंपरिक विश्वविद्यालय हुआ करते थे जहां हम देखते हैं कि आर्ट्स की भी पढ़ाई हो रही है, कॉमर्स भी पढ़ाए जा रहे हैं, विज्ञान के विषय भी पढ़ाए जा रहे हैं, उनसे अलग 21वीं सदी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जो डोमेन स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज शुरू हुए, आज के दौर में भारतीय युवाओं के लिए कितने कारगर हैं और 21वीं सदी

0: चुनौती के लिए वो कैसे तैयार कर रहे हैं?
1: जी, जैसे आपको पता होगा कि पहले यूनिवर्सिटीज में जनरली सब हर फील्ड में एजुकेशन दी जाती है, मास्टर्स आप अचीव करते हो, उसके बाद पीएचडी उसी फील्ड में लेते हो। लेकिन प्रोफेशनल कोर्सेज में जैसे इंजीनियरिंग होता था तो इंजीनियरिंग भी एक ही डिफरेंट सब्जेक्ट्स एक ही इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाए जाते हैं। लेकिन जैसे लॉ फॉर एग्जाम्पल, लॉ का यूनिवर्सिटी का 2 ईयर कोर्स होता था, तो आहिस्ता आहिस्ता इसको 5 ईयर्स कोर्स स्पेसिफिक कर दिया कि बच्चे को 12वीं के बाद ही एकदम एडमिशन वहां चले जाएं उस यूनिवर्सिटी में और उसी फील्ड में स्पेशलाइजेशन दें। तो लॉ के 5 ईयर कोर्सेज बने, 3 ईयर कोर्सेज भी बने, 5 ईयर कोर्सेज भी हैं कई। ये जरूरी था कि डोमेन स्पेसिफिक, जैसे फिर आपको बताऊं कि प्राइवेट सेक्टर भी इसमें एंटर कर चुका है, लॉ स्कूल्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में बने ही हैं, लेकिन यूनिवर्सिटीज भी डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोलियम और एनर्जी की एक यूनिवर्सिटी देहरादून में बनी, वो प्राइवेट सेक्टर में थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वहां एक लॉ स्कूल भी बना प्राइवेट सेक्टर में, वही 5 ईयर स्कूल
0: जी।
1: वहां बच्चे खूब जाने लगे एंड उनकी इनटेक इन द इंडस्ट्री भी बढ़ गई बिकॉज वो उसी स्पेसिफिक फील्ड में जा रहे थे। जैसे कई यूनिवर्सिटीज में मैं आपको बताऊं, उसको बहुत सीरियसली नहीं लेते, जैसे इंटरनेशनली फोरेंसिक साइंस है या एस्ट्रोनॉमी की फील्ड, तो नासा वगैरह में भी यहाँ के स्टूडेंट्स कई गए हैं जो यहाँ से यूनिवर्सिटीज में पढ़ के, हालांकि एस्ट्रोनॉमी के लिए स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी नहीं है लेकिन कई यूनिवर्सिटीज में एस्ट्रोनॉमी की मास्टर्स कराई जाती है। तो सिमिलरली फोरेंसिक साइंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्राइम की फील्ड में और कई फील्ड्स में, एनर्जी और पेट्रोलियम मैंने आपको बताया, स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन मैंने आपको बताया, जैसे भारत बहुत आगे बढ़ रहा है स्पोर्ट्स की फील्ड में, जैसे एस्पिरेशनल इंडिया आगे चल रहा है, हर फील्ड में तरक्की हो रही है। सिमिलरली डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटी की यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक बन रही हैं, एग्रीकल्चर के बारे में बनी और जैसे लॉ के बारे में मैंने आपको बताया, और इनकी एडमिशंस भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन जो होता है CUET उसके थ्रू होती है। इसमें क्या है कि इंडस्ट्री की डिमांड, जब बच्चा ज्यादा टाइम एक ही फील्ड में लगाता है तो इंडस्ट्री की डिमांड उसको समझ में आती है और इंडस्ट्री को भी समझ में आता है कि ये बच्चा हमारे फील्ड की मास्टरी कर चुका है और इसको इनटेक लेना है। सो एक तो उससे मास्टरी होती है उस सब्जेक्ट में, दूसरी इंटरनेशनली भी प्रिपेयर होता है बच्चा, और तीसरा उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज इंप्रूव होती हैं बहुत ज्यादा।
2: सुषमा जी, अगर इसी चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाएं तो पारंपरिक उच्च शिक्षा में अक्सर जो शिक्षण संस्थान और उद्योग के बीच की दूरी की बात होती रही है, और हमने देखा कि इस कारण कई बार ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी जो युवक हैं या जो छात्र हैं वो रोजगार से वंचित रह जाते थे। गति शक्ति विश्वविद्यालय या नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जैसे डोमेन स्पेसिफिक मॉडल आपके अनुसार इस खाई को कैसे पाट रहे हैं, इस अंतर को कैसे खत्म कर रहे हैं?
3: जी, संजीव जी की बात को आगे बढ़ाते हुए, ये विश्वविद्यालय तो है ही, जैसे अगर राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय तो अपनी तरह का एक विश्वविद्यालय ही है और उसने बाकियों से MOUs किए हैं, और फोरेंसिक टेस्ट के लिए हमारे यहाँ इतना लंबे समय अभी तक लगता था, वेटिंग पीरियड बहुत ज्यादा था, अब इस विश्वविद्यालय ने उसको संभालना और अपने कैंपसेस के माध्यम से कुछ और एक्सपर्ट्स भी हमें प्रोवाइड किए हैं। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय जो है पहले रक्षा शक्ति माना जाता था, देयर वॉज नो यूनिवर्सिटी इन इंडिया विच वुड स्पेशली टैकल दिस एक्सेप्ट NDA, तो वह भी अब कुछ विशेषज्ञ तैयार कर रही है। लेकिन इसके साथ साथ आरंभ तो गुजरात से हुआ, लेकिन कौशल विश्वविद्यालय भी देश के बहुत सारे प्रांतों में खोले गए हैं जो स्पेसिफिकली स्किल इम्पार्टिंग यूनिवर्सिटीज हैं, पहले नहीं थे। चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी खोली गई है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज खोली गई हैं, विमेन यूनिवर्सिटीज खोली गई हैं, और इनकी संख्या जो बड़ी है, केवल इतना ही नहीं, उसी बात को जो आपने मुझसे अभी पूछा है उसको ही पाटने के लिए मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि UGC से संबद्ध रही हूँ। 2014 में यदि इस देश में 723 यूनिवर्सिटीज थी, अब जाकर के लगभग 1400, डबल ऑफ दी नंबर, 1400 से अधिक विश्वविद्यालय खोल दिए गए हैं। इसका मतलब है एनरोलमेंट अधिक हो रहा है, विशेषज्ञता भी बढ़ रही है, और टीचर एजुकेशन यूनिवर्सिटीज भी खुली हैं जो पहले कहीं नहीं थी। एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी खुली है, उद्यमिता विश्वविद्यालय, यानी ये जो स्किल बेस्ड एरियाज थे, डोमेन्स थे, वहां पर विशेषज्ञ उत्पन्न करने के लिए, तैयार करने के लिए ऐसे विश्वविद्यालय खोले गए हैं। एक तरफ राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है हम मेरू मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज भी खोल रहे हैं जो थी पहले भी, लेकिन दूसरी तरफ जो विशेष विशेष क्षेत्र पहचाने गए जहां जहां विशेषज्ञता की आवश्यकता थी वो यूनिवर्सिटीज खुली हैं। कॉलेजेस को भी ऑटोनमस बनाने का प्रयास किया गया है, और जब मैं UGC में थी तो मैं बता सकती हूँ कि बहुत सारे विश्वविद्यालयों को हमने इनकरेज किया कि वो ऑटोनमी के लिए आगे आए, बिकॉज इस देश में कुछ कुछ कॉलेजेस

0: तो इतने बड़े थे, दे कुड बीट एनी यूनिवर्सिटी और दे कुड कंपेयर विद द बेस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज. तो
1: जी
0: उनको ऑटोनॉमी देने की बात, ताकि शिक्षा का विस्तार हो. जहां 38,000 के करीब कॉलेजेस थे 2014 में, वो अब 55,000 के लगभग हो गए हैं. उसका विस्तार भी आप समझ सकते हैं. इनके अपने तरीके भी हैं. एडमिशन क्लैट के माध्यम से लॉ यूनिवर्सिटीज में होता है.
1: जी
0: पहले केवल लॉ कॉलेजेस होते थे, अब लगभग हर प्रांत में एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, तो जो लॉ ग्रेजुएट्स को तैयार कर रही है या एक्सपर्ट्स को तैयार कर रही है. और जो एक हमारे यहाँ गैप, जिसकी आपने बात की कि मैं बीए हूं, मैं एमए हूं, मैं पीएचडी भी हूं, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ, ये माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार उद्धरण देते हैं, तो बच्चा कोई जवाब नहीं दे पाता विश्वविद्यालयों के माध्यम से. अब जब बच्चा निकलता है तो उसके पास कोई ना कोई निपुणता, कोई ना कोई कौशल, कोई ना कोई विशेषज्ञता अवश्य होती है, और इस प्रकार ये रोजगार से जोड़ने का माध्यम है. दूसरी बात जो आपने पूछी है, इंडस्ट्री, अब लगभग हर विश्वविद्यालय को ये निर्देश दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से भी और यूजीसी के माध्यम से भी, कि वे तीसरे वर्ष में, हो सके तो सेकंड से ही शुरू कर लें, इंटर्नशिप करें, इंडस्ट्री से बात करें, आसपास जो भी इंडस्ट्री हो उनको कांटेक्ट भी करें, उनको किस प्रकार की आवश्यकता है. एक तो बच्चों को वहां इंटर्नशिप के लिए भेजें, इंडस्ट्रीज के एक्सपर्ट्स को, उन इंडस्ट्रीज के जो ओनर्स हैं, उनको विश्वविद्यालयों के स्टडी बोर्ड्स में या उनके मैनेजमेंट बोर्ड्स में, एकेडमिक काउंसिल में, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में स्थान दें, ताकि रोजगार और शिक्षा के बीच का, कौशल और विद्या के बीच का जो अंतर अभी तक था, वह अंतर समाप्त हो सके. यह प्रयास विशेष तौर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बाद से किया जा रहा है, और इसमें बहुविषयक
1: जी
0: और लचीली शिक्षा हमने इसमें जोड़ी है उसके साथ ही, और कौशल कक्षा 6 से ही आरंभ हो जाए, और आईआईटीज का नंबर बढ़ाया गया है, आईआईएम्स का नंबर बढ़ाया गया है, एनआईटीज बहुत सारी खोली गई हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस बहुत सारे खोले गए हैं, आईसर्स बनाए गए हैं जो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का एक प्रकार से समानांतर बन सके, ताकि बच्चों को सच में ही, जो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ समय पहले कहा था कि आप
1: जी
0: सपना देखें, हम आपको उड़ान का अवसर देंगे, तो ये विश्वविद्यालय वस्तुतः उन सपनों को सत्य करने के लिए और युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने के लिए सच में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं. कॉलेजेस में और विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर के रूप में, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के रूप में आ सकते हैं, और बच्चों को अपनी विशेषज्ञता से लाभान्वित कर सकते हैं. ये बिल्कुल नई बात लगभग पिछले 3 वर्षों से भारत की उच्च शिक्षा में आई है.
1: और इन सब का उद्देश्य यही है कि जो बच्चे जिस विषय की पढ़ाई कर रहे हैं वो थियरी के साथ साथ इंडस्ट्री में क्या कुछ घट रहा है उसको भी करीब से जान सकें, समझ सकें, ताकि जब वो इंडस्ट्री में प्रवेश करें तो वो उन चीजों के लिए नए नहीं रहें। संजीव जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पहले अगर पढ़ाई बीच में छूट जाए तो साल बर्बाद हो जाता था, लेकिन जब से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है और उसमें बीच में पढ़ाई छोड़ने पर क्रेडिट्स सुरक्षित रखने वाला एबीसी सिस्टम हो या फिर मातृभाषा में पढ़ाई, कागजों पर तो ये बहुत बड़े नियम लगते हैं और लगता है कि बहुत बड़ा बदलाव हो गया, लेकिन बतौर पत्रकार ग्राउंड जीरो में क्या बदला है इससे?
2: ग्राउंड जीरो पे बदलाव तो आया है. आप अगर देखेंगे तो भारत का फोकस जो था पहले, अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पहले आई 1986 में, उसमें कुछ बदलाव हुआ 1992 में, लेकिन तब से लेके उसके बाद नेक्स्ट पॉलिसी आई, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने पॉलिसी ही नहीं लेके आए. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई 2020 में, मतलब ऑलमोस्ट 3 दशक बाद. तो अब ये जरूरी भी थी बिकॉज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इंडिया ने हस्ताक्षर किया था 2015 में, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उसके मुताबिक लानी थी टू इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल बाय 2030. सो उसमें बदलाव तो काफी आया है, लेकिन अगर आप एंशियंट इंडिया में देखें, हमारा ज्ञान पहले 3 चीजों पर आधारित था, ज्ञान, जो नॉलेज, विजडम, प्रज्ञा और ट्रूथ, सत्य को अचीव करने के लिए.
1: जी.
2: सो आप देखेंगे कि हमारे एंशियंट भारत में तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटी, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, बहुत हाई स्टैंडर्ड्स की यूनिवर्सिटीज थी, जो उन एंशियंट इंडिया में पुरानी शताब्दियों में भी लोग चाइना से और यूरोप से और कहां कहां से लोग पढ़ने आते थे वहां, और इन हाउस फैसिलिटी थी वहां स्टूडेंट्स के रहने की, 4-4, 5-5 हजार

बच्चा वहां पढ़ता था। तो भारत ने कहीं ना कहीं बीच में जब इन्वेड हुआ, पहले मुगल से फिर ब्रिटिश से, समहाउ ये अपनी एज लूज कर दी। उसके बाद भारत ने दोबारा फोकस किया है अब दोबारा अपने आप को, क्योंकि डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो भारत के पक्ष में है और यंग कंट्री इंडिया माना जा रहा है, और स्किलिंग को बढ़ावा देते हुए हर युवा को स्किल से एम्पावर करने से उसको सक्षम बनाएं कि वो वर्ल्ड में टेक ओवर कर सके। सो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो अब की है, ये बहुत वास्ट डॉक्यूमेंट था जो प्रिपेयर किया, इसमें हायर एजुकेशन में बहुत रिफॉर्म

0: कंटिन्यूअसली रिफॉर्म्स की प्रोसेस जरूरी है। शिक्षा ही भारत को आगे ले जा सकती है। जब हर इंडियन जब निपुण होगा शिक्षा में, तभी भारत आगे विकसित बन सकता है।
1: सुषमा जी, अभी संजीव जी ने एक अपने सवाल के जवाब में जो बताया एनएमसी के बारे में, हम उसी पर चर्चा करते हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन, एनएमसी के आने के बाद देश में मेडिकल सीटों को लेकर एक बड़ा बदलाव आया है। एमबीबीएस और पीजी दोनों की सीटें लगभग दोगुनी हो गई हैं। डॉक्टरी की पढ़ाई के इस तरह आसान और सुलभ होने से हमारे देश के युवाओं के लिए और गांव शहरों की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए इसके क्या मायने हैं, और पिछले दो दशकों में इसमें जो परिवर्तन हुए हैं वो भावी भारत के निर्माण में कितनी अहम भूमिका निभा सकते हैं?
2: अगर विकसित भारत की बात करें और भावी भारत की बात करें, तो शिक्षा और स्वास्थ्य वो दो मजबूत पिलर्स होते हैं जिनके आधार पर किसी भी विकसित राष्ट्र की नींव रखी जाती है। तो शिक्षा के क्षेत्र में हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत परिवर्तन किए हैं, जो अर्ली चाइल्डहुड केयर से लेके, जिसकी बात अभी हमने की, शिक्षा के लिए विद्यालय से पहले ही खेल खेल में तैयार किया जाए, से विशेषज्ञ डोमेन स्पेसिफिक विश्वविद्यालय खोले गए हैं, वह एक बात है। लेकिन रेगुलेशन भारत में एक समस्या थी, और ये माना जाता था या ये घटित हो गया था कि जो भी नियंत्रक नियामक आयोग हैं या परिषदें हैं, वह अपने आप में भ्रष्ट निकाय बन गए थे, क्योंकि पारदर्शिता नहीं थी। इसलिए एक तरफ अभी हेकी जो जल्दी ही आएगा, यूजीसी का स्थान लेगा और बहुत सारी परिषदों का स्थान लेगा, लेकिन 2020 में ही भारतीय चिकित्सा परिषद के स्थान पर भारतीय चिकित्सा आयोग या राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग लाया गया, क्योंकि मेडिकल एजुकेशन में इतना ज्यादा रेगुलेशन था, जैसे लॉ एजुकेशन में भी है लगभग। तो यहाँ संरचनात्मक सुधार तो ये हुआ कि 4 स्वायत्त बोर्ड बना दिए, अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड, मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड, एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मेडिकल एजुकेशन, क्योंकि एथिक्स भी उस रिसर्च के लिए भी आवश्यक है और शिक्षा के लिए भी आवश्यक है। और इसके साथ साथ शिक्षक संकाय से की योग्यता से जुड़े हुए जो नियम थे उनको भी अपडेट किया गया है, और वहीं से जो सुधार आरंभ हुए, तो मेडिकल कॉलेजेस में सीटों की पारदर्शी विधि प्रक्रिया, यानी आप नीट के माध्यम से एकीकृत हो गए, साथ ही साथ पारदर्शी प्रवेश व्यवस्था हो गई, क्योंकि आपको पता है आपका कौन सा स्थान है, आपने कहाँ अप्लाई किया है, एंड एवरी इंस्टीट्यूशन इज सपोज टू पुट इट ऑन देयर बोर्ड, पुट इट ऑन देयर वेबसाइट। तो यह भविष्य के लिए इसलिए बहुत सुंदर है कि भारत का बच्चा कहीं यूक्रेन भागता था, कहीं चीन भागता था, कहीं और किसी विदेश में भागता था, क्योंकि यहाँ मेडिकल सीट्स उसके लिए उपलब्ध नहीं थी। तो मेडिकल सीटों का बढ़ना दो प्रकार से उत्तम है। एक, जो बच्चा यहाँ चिकित्सा शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, चाहती है, उसको यही अवसर उपलब्ध हो रहे हैं, और जो भारत के विभिन्न चिकित्सालयों में चिकित्सा विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं है या टीचर, मेडिकल टीचर्स उपलब्ध नहीं थे, वह भी अब उपलब्ध होंगे।
1: भारत की डेमोग्राफिक डिविडेंड का पूरा लाभ उठाने के लिए स्किल इंडिया, जिसे हम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कहते हैं, PMKVY 4.0 की शुरुआत हुई है इस देश में, और उसके तहत हम देख रहे हैं कि आज के समय की जरूरत के अनुसार AI, रोबोटिक्स और 3D प्रिंटिंग जैसी फ्यूचरिस्टिक स्किल्स में युवाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। स्किल और रोजगार के क्षेत्र में जो परिवर्तन आया है, और जब से ये योजना शुरू हुई है करोड़ों युवाओं को इससे प्रशिक्षित किया जा चुका है। और सुषमा जी ने भी थोड़ी देर पहले कहा था कि कौशल से जुड़े विश्वविद्यालय भी चल रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं, युवाओं में उनको स्किल्ड बनाने में, उनको खुद का व्यवसाय शुरू करने में, नौकरी खोजने की बजाय नौकरी देने में इसकी कितनी बड़ी भूमिका आप देख रहे हैं?
0: जी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि भारत को विकसित बनाने के लिए शिक्षा का बहुत महत्व है, और शिक्षा का महत्व ये है कि अगर जब तक उसके हर सिटीजन ट्रूली ग्लोबल सिटीजन ना बने, कि शिक्षा यहाँ ग्रहण करे और हर जगह उसकी वैल्यू हो। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसका विजन भी यही था कि एक तो अपनी मदर टंग में शिक्षा प्रदान करनी, उस पे फोकस था, दूसरा इंडियन इथॉस में रूटेड हो हमारा एजुकेशन, और तीसरा हर सिटीजन को एक ट्रूली ग्लोबल सिटीजन बनाना। तो स्किलिंग बहुत जरूरी एस्पेक्ट था, क्योंकि डेमोग्राफिक डिविडेंड आपने बात करी, भारत का एक एडवांटेज है, बहुत मेजर एडवांटेज है, और जब तक उसके युवा शिक्षित नहीं होंगे, स्किल्ड नहीं होंगे कि वर्ल्ड पावर के साथ जो बाकी देशों के युवा हैं उनके साथ कम्पीट करने के लिए, जब ट्रूली ग्लोबल नहीं होंगे तो वो कम्पीट नहीं कर सकते। तो इसलिए स्किल यूनिवर्सिटीज, अगर आपको याद हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने 2014 में, तो सबसे पहले उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री में एक स्किल डिपार्टमेंट, एक स्पेशल अलग बनाया, जिसमें युवाओं को स्किल करने के लिए, जैसे पहले हमारे हायर लेवल पे IITs होती थी स्किल करने के लिए, IIMs थे, लोअर लेवल पे ITIs वगैरह थी और पॉलिटेक्निक्स थे। तो उसके अलावा अब स्किल यूनिवर्सिटीज भी बन रही हैं। और जैसे एम्स की बात करी कि वो हेल्थ एजुकेशन में, अब एम ये है कि हर स्टेट के पास एक एम जरूर हो, एक एटलीस्ट हो। 12 या 14 निर्माण हो चुके हैं एम्स, एक से शुरू करके, सिमिलरली हर स्टेट के पास होगा। सो स्किल यूनिवर्सिटीज में भी इस स्पेसिफिक फील्ड्स में, जैसे हायर एजुकेशन की हमने बात करी, तो स्किल प्रदान करने के लिए युवाओं को, इवन पॉलिटेक्निक्स और ITIs जो थे उनको भी अपग्रेड किया जा रहा है। तो बहुत सारा फोकस जो है वो स्किलिंग पे लग रहा है, और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एजुकेशन इज कंटिन्यूअसली वर्किंग इवन विद द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया जा रहा है, इंडस्ट्री को इन्वॉल्व किया जा रहा है, सो दैट द यूथ बिकम एम्पावर्ड विद ग्लोबल स्किलिंग स्किल्स।
1: सुषमा जी, एक सवाल परीक्षा पे चर्चा से जुड़ा भी। परीक्षा की जब भी हम बात करते हैं, परीक्षा की चर्चा करते हैं, तो दो दशक पहले के भारत में जब मैं विद्यार्थी था तो घर का माहौल ऐसा हो जाता था कि पता नहीं घर में क्या हो गया है। टीवी ऑन होना बंद हो जाते थे, अगर कोई मेहमान आने वाले हैं तो बता दिया जाता था कि अभी परीक्षा चल रही है बच्चों की, आप थोड़े समय बाद आइए, घर में शोर शराबा नहीं होता था। लेकिन उसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा जैसे कार्यक्रम की शुरुआत की, खुद बच्चों से बात करते थे, खुद उनके अभिभावकों को बताते थे, और कुल मिलाकर एक माहौल तैयार किया गया कि परीक्षा डर का मामला नहीं है, इसे आप एक त्योहार की तरह देखिए, एक उत्सव की तरह देखिए, अगर उसमें आप नाकाम हो भी जाते हैं तो सुसाइड करने की जरूरत नहीं है, डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है, जीवन में बहुत सारे अवसर हैं। इस बदलाव से बच्चों के मेंटल हेल्थ और कॉन्फिडेंस में बहुत परिवर्तन आया, अभिभावकों को भी बातें समझ में आई। कैसे देखते हैं बच्चों के मनोविज्ञान के नजरिए से, उनके विकास के नजरिए से और सामाजिक परिवर्तन के नजरिए से कितना बड़ा बदलाव आप मानती हैं परीक्षा पे चर्चा को?
2: जी, सबसे पहले तो इसकी जो खूबसूरती है या सौंदर्य है वो ये है, प्रधानमंत्री स्वयं बच्चों से बात करें, ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है कि विद्यार्थियों को राष्ट्र के प्रधानमंत्री से बात करने का, संवाद करने का अवसर मिल रहा है। तो राष्ट्र के शीर्ष नेतृत्व के साथ वो बात करते हैं, सीधा संवाद करते हैं, विद्यार्थी करते हैं, शिक्षक करते हैं, अभिभावक करते हैं, और इसको एग्जाम वॉरियर्स अभियान भी उन्होंने आरंभ में चलाया। ये मुझे लगता है बहुत ही समीचीन था और सामयिक भी था, क्योंकि एक समय ऐसा आया, बिल्कुल सही है, मैं भी उसी समय की उपज हूँ, जब आपने कहा टेलीविजन भी बंद, घर में मेहमानों का आना भी बंद, कमरा भी बंद, और बच्चे के लिए जैसे सजा हो उसे एक एग्जाम के लिए तैयारी करनी है और अधिक से अधिक मार्क्स लेने, उसमें अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने हैं, और एक एग्जाम ना हुआ ऐसा लगता था जैसे जीवन वहीं रुक गया है, और वहीं रुककर उसको सफलता ही हासिल करनी है, उसके बाद उसका दरवाजा खुलेगा। उसमें बहुत बड़ा बदलाव माननीय प्रधानमंत्री जी के संवाद से आया है, और इसे आप इस रूप में भी देख सकते हैं कि 3 करोड़ से अधिक पंजीकरण अब तक, नौवां संस्करण 2026 में हुआ था उसमें इतने पंजीकरण हुए, और सहभागिता भी बहुत बड़ी है, क्योंकि कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थी इसमें भाग ले सकते हैं, अलग अलग श्रेणियों में पंजीकरण कराते हैं, और उद्देश्य भी यह है परीक्षा के तनाव को कम करना। यहाँ मैं विशेष तौर पर एक आंकड़ा लेना चाहती हूँ कि हमारे देश के यदि विद्यालयों के आंकड़े हम लें तो विद्यार्थी माध्यमिक स्तर तक तो एनरोलमेंट 88.5% है, लेकिन 9वीं से 12वीं तक ये घटकर 56.4% हो जाता है। मुझे लगता है कि इनको भी एड्रेस करना अवश्य ही माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य रहा होगा, ताकि जीवन के प्रति, परीक्षा के प्रति, अंकों के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हो, और तनाव कम हो तो व्यक्ति अपने आप अवसर देखने लगता है, खोजने नहीं पड़ते पर उसको प्राप्त कर सकेंगे।
1: संजीव जी, आखिर में परीक्षा पे चर्चा का एक और महत्वपूर्ण पहलू रहा स्ट्रेस को कम करना, और कहीं ना कहीं उससे जो परिणाम हमें देखने को मिले वो बहुत शानदार रहे। संक्षेप में, कार्यक्रम में समय कम है, क्या बताएंगे आप?
0: जी, ये जो परीक्षा पे चर्चा जो प्रधानमंत्री जी ने 2018 में इनिशिएटिव शुरू किया, इसका पर्पस मेनली यही था कि हाउ टू अप्रोच एग्जाम्स इन अ स्ट्रेस फ्री एंड इजी मैनर। सो सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री ने इंटरेक्शन स्टूडेंट के साथ, टीचर्स के साथ और पेरेंट के साथ, मैं आपको बता दूं कि टोटल इस इनिशिएटिव के साथ अभी तक टोटल 4.5 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी यू नो स्टूडेंट्स टीचर्स एंड पेरेंट्स जुड़ चुके हैं। 4.2 करोड़ तो स्टूडेंट्स ही हैं, 25 लाख टीचर्स

0: 6 लाख पेरेंट्स हैं और पहला संस्करण इसका 16 फरवरी 2018 को हुआ। उसके बाद प्रधानमंत्री ने इसमें काफी पहलू उठाए। फॉर एग्जांपल 1 2024 में उन्होंने इस पे बहुत इंपॉर्टेंटली बच्चों को यह भी बताया कि अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए रीलें देखने में और हैव एनफ स्लीप, नींद बहुत जरूरी है ताकि अगले दिन फ्रेश होके अपना एग्जाम दे सके। उन्होंने पहले एक बारी पबजी का भी जो बहुत क्रेज की तरह बच्चों में फैल चुका था, बाद में तो गेम बैन हो गई, लेकिन पबजी के बारे में भी मेंशन किया कि वो बच्चे नहीं उसमें करें। सो ये जो इनिशिएटिव था बेसिकली बहुत स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेटिव भी है क्योंकि प्रधानमंत्री जी उसके साथ अपने अनुभव भी उसके साथ जोड़ देते हैं।
1: तो श्रोताओं, शाला प्रवेश उत्सव से शुरू हुई प्राथमिक शिक्षा की एक छोटी सी चिंगारी आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, निपुण भारत और गतिशक्ति विश्वविद्यालय जैसे वट वृक्ष का रूप ले चुकी है। गुजरात के दूर दराज के गांव में ड्रॉपआउट रेट कम करने के लिए एक संकल्प से लेकर आज 145 करोड़ भारतीयों के विकसित भारत 2047 के सपने तक, ये यात्रा सिर्फ योजनाओं की नहीं बल्कि सोच के परिवर्तन की यात्रा है। जब देश का शीर्ष नेतृत्व शिक्षा को केवल कागजी डिग्रियों तक सीमित न मानकर हर बच्चे के आत्मविश्वास, उसके मानसिक स्वास्थ्य, उसकी मातृभाषा और उसकी कुशलता से जोड़ता है, तब जन सेवा की यही भावना वास्तव में एक स्वर्णिम देश सेवा का रूप ले लेती है। चर्चा में शामिल होने के लिए संजीव जी आपका और सुषमा जी आपका बहुत बहुत आभार।
0: जी बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 12वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा, शिक्षा और कौशल, भविष्य की नींव। इसमें भाग ले रहे थे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की पूर्व सदस्य प्रोफेसर सुषमा यादव और वरिष्ठ पत्रकार संजीव चोपड़ा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप NewsOnAIR और यूट्यूब चैनल NewsOnAIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: हुणे तुसी सुन रहे सी जन सेवा से देश सेवा। तुसी जुड़े हुए हो आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र दे नाल।
4: श्रोतियां दी जानकारी लई सूचित कीता जांदा है कि दिल्ली तो विशेष प्रसारण होण कारण 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां दे प्रसारण समय विच तब्दीली कीती गई है। इस अनुसार 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां हुण शाम 7:30 बजे दी बजाए रात 8:30 बजे प्रसारित कीतियां जाणगियां। सारे श्रोतियां नूं बेनती है कि कृपा करके नवे प्रसारण समय दा ध्यान रखण।
3: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी दा ये जलंधर केंद्र है। ते आओ हुण सुनदे आं विविधा दे तहत व्यंग वार्ता, अब दिल भी प्रदूषित होने लगा, वार्ता करने प्रेम विच।
5: सुबह सुबह शर्मा जी अखबार लेकर बरामदे में बैठे थे। अखबार के पहले पन्ने पर प्रदूषण की खबर थी। शर्मा जी ने चश्मा ठीक किया और ज़ोर से बोले, वर्मा जी लगता है अब हवा में सांस लेना भी महंगा पड़ने वाला है। पास ही चाय पी रहे वर्मा जी बोले, हवा की चिंता छोड़िए शर्मा जी, आजकल तो आदमी के दिल में भी प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। शर्मा जी ने अखबार नीचे रखा। दिल में प्रदूषण, ये कैसी नई बीमारी है? वर्मा जी मुस्कराए, बीमारी पुरानी है, बस अब पहचान में आने लगी है। शर्मा जी ने पूछा, मसलन? वर्मा जी बोले, पहले आदमी के दिल में प्रेम, दया, करुणा और इंसानियत रहती थी, अब वहाँ ईर्ष्या, स्वार्थ, लालच, अहंकार और दिखावे ने फ्लैट

वर्मा जी बोले, पहले आदमी के दिल में प्रेम, दया, करुणा और इंसानियत रहती थी। अब वहाँ ईर्ष्या, स्वार्थ, लालच, अहंकार और दिखावे ने फ्लैट खरीद लिया है। शर्मा जी ने गहरी सांस ली। तो फिर दिल की सफाई कौन करेगा? वर्मा जी बोले, नगर निगम से पूछिए, आखिर हर तरह की सफाई का ठेका उन्हीं के पास होता है। दोनों हंस पड़े। तभी शर्मा जी के मोबाइल पर संदेश आया। उन्होंने देखा, एक परिचित ने सोशल मीडिया पर अपनी नई कार की तस्वीर डाली थी। वर्मा जी ने पूछा, किसकी कार है? मिश्रा जी की। अरे, अभी तो पिछले साल ही कार खरीदी थी। शर्मा जी बोले, लेकिन इस बार नई कार है। वर्मा जी तुरंत बोले, फिर तो धूल में प्रदूषण का बढ़ना स्वाभाविक ही है, क्योंकि अब मिश्रा जी की कार देखकर मोहल्ले के आधे लोगों के दिल में जलन का धुआं उठेगा। उसी रात शर्मा जी को एक अजीब सपना आया। उन्होंने देखा कि उनका दिल बाबू उनके सामने खड़ा है। वो दिल बाबू बहुत नाराज थे। शर्मा जी ने पूछा, क्या हुआ? दिल बाबू बोले, क्या हुआ? मेरी हालात देखिए, आपने मुझे दिल कम और कूड़ेदान ज़्यादा समझ लिया है। शर्मा जी घबरा गए, मैंने क्या किया? दिल बाबू बोले, सुबह ईर्ष्या डालते हैं, दोपहर में क्रोध और शाम को अहंकार और रात को दूसरों की सफलता देखकर जलन। ऊपर से सोशल मीडिया की अफवाहें अलग। शर्मा जी बोले, लेकिन ये सब तो समाज में है। दिल बाबू बोले, तो क्या हर चीज़ घर में लाकर रखनी जरूरी है? शर्मा जी चुप हो गए। दिल बाबू ने आगे कहा, पहले मेरे अंदर प्रेम रहता था, अब लोग मुझे बैंक लॉकर समझ कर रखते हैं। किसे कितना प्रेम देना है पहले हिसाब लगाते हैं। शर्मा जी ने पूछा, तो आपको चाहिए क्या? दिल बाबू बोले, थोड़ी इंसानियत, थोड़ी करुणा और थोड़ा कम स्वार्थ। शर्मा जी बोले, इतना ही? दिल बाबू बोले, हाँ, बाकी जगह तो आपने पहले ही अहंकार से भर रखी है। अगले दिन शर्मा जी ने सोचा कि दिल बाबू की शिकायत गंभीर है। वे शहर के प्रसिद्ध हृदय विशेषज्ञ डॉक्टर दिलेश्वर जी के पास पहुंच गए। डॉक्टर ने पूछा, क्या तकलीफ है? शर्मा जी बोले, डॉक्टर साहब, मेरा दिल प्रदूषित हो गया है। डॉक्टर ने चौंक कर पूछा, कोलेस्ट्रॉल? नहीं। ब्लड प्रेशर? नहीं। फिर? शर्मा जी बोले, दूसरों की सफलता देखकर जलन होती है। डॉक्टर ने तुरंत पर्ची पर लिखा, सुबह शाम किसी की सफलता पर खुशी व्यक्त करो। शर्मा जी ने पूछा, दवा कितने दिन लेनी है? डॉक्टर बोले, उम्र भर। शर्मा जी ने अगला सवाल किया, इससे कोई सस्ती दवा नहीं है? डॉक्टर बोले, हाँ, क्या? दूसरों से तुलना करना बंद कर दीजिए। शर्मा जी बोले, डॉक्टर साहब, ये दवा तो महंगी है। क्यों? क्योंकि इसे लेने के लिए अहंकार छोड़ना पड़ेगा। डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, आपका केस गंभीर है। उसी समय अस्पताल में नेताजी भी आ गए। डॉक्टर ने पूछा, क्या परेशानी है? नेताजी बोले, मेरा दिल जनता के लिए बहुत धड़कता है। डॉक्टर ने कहा, बहुत अच्छी बात है। नेताजी बोले, चुनाव आने वाले हैं, इसलिए धड़कन कुछ ज़्यादा बढ़ गई है। डॉक्टर ने पूछा, चुनाव के बाद? नेताजी ने धीरे से कहा, फिर दिल आराम करेगा। शर्मा जी ने पूछा, जनता का क्या होगा? नेताजी बोले,
जनता भी 5 साल

0: आराम कर लेगी। डॉक्टर ने माथा पकड़ लिया। दिल बाबू को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने शर्मा जी से कहा, देखा, राजनीति में मेरा सबसे ज़्यादा दुरुपयोग होता है। वापसी में शर्मा जी की मुलाकात सोशल मीडिया बाबू से हुई। सोशल मीडिया बाबू बोले, आजकल दिल की असली पहचान क्या है जानते हो? शर्मा जी बोले, प्रेम नहीं, करुणा नहीं, फिर लाइक। उन्होंने मोबाइल दिखाया, देखिए मेरी पोस्ट पर 500 लाइक हैं, मतलब 500 लोग मुझसे प्रेम करते हैं। शर्मा जी ने पूछा, इन 500 में से कितने आपको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं? सोशल मीडिया बाबू चुप हो गए। कितने आपके दुख में आपके पास आए? वे और चुप हो गए। कितनों ने आपका हाल पूछा? आप वो मोबाइल देखने लगे। शर्मा जी बोले, तो फिर ये 500 लाइक नहीं, 500 डिजिटल थपकियां हैं। सोशल मीडिया बाबू बोले, लेकिन दिल को तो अच्छा लगता है। दिल बाबू बोले, हाँ, लेकिन मेरा पेट लाइक से नहीं भरता, मुझे सच्चे रिश्ते चाहिए। घर लौटकर शर्मा जी ने देखा कि दो भाई आपस में बात नहीं कर पा रहे थे। कारण, 5 फुट जमीन। एक भाई बोला, वह 5 फुट मेरी है। दूसरा बोला, नहीं, मेरी है। शर्मा जी ने कहा, तुम दोनों के पिता ने ये जमीन छोड़ी थी या दुश्मनी? दोनों चुप। शर्मा जी बोले, 5 फुट जमीन के लिए 25 साल का रिश्ता मत गवाओ। एक भाई बोला, लेकिन मैं झुकूं क्यों? दूसरा बोला, मैं क्यों झुकूं? दिल बाबू ने सिर पकड़ लिया, बस यही तो समस्या है। और जमीन 5 फुट की है और अहंकार 50 फुट का। अगले रविवार शर्मा जी ने मोहल्ले में एक नया अभियान शुरू किया, स्वच्छ दिल अभियान। उन्होंने घोषणा की, जिसके घर में दिल प्रदूषित है वह मेरे पास आए। वर्मा जी बोले, पहले ये बताइए कि दिल का कचरा कहाँ डालोगे? शर्मा जी बोले, जिसके कारण दिल में कचरा है उसे वहीं वापस डाल देंगे। वर्मा जी बोले, तो फिर मोहल्ले में युद्ध हो जाएगा। शर्मा जी बोले, ठीक है, फिर कचरे को खाद बना लेते हैं। इसलिए अब जरूरत है स्वच्छ हवा की, स्वच्छ पानी की, स्वच्छ पर्यावरण की। सबसे ज़्यादा ज़रूरत है स्वच्छ दिल अभियान की, क्योंकि जब दिल साफ होगा तो रिश्ते साफ होंगे, रिश्ते साफ होंगे तो समाज साफ होगा, और जब समाज साफ होगा तो हाँ, शायद हर बात पे सफाई अभियान चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, अगर कोई आपसे कहे मेरा दिल बिल्कुल साफ है, तो उसकी बात पे विश्वास मत कीजिए। पहले ये देख लीजिए कि कहीं उसके दिल में साफ होने का अहंकार तो जमा नहीं है।
1: ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਵਿਵਧਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਅੰਗ ਵਾਰਤਾ। ਅਬ ਦਿਲ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣੇ ਲਗਾ, ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਸਨ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਾਈ ਹੁਣ ਇਹ ਗਜ਼ਲ ਨੂੰ।

0: पापा दी उम्र पार दी कमाई उना दी सिख्या
1: अते हमेशा साड़ी फिकर करना।
2: वैसे उना दी एक जमा पूंजी बैंक विच भी है,
0: पर क्लेम करना मुश्किल होवेगा।
3: हुण होर भी आसान हो गया है। बैंक दी वेबसाइट जा शाखा ते जाओ, क्लेम फॉर्म भरो, दस्तावेज जमा करो, 15 दिनां च रकम प्राप्त करो, अते नॉमिनी नाल क्लेम दा निपटारा होवे होर भी आसान।
4: ਮਿਨੀਮਮ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਪੰਕਜ ਉਦਾਸ ਦਾ ਗਾਇਆ ਇਹ ਗੀਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫਿਲਮ ਸਾਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ।

खिलेगा इंडिया, खिलेगा इंडिया। साड़ी माणयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरां दे खेड दे लई दित्ते इस नारे ने पूरे देश विच खेड अंदोलन नूं वधावा दित्ता है।

0: ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਸਟੂਡੀਓ ਘੜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 8:45 ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮਾਚਾਰ ਸੰਧਿਆ, 9 ਵਜੇ ਨਿਊਜ਼ ਐਟ 9 ਅਤੇ 9:15 ਸਪੋਟਲਾਈਟ। ਬਸ ਕੁਝ ਪਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੋਏਗਾ ਸਮਾਚਾਰ ਸੰਧਿਆ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। गृहमंत्री अमित शाह का आतंकवाद से निपटने के लिए मजबूत तंत्र बनाने का आह्वान, प्रत्यर्पण पोर्टल शुरू। भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार उपायों को लागू करने पर सहमत। दोनों देशों का 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को $200 अरब करने का लक्ष्य। केंद्रीय दल सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए कर्नाटका और महाराष्ट्र का दौरा करेगा। पशुधन बीमा दावों और निगरानी को सुव्यवस्थित करने के लिए पशुधन बीमा पोर्टल शुरू। भारत और मंगोलिया के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू। सेंसेक्स 6 महीने के निचले स्तर पर पहुंचा, 72,772 पर बंद। एशियाई खेलों में भारत ने 8 और पदक जीते। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में यशवीर ने रजत और श्रीशंकर मुरली ने लंबी कूद, गुलवीर सिंह ने 1500 मीटर दौड़ तथा ईशा सिंह ने निशानेबाजी में रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह

0: ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय आतंक रोधी नीति और रणनीति प्रहार सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में प्रहार के 7 स्तंभों पर चर्चा हुई। इनमें आतंकवाद की रोकथाम, उससे निपटने की कार्रवाई, आंतरिक क्षमताओं का एकीकरण, मानवाधिकार, आतंकवाद के लिए अनुकूल परिस्थितियों को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में समन्वय तथा पूरे समाज की भागीदारी से पुनर्प्राप्ति और लचीलापन शामिल है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की

0: भी शुरू किया। ये विदेशों में मौजूद भगौड़ों को भारत वापस लाने के प्रयासों में समन्वय और तेजी लाने में मदद करेगा। उन्होंने राज्य पुलिस बलों से केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर काम करने के लिए समर्पित टीमें गठित करने का आग्रह किया। भानु प्रताप की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार के निपटान, भुगतान और संदेश प्रणालियों के एकीकरण और केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राओं से संबंधित पहलों के समय पर क्रियान्वयन के लिए कदम उठाने पर सहमत हुए हैं। दोनों पक्षों ने आज मुंबई में निवेश संबंधी भारत यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के दौरान इस समझौते पर सहमति जताई। बैठक की अध्यक्षता वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अबुधाबी निवेश प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक शेख हामिद बिन जायद अल नहयान ने की। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ाने के लिए ऊर्जा, उद्योग, बुनियादी ढांचा और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों की पहचान की गई है।
2: Annually, we have been meeting regularly.
3: हम सालाना और नियमित रूप से बैठकें करते रहे हैं और दोनों पक्षों के व्यापारिक समूहों की संतुष्टि के अनुसार ठोस और महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान कर रहे हैं। आज हमने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, पोत निर्माण, आधुनिक बंदरगाहों के विकास, खाद्य सुरक्षा, विशेष रूप से खाड़ी क्षेत्र के लिए कृषि नवाचार, लॉजिस्टिक्स के विस्तार, AI और उभरती प्रौद्योगिकियों पर मिलकर काम करने, ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा फिनटेक क्षेत्र में अपने सहयोग का विस्तार करने जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को बढ़ाने पर भी चर्चा की है।
2: एक्सपेंडिंग आवर कोऑपरेशन इन द फिनटेक सेक्टर।
1: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच द्विपक्षीय व्यापार वित्त वर्ष 2025-26 में 101 अरब 25 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया, जबकि गैर तेल व्यापार 2025 में 76 अरब 20 करोड़ डॉलर रहा। दोनों पक्ष 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार में 200 अरब डॉलर के साझा लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि देश ने पश्चिम एशिया में जारी संकट और होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यवधान के बावजूद कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में आई चुनौतियों का अब तक सफलतापूर्वक सामना किया है। कोलकाता में मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में श्री पुरी ने ये बात कही। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार स्थिति पर लगातार नजर रख रही है और ये सुनिश्चित करेगी कि आपूर्ति में आए व्यवधान नियंत्रण से बाहर न हो। केंद्र सरकार कर्नाटक और महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए टीम भेजेगी। नई दिल्ली में रबी फसल अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही। संवाददाताओं से श्री चौहान ने कहा कि महाराष्ट्र और कर्नाटक सरकारों ने अपने अपने राज्यों के बड़े हिस्से में सूखा घोषित किया है।
4: राज्य सरकारों ने महाराष्ट्र में बड़े हिस्से पर और कर्नाटक में भी बड़े हिस्से पर सूखा घोषित किया है। भारत सरकार राज्यों के साथ डट के खड़ी रहेगी। कर्नाटक में भी 3 अक्टूबर को टीम बना के भेज रहे हैं वहाँ की स्थिति के आकलन के लिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से बात हुई है तो भाभी हम टीम की तैयारी कर रहे हैं। मैं स्वयं भी उन राज्यों में जाके स्थिति देखूंगा और हम अपने किसानों के साथ, राज्य सरकारों के साथ पूरी ताकत से खड़े रहेंगे इस परिस्थिति का मुकाबला करने के।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत की। ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एक एकीकृत डिजिटल मंच उपलब्ध कराएगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य पशुधन बीमा सेवाओं को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और सुलभ बनाना है। एक रिपोर्ट।
6: पशुधन बीमा पोर्टल से देश में पशुधन बीमा कार्यक्रमों के बेहतर तालमेल, रियल टाइम मॉनिटरिंग और डेटा आधारित प्रबंधन में मदद मिलेगी। इससे पूरे देश में पशुपालकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराए जा सकेंगे। श्री सिंह ने कहा कि ये पोर्टल किसानों की आजीविका की सुरक्षा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विजन को पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम है।
7: इस बीमा पोर्टल का लाभ किसानों को उठाना चाहिए। किसानों के लिए एक समस्या थी, दुर्घटना हो जाए, कोई बीमारी से पशु की मौत हो जाए तो उनकी आजीविका पर सीधा असर पड़ता था और उनकी आजीविका को सुरक्षित करने के लिए यह बीमा योजना प्रधानमंत्री जी ने 2014 में देश के सभी जिलों में चलाया। आज उसको आगे बढ़ाने

0: के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पोर्टल लॉन्च किया गया है।
1: ये पोर्टल हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 11 क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध होगा। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि बेहतर सड़क बुनियादी ढांचे के कारण देश की माल ढुलाई लागत में कमी आई है। श्री गडकरी नई दिल्ली में एक निजी मीडिया सम्मेलन में बोल रहे थे।
3: So if you want to make more export,
4: अगर हमें निर्यात को बढ़ाना है तो हमें लॉजिस्टिक लागत को कम करना होगा। आर्थिक संस्थानों द्वारा किए गए विशेष शोध और IIM बेंगलोर, IIT कानपुर तथा IIT मद्रास की एक रिपोर्ट से ये स्पष्ट संकेत मिलता है कि भारत में लॉजिस्टिक लागत में 6% की कमी आई है। पहले ये लगभग 16% थी और एक वर्ष पहले मिली रिपोर्ट के अनुसार सड़कों के बेहतर निर्माण के कारण इसमें 10% की कमी आई है।
3: 6% so it comes to 10%.
2: सर्वोच्च न्यायालय ने 2,000 रुपए से अधिक के UPI लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये शुल्क 15 अक्टूबर से प्रभावी होने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों से जनगणना के लिए समय निकालने का आग्रह किया। कल मन की बात कार्यक्रम में किए गए अपने आह्वान को दोहराते हुए श्री मोदी ने कहा कि जनगणना में भाग लेना सभी नागरिकों का राष्ट्रीय कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि इस भागीदारी से देश के भविष्य की सही तस्वीर सामने आती है। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। ये कार्रवाई 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया।
5: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं कि सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से इस संकल्प को कैसे वास्तविकता में बदला गया।
6: भारत के सहकारी क्षेत्र में 8.5 लाख से अधिक पंजीकृत समितियां शामिल हैं, जिनसे 32 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हैं। यह क्षेत्र खेती के ऋण, डेयरी, चीनी, मत्स्य पालन, आवास और विपणन जैसे क्षेत्रों में फैला है और ग्रामीण भारत के लगभग 98% हिस्से को कवर करता है। साल 2021 तक इसके लिए कोई अलग से मंत्रालय नहीं था। इसकी जिम्मेदारी कृषि मंत्रालय के पास थी, जो अलग अलग विभागों और राज्यों में बटी हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जुलाई 2021 में भारत में पहली बार एक अलग सहकारिता मंत्रालय, ये जानकारी प्राप्त की जा सके कि जमीनी स्तर पर वास्तव में कितनी समितियां काम कर रही हैं। इसके अलावा बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए नए नियम बनाए गए। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का डिजिटलीकरण किया गया। साथ ही सहकारी बैंकों को सीधे सरकारी योजना के तहत मिलने वाले पैसों से भी जोड़ दिया गया। नई दिल्ली में आयोजित वैश्विक सहकारिता सम्मेलन 2024 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण को रेखांकित किया और कहा कि यह लाखों गांवों, महिलाओं और किसानों की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर रहा है।
5: आज भारत में हम सरकार और सहकार की शक्ति को एक साथ जोड़कर भारत को विकसित बनाने में जुटे हैं। हम सहकार से समृद्धि के मंत्र पर चल रहे हैं। भारत में आज 8 लाख यानी 800,000 सहकारी समितियां हैं, यानी दुनिया की हर चौथी सहकारी समिति आज भारत में है।
6: भारत टैक्सी भी सहकारिता मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण पहल है। ये सहकारी मॉडल पर आधारित एक चालक केंद्रित गतिशीलता मंच है। इसका उद्देश्य जनता को सस्ती, सुरक्षित और विश्वसनीय परिवहन सेवाएं प्रदान करते हुए चालकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। भारत टैक्सी में शामिल होने के बाद अपने सकारात्मक अनुभवों को साझा करते हुए राजीव कुमार नाम के एक चालक ने सभी साथी चालकों से भारत टैक्सी को अपनाने और सहयोग के माध्यम से समृद्धि के इस मिशन को आगे बढ़ाने का आह्वान किया।
7: मैं सभी से रिक्वेस्ट ये करूंगा, ड्राइवर भाइयों, सारथी भाइयों से, कि सभी सहकार भारत टैक्सी से जुड़े और

0: में ज्यादा से ज्यादा काम करा है। सहकारिता का यह है सहकार से समृद्धि की ओर, तो इसको भी समझने की जरूरत है। जो विजन है कि लोगों के उत्थान के लिए जो कार्य कर रहे हैं उसमें सहकारिता में अपनी भागीदारी निभाई है।
1: पिछले 5 वर्षों में सहकारिता मंत्रालय ने सहकारी समितियों को समावेशी विकास के इंजन के रूप में बदल दिया है। जैसे जैसे भारत समावेशी और सतत विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, सहकारी समितियां समान विकास और मजबूती को बढ़ावा देना जारी रखेंगी। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और मंगोलिया के बीच आज से सीधी विमान सेवा शुरू हो गई है। नई दिल्ली और उलान बटार के बीच नियमित उड़ान शुरू होने से दोनों राजधानियों के बीच यात्रा का समय करीब 5 घंटे रह जाएगा। मंगोलिया की हुनू एयर द्वारा संचालित ये सेवा हर सोमवार को उपलब्ध होगी। इससे पहले यात्रियों को पेइचिंग या इंचियोन जैसे स्थानों पर विमान बदलना पड़ता था और यात्रा में लगभग 13 से 18 घंटे लगते थे। सीधी विमान सेवा से पर्यटन, चिकित्सा और व्यापार सहित कई क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच आवागमन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इस सेवा की घोषणा पिछले वर्ष अक्टूबर में नई दिल्ली में मंगोलिया के राष्ट्रपति यू खुरिल सुख और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवाददाता सम्मेलन के दौरान की गई थी। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज भी और मुक्केबाजी में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। भारत ने आज अपने खाते में 8 और पदक जोड़े हैं। पुरुष क्रिकेट टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। लंबी दूरी के धावक गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ के फाइनल में 3:36.72 सेकंड के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ रजत पदक जीता। भाला फेंक स्पर्धा में यशवीर सिंह ने 85.14 मीटर के शानदार थ्रो के साथ रजत पदक देश के नाम किया। निशानेबाजी में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल में रजत पदक जीता। सेंसेक्स 6 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया है। 1124 अंक घटकर 72772 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 360 अंक गिरकर 22780 दर्ज हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह का आतंकवाद से निपटने के लिए मजबूत तंत्र बनाने का आह्वान। प्रत्यर्पण पोर्टल शुरू। भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार उपायों को लागू करने पर सहमत। केंद्रीय दल सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए कर्नाटक और महाराष्ट्र का दौरा करेगा। पशुधन बीमा दावों और निगरानी को सुव्यवस्थित करने के लिए पशुधन बीमा पोर्टल शुरू। भारत और मंगोलिया के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani. I am Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. Home Minister Amit Shah calls for stronger mechanism to combat terrorism, launches new extradition portal. India and UAE agree to implement initiatives for trade in local currency. Aim to boost bilateral trade to $200 billion by 2032. Central teams to visit Karnataka and Maharashtra to assess drought situation. Government launches Pashudhan Bima portal to streamline livestock insurance claims and monitoring. Non-stop flight between India and Mongolia takes off. Sensex hits a six-month low to close at 72,772. And at Asian Games 2026, India add 8 more medals. In men's javelin throw, Yashveer Singh takes silver. Sri Shankar Murali in long jump, Gulveer Singh in 1500 meter race and Isha Singh in shooting also strike silver. And now the news in detail. Union Home Minister Amit Shah today inaugurated the conference on Prahar, National City Policy and Strategy in New Delhi. The conference deliberated upon the 7 pillars of Prahar, including prevention, response, aggregating internal capacities, human rights, attenuating conditions for terrorism, aligning international efforts and recovery and resilience through a whole-of-society approach. Speaking on the occasion, the Home Minister said the government has adopted a zero-tolerance policy against all forms and manifestations of terrorism. He highlighted that from 2019 to 2026, the Narendra Modi government successfully brought back 288 fugitive criminals to India from 36 countries.

0: है।
1: पर जिन्ने साथों जुड़दे है उन्ने तो जरूर दे ना,
0: चलो ठीक है।
1: सानू उस दे गेड़ियां दा मुलता भी उतारना ही होया ना।
0: हाँ भी
1: आखिर पंचनी है पिंड दी,
0: आओ जी।
1: नाले मुंडा बाहर जान पिछों आप मोड़ दू।
0: आहो
1: भगवान ने गुआंढी गुआंढ दे काम ना आया तो की फायदा।
0: बिल्कुल ठीक है कहिंदे।
1: सियाणियां के है बंदा ही बंदे दा दारू हुंदा है।
0: हाँ जी
1: आपा पंचनी दी मदद जरूर करनी है। चंगा बे मैं हुण चल।
0: ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਚਲੋ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਕਰੋ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ 'ਚ ਦੇਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੁਕ ਗਏ, ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ, ਪਰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿਓ, ਕਿਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਘਸੀਟੀ ਫਿਰੋਗੇ। ਚਲੋ ਚਲੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਚਲੋ

0: अच्छा पुत्र भाई मैं हुण चलदा काम काज दे देने सब कुछ सामने पैना जाके पुत्र
1: जी
0: आज तेरे वीर मिंदर ने भी पढ़ाई पूरी करके शाम नु घर वापस आ जाना
1: अच्छा जी
0: हां
1: जी
0: हुण पार हो जाऊ मेरा हौला
1: जी हां जी बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बापू
0: खेती विच हाथ बटाओ सियाणे पुत्र ठीक ही कहना कल्ला एक ते दो ग्यारह
1: जी बापू जी सत श्री अकाल बापू
0: शाबाश पुत्र सुखी रहो
1: जी।

0: पैरी पहना बीजी।
1: हाय मेरे पुत आ गया तो मैं सबके मैं भारी जावा अपने लाडले तो ठहर पुत ठहर मैं तेल चुआ के बूहे तो नगावा सुख नाल मेरा पुत पढ़ाई पूरी करके आया।
0: बीजी बस करो बीजी की करी जान दे बापू जी नहीं देखते किते ये अपना छोटू नहीं दिखाई देंदा किथे गए सारे
1: पुत्र इन्होंने ते किथे जाना तेरा बापू खेतां च होना ते दलीपा बच्चियां नाल खेड़दा होना किते।
0: अच्छा बीजी मैं भी चलदा खेतां नूं जाके माहौल देखा खेतां दा साल तो उपर हो गया खेतां च पैर तरिया
1: आले पुत्र पहला चाह पी लै फिर चलदे आ मैं भी चलदी आ तेरे नाल।
0: बीजी तुसी घर दा काम कार करो मैं कल्ले चला जाऊंगा छोटा बच्चा मैं ठीक है चलदा मैं खेतां नूं।
1: चंगा
0: हरी बना बापू जी
2: ओए आओ मेरे शेर पुत्रा बल्ले बल्ले जूना वासा रे वे बढ़िया बढ़िया उम्र हो शाबाश जवानियां माने आजा जरा छाती ने लग बैठ जा मेरे कोले। अच्छा अभी और सुना तेरी सेहत तो ठीक है?
0: ठीक है जी बिल्कुल।
2: पढ़ाई पूरी हो गई?
0: बापू जी पढ़ाई तो फर्स्ट क्लास पूरी हुई है।
2: वाह
0: ते सेहत तोडे सामने है ओ मुंडे किथे अपने
2: ओ वेखो पुत्रा उधर देख ओए सानी ओ लक्ष्मण ओए राजू ओए इधर आओ देखो कौन आया
3: ओ होने आ सरदार जी होने आ
2: जाओ
3: हैं ओ बल्ले बल्ले बल्ले भई ये तो साले छोटे सरदार जी ने
0: किदा भई मले हो
3: ठीक है जी ठीक है सत श्री अकाल छोटे सरदार जी
0: सत श्री अकाल सब ठीक ठाक है
3: हां बिल्कुल ठीक है जी ए सरदार जी ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ।
0: ਅੱਛਾ
3: ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਵੇਂ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਹਾਂ
0: ਜ਼ਰੂਰ ਬਈ ਜ਼ਰੂਰ।
2: ਅੱਛਾ ਬਈ ਪੁੱਤਰਾ ਚੱਲ ਹੁਣ ਘਰ ਚੱਲੀਏ ਕਾਫੀ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਮੋ
3: ਹਾਂਜੀ
2: ਓਏ ਕੱਲ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਆ।
3: ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ
2: ਸੁਣਿਆ
3: ਹਾਂਜੀ
2: ਚਲੋ ਵੀ ਆਓ ਫਿਰ
0: ਚੰਗਾ ਵੀ ਮੁੰਡਿਓ।

0: महेंद्र नूं गया 6 साल हो गए, ना कोई चिट्ठी ना कोई पत्र ना टेलीफोन। पता नहीं रब नूं की मंजूर है।
1: आ लो चाह पियो, एवें ना इधर उधर दियां सोची जाओ। रब जो करदा चंगा ही करदा, एवें सानू ही माड़ा लगता है। बस उठ के खेतां वल गेड़ा मारो, तुहाडा मन किते उधरे पै

0: 2026 आईजी नगोया।
1: खेलों में बड़ी चीज है खेल भावना, लेकिन जो चीज खेलों में रोमांच, उत्तेजना, आह्लाद और उत्साह भरती है वो है जीत की ललक। खिलाड़ी मैदान पर जयघोष का सपना लेकर ही उतरता है और जितना बड़ा मंच उतनी बड़ी भूख, लेकिन उतनी ही बड़ी चुनौतियां भी। एशिया के सबसे बड़े खेल मेले 20वें एशियाई खेलों में भारतीय रणबांकुरों ने क्या क्या किया, हम दिन भर अपनी लाइव अपडेट्स में आपको बताते ही रहे हैं। और अब समय है विस्तृत लेखे जोखे का। आज के इस हाइलाइट्स कार्यक्रम में आपका स्वागत है, मैं हूं अनुपम पाठक। सबसे पहले आज की सुर्खियां। एथलेटिक्स में भाला फेंक में भारत को दोहरे पदक, यशवीर रजत, रोहित यादव कांस्य पदक, गुलवीर और मुरली श्रीशंकर ने रजत पदक जीते, पारुल चौधरी और विद्या रामराज को कांस्य। शूटिंग में ईशा सिंह का जलवा, रजत पदक पे निशाना, कुराश में भी पदक, पिंकी बलहारा ने पाया कांस्य पदक। हॉकी में गोलों की बौछार जारी, बांग्लादेश को करारी शिकस्त दी। क्रिकेट में बिना मैदान पर उतरे ही भारत सेमीफाइनल में। और बॉक्सिंग में तीन और पदक मुक्केबाजों ने पक्के किए। एथलेटिक्स में पदकों के हिसाब से दिन बेहद शानदार रहा, 3 रजत और 3 कांस्य पदक, लेकिन स्वर्ण पदक की तलाश आज भी अधूरी रही, खासकर ये देखते हुए कि 2 डिफेंडिंग चैंपियंस और मुरली श्रीशंकर के रूप में एक बहुत मजबूत उम्मीद मैदान पर थी। लेकिन पहले बात करेंगे जेवलिन की। देश के दुलारे नीरज चोपड़ा के नाम वापस लेने के बाद जिसे भी लगा हो कि स्पर्धा का ग्लैमर और स्तर थोड़ा कम हो जाएगा, उसे गलत साबित किया नीरज के ही पद चिन्हों पर चल रही जोड़ी यशवीर सिंह और रोहित यादव ने। पहले चक्र में यशवीर 84.56 मीटर के साथ टॉप पर, दूसरे में भी वहीं पर। तीसरे चक्र में रोहित 84.05 मीटर के साथ पहले स्थान पर आ गए, लेकिन चौथे थ्रो में रमेश ने हुंकार भरकर जो भाला फेंका तो वो 88.33 मीटर दूर जा गिरा। लास्ट थ्रो 88.56, तो यशवीर ने भी पूरी ताकत भर के अपना कैरियर बेस्ट थ्रो किया 85.72 मीटर और रजत पदक पक्का कर दिया। तो रोहित तीसरे स्थान पर रहे, यानी भारत को दोहरी पदक सफलता। लंबी कूद में मुरली श्रीशंकर दूसरे प्रयास में 8.07 मीटर की दूरी फलांग कर दूसरे स्थान पर आ गए थे। चीन के युहाओ शी 8.17 मीटर के साथ सबसे आगे चल रहे थे। पिछले हंगचाओ खेलों की 5000 मीटर की चैंपियन मेरठ की पारुल चौधरी से एक बार फिर एक सुनहरी दौड़ की उम्मीद थी। उन्होंने दम तो बहुत लगाया, लेकिन 15:14.16 सेकंड के साथ कांस्य पदक तक ही आ सकी। इन खेलों में उनका दूसरा कांस्य पदक। लेकिन जो एथलीट इस साल लगातार उम्मीदों पर खरा उतर रहा है वो है डिस्टेंस रनर गुलवीर सिंह। भारतीय फौज के इस खिलाड़ी ने एक और शानदार दौड़ पूरी की 1500 मीटर में 3:37.92 सेकंड के साथ एक और रजत पदक। यूनुस शाह 9वें स्थान पर रहे। 400 मीटर हर्डल में विद्या रामराज ने 54.74

0: 5-5 सेकंड के साथ कांस्य पदक पाया, लेकिन याद इसलिए किया जाएगा कि उन्होंने और अनु राघवन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और अपना अब तक का बेस्ट समय निकाला। लेकिन दिल तोड़ने वाला प्रदर्शन रहा 3000 मीटर स्टीपल चेस में डिफेंडिंग चैंपियन और गेम्स के रिकॉर्डधारी अविनाश साबले का। चौथे स्थान पर पिछड़ गए, वो भी खासे अंतर से 8:21.67 सेकंड समय लिया। 400 मीटर पुरुष बाधा दौड़ में संतोष टी के 7वें स्थान पर रहे तो डिस्कस में सीमा ने पर्सनल बेस्ट निकाला 59.88 मीटर, लेकिन पदक नहीं ले पाई। चौथे स्थान पर रही तो सानिया यादव अंतिम स्थान पर आई। 4x100 महिला रिले में भारती चौकली चौथे स्थान पर रही तो 4x100 मिश्रित रिले में फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पुरुषों की 4x400 मीटर में भारतीय टीम दोनों हिट्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन निकाल कर फाइनल में पहुंच गई, लेकिन 800 मीटर महिला में पूजा ने क्वालिफाई किया पर गौतमी बाहर हार गई। शूटिंग में पदक तो आए हैं, लेकिन इन खेलों में दूसरे स्वर्ण पदक की तलाश जारी है। विश्व रिकॉर्डधारी ईशा सिंह से आस थी तो मनु भाकर के पास अपनी ख्याति को साबित करने का अंतिम मौका था। 25 मीटर पिस्टल के अलावा ट्रैप स्पर्धा भी थी। ये निशाना साध रहे हैं हमारे साथी शाहिद आजमी।
1: शूटिंग रेंज में भारत ने रोमांच की प्रकाशा तक पहुंचे मुकाबले में रजत पदक अपने नाम कर लिया। जी हां, स्टार शूटर ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिल्वर मेडल पर निशाना साधा। ईशा ने बेहद दबाव भरे फाइनल में गजब का धैर्य दिखाया और एक के बाद एक 5 शूट आप का सामना करते हुए रजत पदक अपने नाम कर लिया। फाइनल मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। निर्धारित सीरीज के बाद ईशा और चीन की जियारुक सुआन जियाओ 38-38 के स्कोर पर बराबर पर थी। इसके बाद आया निर्णायक शूट ऑफ, जहां चीन की खिलाड़ी ने 3-2 से बाजी मार ली। गोल्ड का फैसला भले ही आखिरी शूट ऑफ में हुआ, लेकिन ईशा का प्रदर्शन किसी चैंपियन से कम नहीं रहा। लगातार दबाव के बीच 5 शूट ऑफ तक मुकाबले में बने रहना और भारत के लिए सिल्वर हासिल करना ईशा की बड़ी उपलब्धि है। ईशा के इस शानदार प्रदर्शन के बीच पेरिस ओलंपिक की डबल मेडलिस्ट मनु भाकर फाइनल में जगह नहीं बना सकी। मनु 579 के स्कोर के साथ 11वें स्थान पर रही, जबकि अनुभवी राही सरनोबत 30वें स्थान पर रही। टीम इवेंट में ईशा, मनु और राही की तिकड़ी 1727 के कुल स्कोर के साथ 5वें स्थान पर रही। रैपिड सीरीज में राही का एक शॉट मिस होना भारतीय टीम के लिए भारी पड़ा। इस स्पर्धा का गोल्ड चीन ने जीता। हालांकि शूटिंग रेंज में भारत के पदक की उम्मीदें यही खत्म नहीं होती। महिला ट्रैप में नीरू ढांडा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 राउंड और 100 शॉट के बाद 95 अंकों के साथ क्वालिफिकेशन में शीर्ष स्थान हासिल किया। मनीषा कीर 84 अंकों के साथ 21वें और आशमा अहलावत 84 अंकों के साथ 23वें स्थान पर रही। भारतीय महिला टीम फिलहाल 3रे स्थान पर है। पुरुषों के ट्रैप में भी शपथ भारद्वाज 95 अंकों के साथ 5वें स्थान पर है और फाइनल की दौड़ में मजबूती से बने हुए हैं। काइनन चेनाई 91 अंकों के साथ 19वें और अहवर 87 अंकों के साथ 32वें स्थान पर हैं। भारतीय पुरुष टीम 5वें स्थान पर है, लेकिन आज शूटिंग की रेंज से सबसे बड़ी कहानी ईशा सिंह का शानदार सिल्वर है। इसके साथ ही भारतीय शूटिंग दल के खाते में अब 1 गोल्ड, 7 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज समेत कुल 12 पदक हो चुके हैं।
0: मध्य एशिया में करीब 3,500 साल पहले पनपे कॉम्बैट खेल कुराश में कुछ भारतीय भी माहिर हैं। फिलहाल सबसे आगे रही पिंकी, जिन्होंने आज एशियाई खेलों में अपना अब तक का दूसरा पदक हासिल किया। बता रही हैं विदुषी वत्स।
2: गोइंग टू द कुराश अरीना वेयर पिंकी बलहारा हैज सिक्योर्ड ब्रॉन्ज इन द वुमेन्स अंडर 78 किलोग्राम कैटेगरी। पिंकी वॉज इन एक्शन इन द सेमी फाइनल टुडे अगेंस्ट साउथ कोरियाज मो सुमन एंड द बाउट एंडेड 5-0 इन द फेवर ऑफ द Korean athlete. But this medal was assured earlier today when Pinky defeated South Korea's Lim Garum 3-0 in the quarter-final, booking her place in the semi-finals and securing the medal for India. This is also a significant moment for Indian Kurash. Pinky's medal is only India's 3rd ever Asian Games medal in the sport. And it is particularly special for Pinky herself. She won silver at 2018 Asian Games, while at the 2022 Games, her campaign ended in the quarter-finals. She has now returned to the Asian Games podium with another medal. It is also important to remember that just yesterday 4 of our other Indian Kurash athletes saw their campaigns come to an end. So today, Pinky has given the Indian contingent a very important reason to celebrate from the Kurash arena.
0: भारतीय बॉक्सर्स के मुक्कों में दम तो है, बार बार ये बात वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर साबित करते ही रहे हैं और यहाँ आईची नगोया में भी कर रहे हैं। कल 3 ने पदक पक्के कर दिए थे तो आज भी 3 मुक्केबाज रिंग में थे पदक पक्का करने के लिए। बॉक्सिंग की बात शाहिद आजमी से।
1: एशियन गेम्स 2026 में भारतीय मुक्केबाजों ने आज ऐसा पंच लगाया कि एक ही दिन में 3 मेडल पक्के हो गए। जी हां, बॉक्सिंग रिंग में भारत के लिए एक के बाद एक

0: मुक्केबाजों लवलीना बोरगोहेन, प्रिया और कपिल पोखरिया ने अपने अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबले जीतकर भारत के लिए पदक पक्के कर दिए। सबसे पहले बात ओलंपिक मेडलिस्ट लवलीना बोरगोहेन की, जिन्होंने महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग में दक्षिण कोरिया की स्वांग सुयान को 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से हराया। इस जीत के साथ लवलीना ने सेमीफाइनल में जगह बनाई और साथ ही अपना पदक भी पक्का कर लिया। इसके बाद महिलाओं के 60 किलोग्राम वर्ग में प्रिया ने भी शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने ताजिकिस्तान की मिस गोना समादोवा को 5-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। प्रिया की इस जीत के साथ भारत का एक और पदक सुनिश्चित हो गया। इसी तरह पुरुषों के 90 किलोग्राम वर्ग में कपिल पोखरिया ने कमाल कर दिया। कपिल ने दक्षिण कोरिया के किम गिचाए को 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बनाई और भारत के लिए तीसरा पदक पक्का कर दिया। आपको ये भी बता दें, बीते कल भी 3 मुक्केबाजों पुरुषों के 80 किलोग्राम भार वर्ग में अंकुश पंघाल, 90 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में नरेंद्र और महिलाओं के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन ने सेमीफाइनल का टिकट हासिल कर पदक पक्का किया। यानी एशियन गेम्स के बॉक्सिंग रिंग से 2 दिन में भारत के लिए पदकों की 2 हैट्रिक लगी। अब ये सभी 6 मुक्केबाज अपने अपने सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में कदम रखने की जद्दोजहद करेंगे।
1: तीरंदाजी यानी आर्चरी में आज कंपाउंड के मुकाबले थे। भारतीय आर्चर्स का दुनिया में बड़ा नाम है। आज 4 धनुर्धर लक्ष्य भेदने मैदान में थे। ड्रॉ कुछ ऐसा निकला कि 2 आर्चर 1/8 एलिमिनेशन में ही आमने सामने आ गए। एक को तो हारना ही था। पूरे विवरण के साथ विदुषी वत्स।
2: एक्शन कमिंग इन फ्रॉम आर्चरी टुडे। फर्स्ट फ्रॉम द मेंस कंपाउंड इंडिविजुअल इवेंट, गणेश मणिरत्नम हैज बुक्ड हिज प्लेस इन द क्वार्टर फाइनल्स, डिफीटिंग फेलो इंडियन आर्चर साहिल जाधव इन अ थ्रिलिंग quarter-final encounter. It was an extremely close contest with Ganesh edging past Sahil 149-148, winning the All Indian battle by just 1 point. Let's now turn our attention to the women's compound individual event. We began with a round of 32 and Jyoti Surekha Venom got her campaign off to a winning start up against an archer from Kazakhstan. Jyoti produced a strong performance to take the match 148-145 and move into the round of 16. But the next challenge was a tough one in the round of 16. Jyoti came up against Korea as Kang Yoon Siu. It was a high scoring contest, but Jyoti was unable to make it through, going down 146-150. That brings her individual campaign to an end here. Now the focus shifts to Chikita Taniparthi. She began her round of 32 match against Bhutan and she came through that contest comfortably, winning 149-140. Then came the round of 16 against Chinese Taipei's Chen, and this was incredibly close. After the regulation arrows, both archers were locked at 148-148. That meant the contest had to be decided by a shoot off. She survived this shoot-off and she's through to the quarter-finals.
1: क्रिकेट में भारतीय टीम का अफगानिस्तान के साथ मैच वर्षा की भेंट चढ़ गया, लेकिन रैंकिंग में ऊपर होने के नाते भारत को सेमीफाइनल में प्रवेश मिल गया और अब सेमीफाइनल में श्रीलंका और नेपाल के बीच होने वाले मैच के विजेता से उनका मैच होगा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम बहुत जबरदस्त फॉर्म में चल रही है। पिछले 4 मैचों में 39 गोल कर चुकी है। पूल ए में बांग्लादेश के विरुद्ध भी हॉकी प्रेमियों को यही उम्मीद थी और टीम ने उन्हें बिल्कुल भी निराश नहीं किया। एकता थामी से सुनिए आज का हाल।
3: हॉकी के मैदान से आज एक खुश करने वाली खबर आई है। भारत ने बांग्लादेश की टीम को 10-0 से हराकर जीत दर्ज की। बारिश के कारण देर से शुरू हुए मैच में भारतीय खिलाड़ी शुरू से ही टूट पड़े। कप्तान हरमनप्रीत सिंह की सेना ने बांग्लादेश के खिलाफ इस मैच के पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली थी। पिछले मैच में भारत ने मेजबान जापान को 2-0 से मात दी थी। भारत की तरफ से शुरुआती गोल 3rd मिनट में हुआ और उसके बाद नियमित अंतराल पर गोल होते चले गए। कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 3 गोल किए और शिलानंद लाकरा ने एक के बाद एक 2 गोल दागकर भारतीय हॉकी के पुराने दिनों की याद ताजा कर दी। बांग्लादेश की टीम ने जमकर संघर्ष किया, लेकिन गेंद को लंबे समय तक अपने कब्जे में रखने के बावजूद वह गोल करने में सफल नहीं हो सके। भारत को 6 पेनल्टी कॉर्नर मिले और उनमें से 4 को गोल में बदला गया।
1: टेनिस में भारत हेडलाइंस बनाया करता था और उसी दौर की पुनर्वापसी में लगी है हालिया पौध। टेनिस में आज की रिपोर्ट एकता थामी से।
3: महिलाओं की युगल स्पर्धा में भारत की चुनौती समाप्त हो गई है। अंकिता रैना और ऋतुजा की जोड़ी को कजाकिस्तान की यूलिया पुतिनसेवा और अन्ना डानिलिया ने पहले राउंड के मुकाबले में 7-5, 3-6 और 5-10 से हरा दिया। भारत की लड़कियों ने विरोधी टीम को कड़ी टक्कर दी और तीसरा सेट टाई ब्रेकर तक पहुंचा दिया, लेकिन कजाकिस्तान की महिला ने आक्रामक खेल का प्रदर्शन करते हुए अगले दौर में जगह बनाई। पुरुषों के एकल मुकाबले में भारत के सुमित नागल का मुकाबला दक्षिण कोरिया के होंग सियोंग चान से हो रहा था।

0: सेट में सुमित नागल 3-2 से बढ़त बनाए हुए थे, जब वर्षा के कारण मैच रोक देना पड़ा। अब यह मैच कल खेला जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हाल ही में डेविस कप मुकाबलों में नागल अपने दोनों एकल मैच कोरियाई खिलाड़ियों के हाथों हारे थे। उम्मीद करनी चाहिए कि एशियाई खेलों में वह हार का यह सिलसिला तोड़ने में कामयाब होंगे।
1: स्क्वाश में पोडियम फिनिश भारतीय खिलाड़ियों के लिए स्वाभाविक सी बात है। इन्हीं खेलों में 3 बार हम देख चुके हैं। आज के अभियान का आकलन एक बार फिर एकता धामी से।
0: सूरज कुमार चांद ने चीन के दू शाओकेन को 11-4, 11-2 और 12-10 से हराया, जबकि वीर चौटरानी ने ली हेईझेन को 11-5, 11-5 और 11-3 के एक तरफा मुकाबले में हराकर भारत की स्थिति मजबूत की। तीसरे मैच में वेलावन सेंती कुमार ने पेंगलिन झोंग को 11-3, 11-2 और 11-4 से धो डाला और इस तरह तीनों मैच में भारत एक भी सेट नहीं हारा और पूल ए से अगले दौर में पहुंचा। महिलाओं की टीम स्पर्धा में भारत ने ग्रुप सी में चीन के खिलाफ 2-1 से विजय दर्ज करके अच्छी शुरुआत की। तन्वी खन्ना और जोशना चिनप्पा ने जीत दर्ज की, जबकि शमीमा को हार का मुंह देखना पड़ा। जापान के खिलाफ अपने अगले मैच में भी भारत की लड़कियों ने टीम स्पर्धा में कमाल का खेल दिखाया और मेजबान जापान को 2-1 से मात देने में कामयाब रही। जोशना चिनप्पा ने शुरुआती मुकाबले में जापान की एरिसा सानो को हराकर शुरुआती बढ़त दिलाई, लेकिन उसके बाद अनाहत सिंह की हार ने भारत की मुश्किलें कुछ बढ़ा दी। तीसरे और अंतिम मुकाबले में तन्वी खन्ना ने आकारी मिदोरिकावा को 12-10, 11-9, 4-11, 12-10 से हराकर मैच भारत की झोली में डाल दिया। पूल ए के मुकाबले में भारत ने कोरिया को 3-0 से हराकर अपनी स्थिति और मजबूत कर ली।
1: सिपक टाकरा में महिला युगल टीम एरिना में क्या कर पाई, जानते हैं विदुषी वत्स से।
2: फ्रॉम वुमेन्स सेपक टाकरा, इंडिया हैज गॉन डाउन टू जापान इन देयर लेटेस्ट ग्रुप बी एनकाउंटर। इंडिया फॉट हार्ड इन अ क्लोजली कंटेस्टेड मैच, बट जापान केम थ्रू टू 1। जापान टुक द ओपनिंग सेट 15-11, बट इंडिया रिस्पॉन्डेड स्ट्रॉन्गली इन द सेकेंड, विनिंग इट 15-9 टू लेवल द मैच। द डिसाइडिंग थर्ड सेट वेंट राइट डाउन टू द वायर, बट जापान एज्ड इट 15-13 टू सील द विक्ट्री। So India finishes this Group B match with a 1-2 defeat against Japan.
1: और अब चलते हैं समंदर की लहरों से अटखेलियां करने। सर्फिंग में किशोर कुमार एकला चलो रे की तर्ज पर समंदर के सीने पर डटे हुए हैं, तो सेलिंग में आज स्किफ और डिंगी 470 क्लास के मुकाबले थे। 8 सेलर्स नौका लेकर उतरे, कितने पार लगे, दोनों खेलों का विवरण एकता धामी से।
0: पुरुषों की सर्फिंग स्पर्धा में भारत के किशोर कुमार अनबरासो ने पुरुषों के शॉर्टबोर्ड राउंड 3 मुकाबले में चीन के तगड़े खिलाड़ी मा वेनसांग को कड़े मुकाबले में मात देकर भारत की उम्मीदों को जिंदा रखा है। किशोर कुमार चीन के खिलाड़ी के 8.80 के स्कोर के मुकाबले 9.86 अंक अर्जित करके अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की। राउंड 3 के दूसरे मुकाबले का नतीजा भारत के हक में नहीं रहा। शिवराज बाबू को फिलीपींस के खिलाड़ी अलसियो जेवआर ने 7.83 के मुकाबले 11.50 से मात दी। पानी के एक अन्य खेल सेलिंग में भी आज का दिन व्यस्तता से भरा रहा। पुरुषों की स्किफ में भारत के प्रिंस खुर्शीद नोबल और मनु फ्रांसिस ने अच्छी शुरुआत की और ओमान के बाद दूसरे स्थान पर रहे। पुरुष डिंगी में विष्णु सरवनन ने निराश किया, वह क्वालिफिकेशन की पहली और दूसरी रेस में 9वें स्थान पर रहे। महिला वर्ग में हर्षिता तोमर और शीतल वर्मा महिला स्किफ की पहली रेस में 4थे स्थान पर रही। महिला डिंगी में नेत्र नुमानन पहली क्वालिफिकेशन रेस में 6थे स्थान पर रही। मिश्रित डिंगी में श्रद्धा वर्मा और रविन्द्र शर्मा शुरुआती श्रृंखला की तीसरी रेस में 8वें स्थान पर रहे। वर्षा के कारण कल और आज बहुत सी रेस समय पर पूरी नहीं हो सकी।
1: आज की स्पर्धाओं का अंत अच्छी खबर के साथ। वॉलीबॉल के कोर्ट में भारत की एक और धमाकेदार जीत एकता थामी।
0: वॉलीबॉल में आज का दिन भारत के लिए अच्छा रहा। भारत ने पूल सी के दूसरे मैच में हांगकांग चाइना को 3-0 से हराकर देश के खेल प्रेमियों को मुस्कुराने की एक वजह दे दी। इस मैच में जीत के साथ ही भारत ने क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। भारतीय टीम ने दोनों मैचों में 3-0 से जीत दर्ज करके उम्मीदें बढ़ा दी हैं। हालांकि हांगकांग चाइना के खिलाफ मैच के तीसरे सेट में बेहतर तालमेल का प्रदर्शन करके मैच अपने नाम कर लिया।
1: और अब पदक तालिका पर एक निगाह।
2: At this stage of the Asian Games, China continues to lead the standings with 230 medals, including 132 gold, 53 silver and 45 bronze. Japan is in second with 172 medals, while the Republic of Korea is third with 90 medals, and India is currently in

0: 12th position with a total of 45 medals, 4 gold, 20 silver and 21 bronze.
1: कल शूटिंग में ट्रैप स्पर्धा का अंतिम दिन है। महिला और पुरुष दोनों में तीन तीन भारतीय शूटर्स हैं। कल से साइकिलिंग की स्प्रिंट स्पर्धाएं शुरू हो जाएंगी जिसमें कई भारतीय दिखेंगे। स्क्वाश में महिला टीम अपना विजय अभियान आगे ले जाने का प्रयास करेगी। टेनिस में पुरुष एकल युगल और मिश्रित युगल के मुकाबले होंगे। सेलिंग में कई भारतीय हैं स्किफ और डिंग की स्पर्धा में, तो सर्फिंग में अकेले किशोर कुमार होंगे। आर्चरी में रिकर्व में धीरज बोमदेवरा, नीरज चौहान, कुमकुम और कीर्ति शर्मा रहेंगी। कुराश में विपिन कुमार होंगे। एथलेटिक्स में 19 पदक आ चुके हैं और ज्यादा की उम्मीद होगी कल। पोल वॉल्ट महिला ऊंची कूद, हैमर थ्रो महिला और पुरुष 800 मीटर, 5000 मीटर में गुलवीर सिंह एक बार फिर मैदान पर होंगे और साथ में होगी मिक्स 4x100 मीटर और पुरुषों की 4x400 मीटर रिले। तो आज बस यहीं तक। एडिटर विशाल, कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शाहनवाज खान और अब मुझे अनुपम पाठक को दे आज्ञा, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: मिनियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स से आकाशवाणी का जलंधर केंद्र है। तुसी सुन रहे हुने वीवियां एशियन खेडां दियां हुण तक दियां कारगुजारियां साढ़े दिल्ली केंद्र तो। और आओ हुण सुनदे हां कुछ फिल्मी गीत जिहदी शुरुआत करन जा रहे हां आरडी बर्मन दे गाए इस गीत दे नाल। तुसी सोचोगे कि आरडी बर्मन तां एक संगीतकार सन, लेकिन उन्होंने कुछ गीत भी गाए सन और ये जिहड़ा गीत सुनाउण जा रहे हां ना ये उन्होंने ही आवाज़ दे विच है। और फिल्म जड़ी है जी जमाने को दिखाना है, इन लिखिया सी मजरू सुल्तानपुरी ने और ये उन्हों का एकल गीत है। यानी ये सिर्फ वो साइड वॉयस नहीं दे रहे, यानी कि मेन सिंगर और गायक के रूप च ने। तो आओ फिर सुनिए ये गीत।

0: भला किसकी औकात होगी,
1: हाँ वाह
0: यहाँ
1: वाह
0: पर
1: अच्छा है,
0: भला
1: बहुत
0: किसकी औकात
1: अच्छा है,
0: होगी।
1: बहुत अच्छा।
0: और शेर देखिए, सितमगर जमाना भला क्या करेगा,
1: सितमगर जमाना,
0: सितमगर जमाना भला क्या करेगा, दुआ गरचे माँ की तेरे साथ होगी।
1: वाह वाह वाह वाह
0: जब आओगे संदीप घर तुम हमारे, फिजाओं में खुशबू की बरसात होगी।
1: वाह वाह
0: थैंक
1: वाह वाह।
0: यू।
1: दोस्तों अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, जमाल अहसनी ने कहा था कि जमाल अब तो यही रह गया पता उसका, भली सी शक्ल थी अच्छा सा नाम था उसका, जो मेरे जिक्र पे अब कह कहे लगाता है,
2: जो मेरे जिक्र पे अब कह
1: कह
2: कहे
1: कहे
2: लगाता
1: लगाता है,
2: है।
1: बिछड़ते वक्त कोई हाल देखता उसका,
2: वाह वाह वाह।
1: और जमाल उसने तो ठानी थी उम्र भर के लिए, जमाल उसने तो ठानी थी उम्र भर के लिए, ये चंद रोज में क्या हाल हो गया उसका।
2: वाह वाह।
1: दोस्तों एक मशहूर मारूफ शायर, जो वो भी उनका ताल्लुक भी मलेरकोटला से है, और मैं अब बात कर रहा हूँ जनाब मुकर्रम सैफी साहब की, और यासिर खान इनाम कहते हैं कि बना हुआ था कहीं आबदान कागज पर, थी इतनी प्यास के रख दी जबान कागज पर,
2: वाह वाह।
1: किराएदार की आंखों में आ गए आंसू, बनाए बैठे थे बच्चे मकान कागज पर।
2: वाह वाह वाह वाह वाह।
1: हमारे अगले शायर जनाब मुकर्रम सैफी साहब।
2: बहुत बहुत शुक्रिया हमजा बिलाल। मैं आज की इस नशस्त में तरन्नुम में अपना कलाम पेश करने की जसारत करूंगा।
1: जी

0: बहुत बहुत शुक्रिया। ये हाजिरीन, अब हम आपके सामने इस खूबसूरत शेरी नशिस्त के रूह रवां, जो कि इस शेरी नशिस्त की निज़ामत फरमा रहे हैं, मेरी मुराद है जनाब हमजा बिलाल से, मैं बहुत ही मोदबाना आजीजाना गुजारिश करूंगा कि वो इस प्रोग्राम में अपने जरी कलाम से नवाजें।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया मुकर्रम साहब, और एक मतला एक शेर मुलायजा करें कि हमारी छत पे भी सूरज का इंतजाम हुआ, हमारी छत पे भी सूरज का इंतजाम हुआ, ये और बात की अहकाम वक्त शाम हुआ।
2: वाह वाह वाह वाह।
1: हमारी छत पे भी सूरज का इंतजाम हुआ, ये और बात की अहकाम वक्त शाम हुआ, और उठे रकीब तो फिर मुझसे बैठने को कहा।
3: उठे रकीब तो फिर मुझसे
1: बैठने को कहा, तुम्हारी बज्म में यूं मेरा एहतराम। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक मतलब एक शेर ये भी मुलायजा करें कि शाहजादी को गर कबूल नहीं फिर ये पत्थर हैं फूल वूल नहीं। और ऐसे चंदन का क्या लगाना है जिसमें प्रीतम चरण की धूल नहीं। जिसमें प्रीतम चरण की धूल नहीं। दो तीन अशार ये भी मुलाहिजा करें कि जहां मैं बैठा हूं मेरा मकाम है ही नहीं।
0: जहां मैं बैठा हूं मेरा मकाम है ही नहीं
1: यहाँ पे कोई मेरा हम कलाम है ही नहीं।
2: वाह वाह वाह वाह वाह।
1: शेर मुलायजा करें बतौर खास के भला वो कैसे खरीदें के सामने उनके।
0: भला वो कैसे खरीदें के सामने
3: सामने उनके।
1: भला वो कैसे खरीदें के सामने उनके। अजीजे मिस्र है अदना गुलाम है ही नहीं। और अजीज मिस्र है अदना गुलाम है ही नहीं। जुदा हुआ तो उदासी ने उसको घेर लिया। जुदा हुआ तो उदासी ने उसको घेर लिया। रकीब मेरी तरह खुश कलाम है ही नहीं।
0: रकीब मेरी तरह खुश कलाम है ही नहीं।
1: और ये शेर भी देखें कि हजार बार जिगर चाक कीजिए लेकिन
0: हजार बार जिगर चाक कीजिए लेकिन
1: हुजूरे मन ये शरीफों का काम है ही नहीं। और मुझे तलाश है फिर से नए ठिकाने की। मुझे तलाश है फिर से नए ठिकाने की। अब उसके दर पे कोई धूमधाम है ही नहीं। और ये लोग ऐसे मेरे साथ पेश आते हैं।
0: ये लोग ऐसे मेरे साथ पेश आते हैं
1: कहीं भी जैसे खुदा का निजाम है ही नहीं।
3: क्या बात है, बेहतरीन, बहुत अच्छा,
1: बहुत शुक्रिया। और दोस्तों अब इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं और मैं अपने निजामत के की जो जिम्मेदारी है उस पर वापस आ गया हूँ। खुर्रम आफाक ने कहा था कि बड़ी मुश्किल से नीचे बैठते हैं जो तेरे साथ उठते बैठते हैं। और अकेले बैठना होगा किसी को अगर हम तुम इकट्ठे बैठते हैं। और लो अब उठना पड़ा ना पहली सफ से कहा भी था कि पीछे बैठते हैं। मैं आवाज दे रहा हूं हमारे अहद का बहुत ही मकबूल नाम, बहुत ही मारूफ नाम, जनाब मुअज्जम सैफी साहब, वो भी मलेरकोटला से तशरीफ लाए हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अपने कलाम से हमें नवाजें।
4: जी बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल साहब। चंद मुतफर्रक अशार पढ़ूंगा पहले मैं।
1: जी इरशाद।
4: है शुक्र वो मकाम जहां ख्वाहिशात को रब की रजा के ऐन मुताबिक करे कोई।
2: क्या बात है शुक्र वो मकाम जहां ख्वाहिशात को
4: रब की रजा के ऐन मुताबिक करे कोई। और

0: एक मतला एक शेर, सारे मंजर थे जहां तेरी स्ताइश करते,
1: सारे मंजर थे
0: सारे मंजर थे
1: जहां
0: जहां
1: तेरी
0: तेरी स्ताइश करते, क्या मेरे होंठ तेरे सामने जुम्बिश करते,
1: वाह वाह वाह वाह
0: क्या मेरे होंठ तेरे सामने जुम्बिश करते। और सना का शेर है
1: जी,
0: कि तेरी यादों के चरागों से मुनव्वर था सफर,
1: तेरी यादों के चरागों से
0: तेरी
1: मुनव्वर,
0: यादों के चिरागों से मुनव्वर था सफर, वरना हर मोड़ पे हम भी कोई लग्जिश करते,
1: वाह वाह वाह वाह वाह
0: वरना हर
1: वाह
0: मोड़ पे हम भी कोई लग्जिश करते।
1: करते।
0: और एक मतला और एक तरी गजल थी, उसका एक मतला और
1: जी
0: चंद
1: इरशाद,
0: अशार, क्यों उसको कभी दिल ने भुला कर नहीं देखा,
1: क्यों उसको कभी
0: कभी
1: दिल
0: दिल
1: ने
0: ने
1: भुला
0: भुला
1: कर
0: कर
1: नहीं
0: नहीं
1: देखा।
0: क्यों उसको कभी दिल ने भुला कर नहीं देखा, जिसने के मेरी समत मुकर्रर नहीं देखा,
1: वाह वाह वाह वाह वाह जी,
0: जिसने के मेरी समत मुकर्रर नहीं देखा। हुस्ने मतलब देखिए, मजा लीजिए शेर का,
1: जी
0: कि
1: इरशाद,
0: उसने भी कभी जब्त का पैकर नहीं देखा,
1: उसने भी कभी जब्त का पैकर
0: पैकर
1: नहीं
0: नहीं
1: देखा।
0: देखा, उसने भी कभी जब्त का पैकर नहीं देखा, जिसने मेरे अंदर का समंदर नहीं देखा,
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह
0: जिसने मेरे
1: वाह,
0: अंदर का समंदर नहीं देखा। और वो शख्स भला कैसे निखर पाता कि जिसने,
1: क्या कहना।
0: वो शख्स भला कैसे निखर पाता कि जिसने कुंदन की तरह आग में तप कर नहीं देखा,
1: वाह जी वाह वाह वाह
0: वाह
1: जी वाह
0: कुंदन की
1: वाह वाह
0: तरह
1: वाह
0: आग में तप कर नहीं देखा। और ये गजल का शेर है, इसका मजा लीजिए,
1: जी,
0: मुकम्मल
1: बताइए।
0: गजल का शेर है, हुस्न की तारीफ है कि किस तरह उन्हें देखता रहता मैं मुसलसल,
1: किस
0: किस तरह
1: तरह उन्हें
0: उन्हें
1: देखता
0: देखता
1: रहता
0: रहता
1: मैं
0: मैं
1: मुसलसल,
0: मुसलसल, किस तरह उन्हें देखता रहता मैं मुसलसल, सूरज को किसी आंख ने जमकर नहीं देखा,
1: वाह वाह वाह
0: वाह जी
1: वाह
0: वाह,
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह,
0: सूरज को किसी आंख ने जमकर नहीं
1: क्या कहने
0: देखा।
1: क्या कहने,
0: और जिस शख्स को दौलत है हर एक चीज से प्यारी,
1: हाँ,
0: जिस शख्स को दौलत
1: दौलत
0: है हर एक चीज से प्यारी, एक लम्हा सुकून उसको मैसर नहीं देखा,
1: क्या
0: वाह
1: क्या
0: वाह
1: कहना
0: जी वाह,
1: है, वाह वाह वाह,
0: जिस
1: करण जी वाह,
0: शख्स
1: वाह वाह
0: को,
1: वाह वाह वाह,
0: जी शुक्रिया शुक्रिया अजीज, जिस शख्स को दौलत है हर एक चीज से प्यारी, जिस शख्स को दौलत है हर एक चीज से प्यारी, एक लम्हा सुकून उसको मैसर नहीं देखा। और एक गजल एक मतलब और चंद अशआर देखिए आप, जमीन पर मोहब्बत की जब बात होगी,
1: जमीन पर
0: जमीन पर मोहब्बत की जब बात
1: बात होगी,
0: होगी, फलक से आताओं की बरसात होगी,
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह,
0: जमीन पर मोहब्बत की जब बात होगी, फलक से आताओं की बरसात होगी, और बुजुर्गों से जब भी मुलाकात होगी,
1: क्या कहना,
0: बुजुर्गों से जब
1: जब
0: भी
1: भी
0: मुलाकात
1: मुलाकात
0: होगी,
1: होगी,
0: हर एक गुफ्तगू मिसले सौगात होगी,
1: वाह
0: वाह
1: वाह
0: वाह
1: जी
0: हर
1: वाह
0: एक
1: वाह
0: गुफ्तगू
1: वाह
0: मिसले
1: वाह वाह
0: सौगात
1: वाह,
0: होगी। और शेर देखिए कि अभी मुश्किलें हैं मगर ये यकीन है,
1: अभी
0: अभी
1: मुश्किलें
0: मुश्किलें हैं,
1: हैं
0: अभी मुश्किलें हैं
1: मगर ये यकीन
0: मगर
1: है,
0: ये यकीन है कि मुझ पे भी रहमत की बरसात होगी,
1: वाह
0: वाह
1: वाह
0: वाह
1: वाह
0: वाह
1: वाह
0: वाह
1: वाह
0: वाह,
1: कहते, वाह क्या,
0: अभी
1: वाह वाह
0: मुश्किलें
1: वाह,
0: हैं मगर ये यकीन है कि मुझ पे भी रहमत की बरसात होगी, नहीं सोचते हैं ये मंजिल के तालिब,
1: नहीं सोचते हैं ये मंजिल
0: मंजिल
1: के
0: के तालिब,
1: तालिब,
0: नहीं सोचते हैं, नहीं सोचते हैं बिलाल साहब,
1: जी
0: नहीं सोचते हैं ये मंजिल के तालिब, कहाँ दिन कटेगा कहाँ
1: कहां
0: रात
1: रात
0: होगी,
1: होगी, वाह
0: वाह
1: वाह
0: जी
1: वाह
0: वाह,
1: जी वाह
0: कहाँ
1: वाह
0: दिन
1: वाह,
0: कटेगा कहाँ रात होगी। और अगर तुम मेरे हम कदम बन गए तो,
1: अगर
0: अगर
1: तुम
0: तुम
1: मेरे
0: गजल का
1: हम
0: शेर है, अगर तुम मेरे
1: मेरे
0: हम
1: हम
0: कदम
1: कदम
0: बन
1: बन
0: गए
1: गए तो,
0: तो जमाने की हर शय मेरे साथ होगी,
1: वाह वाह
0: वाह
1: वाह वाह वाह वाह,
0: जमाने की हर शय मेरे
1: मेरे
0: साथ
1: साथ
0: होगी।
1: होगी,
0: और शेर देखिए कि जगाने लगा हूँ जमाने को मैं भी,
1: जगाने लगा हूं जमाने
0: जमाने को मैं
1: जगाने
0: भी,
1: लगा हूं
0: जमाने को मैं भी, मेरी मौत भी मिसले सुकरात होगी,
1: वाह वाह वाह वाह वाह
0: मेरी
1: वाह
0: मौत
1: वाह,
0: भी मिसले सुकरात
1: क्या कहना
0: होगी,
1: है, वाह
0: वाह जी
1: वाह
0: वाह
1: वाह
0: वाह
1: वाह
0: जी
1: जी
0: वाह, हर एक मसाले का, हर एक मसाले का निकल आएगा हल,
1: हर एक मसाले का निकल आएगा
0: हर
1: हल,
0: एक मसाले का निकल आएगा हल, मौज़म असूलों पे जब बात होगी,
1: वाह क्या
0: वाह
1: वाह
0: जी वाह,
1: वाह वाह
0: मौज़म
1: वाह, बहुत
0: असूलों पे
1: खूब,
0: जब
1: वाह
0: बात
1: वाह
0: होगी।
1: वाह
0: जी
1: वाह,
0: शुक्रिया,
1: बेहतरीन जी, दोस्तों अपने कलाम से हमें नवाज रहे थे जनाब मोअज्जम सैफी साहब। दोस्तों

0: शायर ने कहा है कि हमने कब चाहा कि वो शख्स हमारा हो जाए, हमने कब चाहा कि वो शख्स हमारा हो जाए, इतना दिख जाए कि आंखों का गुजारा हो जाए।
1: वाह वाह वाह वाह वाह।
0: और तुमको लगता है कि तुम जीत गए हो मुझसे,
2: तुमको लगता है कि तुम जीत गए हो मुझसे
0: है यही बात, तो फिर खेल दोबारा हो जाए। अपने खेल को भी हम दोबारा करते हैं और हम अब सबसे पहले शायर हमारे डॉक्टर संदीप कुमार की जानिब चलते हैं। डॉक्टर साहब अपने कलाम से हमें एक बार फिर नवाजें।
3: शुक्रिया अंजा साहब
0: जी। इरशाद
3: पेशा गजल।

0: तू जानता
1: जानता
0: क्या
1: क्या है,
0: है,
1: लब पे तेरा ही नाम आता है,
0: लब पे तेरा ही
1: लब
0: नाम
1: पे तेरा ही नाम
0: नाम
1: आता
0: आता
1: है,
0: है।
1: जब कोई पूछे हम नवा क्या है,
0: वाह
1: वाह वाह
0: वाह वाह,
1: पूछे हम
0: हम
1: नवा
0: नवा क्या
1: क्या
0: है।
1: है।
0: वाह वाह वाह,
1: और शेर देखिए, हुस्न वालों का है अगर सब कुछ,
0: हुस्न
1: हुस्न
0: वालों
1: वालों
0: वालों
1: का
0: का
1: है अगर सब
0: सब
1: कुछ,
0: कुछ,
1: इश्क वालों का फिर भला क्या है। इश्क
0: वालों का
1: वालों का
0: वाह
1: फिर
0: वाह, भला
1: भला क्या
0: क्या है।
1: है।
0: खूबसूरत है
1: और शेर देखिए, ये तो आदत है उसकी बरसों से,
0: ये
1: ये
0: तो,
1: तो
0: आदत
1: आदत है
0: है
1: उसकी
0: उसकी
1: बरसों
0: बरसों से।
1: से, कह के सब कुछ कहें कहा क्या है।
0: वाह वाह
1: वाह,
0: वाह
1: कह के सब कुछ
0: वाह
1: कहें
0: वाह
1: कहा
0: वाह,
1: क्या
0: क्या है।
1: है।
0: वाह वाह वाह,
1: और शेर देखिए, कोई जब अपने आप में उतरे,
0: कोई जब
1: कोई
0: अपने
1: जब
0: आप
1: अपने
0: में
1: आप में
0: अपने
1: उतरे,
0: उतरे।
1: जान जाता है देवता क्या है,
0: वाह
1: जान
0: वाह
1: जाता है देवता क्या है। और शेर देखिए, झूठ जब सच के भेष में देखा,
0: झूठ
1: झूठ
0: जब
1: जब सच
0: सच
1: के
0: के
1: भेष
0: भेष
1: में
0: में
1: देखा,
0: देखा।
1: तब समझ आया कि दगा क्या है,
0: वाह,
1: तब
0: समझ
1: समझ
0: आया कि
1: आया
0: दगा
1: कि
0: क्या है,
1: दगा
0: दगा
1: क्या
0: क्या
1: है।
0: है।
1: और ये शेर मैं अपने दोस्तों की नजर करता हूं, तू नहीं है तो फिर सिवा तेरे,
0: तू नहीं
1: तू नहीं
0: है
1: है तो
0: तो
1: फिर सिवा
0: सिवा
1: तेरे,
0: तेरे।
1: मेरी नस नस में दौड़ता क्या है,
0: वाह
1: मेरी
0: वाह
1: नस
0: वाह
1: नस
0: वाह
1: में
0: वाह
1: दौड़ता
0: वाह
1: क्या है।
0: वाह, बहुत प्यारा शेर है जी।
2: वाह वाह वाह,
1: मुझको संदीप ये खबर ही नहीं, मुझसे
0: वाह
1: आखिर हुई खता क्या है,
0: वाह
1: मुझसे
0: वाह।
1: आखिर हुई खता
0: ये
1: क्या
0: थे
1: है।
0: हमारे बहुत ही खूबसूरत शायर डॉक्टर संदीप कुमार साहब। लीजिए नाज़रीन, दोबारा से हम एक बार फिर गुजारिश करते हैं बहुत ही मरसा कलाम कहने वाले शायर जनाब हमजा बिलाल साहब से, गुजारिश है कि वो आप एक बार अपना कलाम फिर से सुनें।
3: जी बहुत शुक्रिया मुकर्रम साहब। और यह गज़ल के अशआर मुलाहिज़ा करें।
0: अच्छा
3: मतला अर्ज़ है कि गंगो जमन की बात नहीं कर रहा कोई,
0: गंगो
4: गंगो
0: जमन
4: जमन की
0: की
4: बात नहीं कर रहा
0: कर रहा
4: कोई,
3: गंगो जमन की बात नहीं कर रहा कोई, यानी वतन की बात नहीं कर रहा
1: वाह
3: कोई।
1: वाह जी वाह वाह,
4: बहुत प्यारा शेर, बहुत
1: बहुत
4: उम्दा।
3: गंगो जमन की बात नहीं कर रहा कोई, यानी वतन की बात नहीं कर रहा कोई। कहते हैं चांद देखने आए हैं बाम पर,
0: कहते हैं चांद
1: कहते हैं
0: देखने
1: चांद
0: आए,
1: क्या
3: कहते
0: आए हैं
3: हैं
0: बाम पर।
3: चांद देखने आए हैं बाम पर, लेकिन घुटन की बात नहीं कर रहा कोई।
0: वाह वाह वाह वाह,
3: लेकिन घुटन की बात नहीं कर रहा कोई। शेर मुलाहिजा करें बतौर खास के,
0: क्या
3: क्या रूह तक सिमट गया सब कारोबार इश्क,
0: क्या रूह तक सिमट गया
4: सब
0: सब
4: कारोबार
0: कारोबार
4: इश्क,
0: इश्क,
3: क्या रूह तक सिमट गया सब कारोबार इश्क, कैसे बदन की बात नहीं कर रहा कोई।
0: वाह
1: वाह
0: वाह वाह वाह,
1: क्या बात है।
3: और लब पर हंसी नहीं तो गिला कर रहे हैं लोग,
0: लब पर हंसी नहीं,
3: लब पर हंसी नहीं तो गिला कर रहे हैं लोग, दिल की चुभन की बात नहीं कर रहा कोई।
0: वाह वाह वाह।
3: और हमजा बिलाल आप भी खामोशी रहें,
0: हमजा बिलाल आप भी खामोश ही रहें,
3: हमजा बिलाल आप भी खामोश ही रहें, अहले सुखन की बात नहीं कर रहा कोई।
0: वाह वाह वाह जी वाह,
3: बहुत शुक्रिया। और एक और गजल के चंद अशआर देखें कि अधूरी एक कहानी चल रही है,
0: अधूरी कहानी
4: चल रही है,
3: अधूरी एक कहानी चल रही है, मुसलसल जिंदगानी चल रही है।
0: वाह वाह वाह वाह।
3: और शेर बतौर खास के, लुटा दी जान हमने दोस्तों पर,
0: लुटा दी जान हमने दोस्तों पर,
3: लुटा दी जान हमने दोस्तों पर, रवायत खानदानी चल रही है।
0: वाह वाह वाह वाह,
4: अच्छा है।
3: लुटा दी जान हमने दोस्तों पर, रवायत खानदानी चल रही है, भरोसा भाइयों पर कर रहा हूं,
4: भरोसा
0: भाइयों
4: भाइयों
0: पर
4: पर
0: कर
4: कर
0: रहा
4: रहा
0: हूं,
4: हूं,
3: भरोसा भाइयों पर कर रहा हूं, वसीयत तक जुबानी चल रही है।
0: वाह वाह वाह
4: अच्छा
0: वाह
4: है,
0: वाह वाह,
4: अच्छा है,
0: वा,
4: अच्छा है।
3: बहुत शुक्रिया। वसीयत तक जुबानी चल रही है, पढ़ा था मीर का एक शेर मैंने,
0: पढ़ा था मीर का
4: एक शेर
0: शेर
4: मैंने,
0: मैंने
3: पढ़ा था मीर का एक शेर मैंने, उसी की तर्जमानी चल रही है।
0: वाह
4: उसी
0: वाह
4: की तर्जमानी
0: वाह
4: चल रही
0: वाह
4: है, वो अच्छा है।
3: उसी की तर्जमानी चल रही है। और करेंगे यार तौबा बाद में हम,
0: करेंगे
4: करेंगे
0: यार
4: यार
0: तौबा
4: तौबा
0: बाद
4: बाद
0: में
4: में
0: हम,
4: हम,
3: करेंगे यार तौबा बाद में हम, अभी तो नौजवानी चल रही है।
0: वाह
4: वाह
0: वाह
4: वाह।
3: बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मैं फिर अपने काम पर वापस लौट रहा हूं। और किसी शायर ने कहा था के किया है अपने को बर्बाद, शेर कहने लगे,
0: किया है अपने को बर्बाद, शेर कहने लगे,
3: किया है अपने को बर्बाद, शेर कहने लगे, जब आ गई है तेरी याद, शेर कहने लगे,
0: वाह वाह वाह,
3: और बड़े बड़ों को बिगाड़ा है हमने ऐ राना, बड़े बड़ों को बिगाड़ा है हमने।

0: राणा, हमारे लहजे में उस्ताद शेर कहने लगे।
1: वाह वाह वाह,
0: मैं एक बार फिर से दावत दे रहा हूं जनाब मौजम सैफी साहब को, वो आए और अपने कलाम से हमें नवाजें।
2: जी शुक्रिया। एक गजल के सरबसजदा हुआ,
1: सरबसजदा
0: सजदा हुआ,
2: सरबसजदा हुआ जब कोई बशर तो देखो,
0: आहा हा,
1: हाँ
0: सर्वसजदा हुआ जब कोई बशर
1: बशर तो देखो,
0: देखो।
2: सरबसजदा हुआ जब कोई बशर तो देखो, आ गया कितना दुआओं में असर तो
1: असर
2: देखो,
1: तो देखो।
0: वाह
1: वाह
0: वाह
1: वाह
2: आ गया
1: वाह,
2: कितना दुआओं में असर तो देखो। और शेर देखिए कि तुम लगाकर कभी उल्फत का शजर तो देखो,
1: तुम लगाकर
0: लगाकर
1: कभी
0: कभी
1: उल्फत
2: उल्फत
1: का
2: का
1: शजर
2: शजर
1: तो
2: तो देखो,
0: देखो।
2: तुम लगाकर कभी उल्फत का शजर तो देखो, फिर जो आता है खिजा में भी समर तो देखो।
1: वाह
0: वाह
1: वाह
2: वाह
1: वाह
2: क्या
1: वाह
2: बात
1: वाह,
2: है, फिर जो आता है खिजा में भी समर तो देखो। और गिरा लगाने की कोशिश की है,
0: जीरशाह।
2: हर अदा उसकी कयामत का असर रखती है,
0: हर अदा उसकी कयामत का
2: का असर
0: असर
2: रखती
0: रखती
2: है,
0: है।
2: हर अदा उसकी कयामत का असर रखती है। एक नज़र तुम मेरा महबूबे नज़र तो देखो,
1: क्या वाह
2: वाह
0: वाह जी,
2: वाह
0: वाह
2: वाह
0: वाह वाह
2: वाह,
0: वाह,
2: एक नज़र तुम मेरा महबूबे
0: महबूबे
2: नज़र
0: नजर
2: तो
0: तो
2: देखो।
0: देखो।
2: मैं सदा साथ तुम्हारे हूँ सितारों में जहाँ,
0: आहा,
2: मैं सदा साथ तुम्हारे हूँ सितारों में जहाँ, मेरे दिल का वो हसीं ख्वाब नगर तो देखो।
0: वाह
2: वाह
0: वाह
2: वाह
0: वाह
2: वाह,
0: वाह वाह वाह,
2: गज़ल के शेर हो गए थे चंद। और इस बुलंदी पे पहुँचना मेरा आसान तो न था,
0: इस
2: इस
0: बुलंदी
2: बुलंदी पे
0: पे पहुंचना
2: पहुंचना
0: मेरा
2: मेरा
0: आसान
2: आसान
0: तो
2: तो न
0: न
2: था,
0: था।
2: इस बुलंदी पे पहुंचना मेरा आसान तो न था, जेर से आप जबर तक का सफर तो देखो।
1: वाह
2: वाह
1: वाह जी,
2: वाह
0: वाह
2: वाह
0: वाह,
2: वाह,
0: बहुत खूब
2: बहुत
0: बहुत
2: जेर
0: खूब,
2: से आप जबर तक का सफर
0: सफर
2: तो
0: तो
2: देखो।
0: देखो,
2: और जिंदगी की नई तस्वीर बनाने के लिए,
0: जिंदगी की नई
2: जिंदगी की
0: तस्वीर
2: तस्वीर
0: बनाने
2: बनाने
0: के
2: के लिए,
0: लिए।
2: एक अंधेरे से जो उभरी है सहर तो देखो।
0: वाह
2: वाह
0: वाह
2: वाह
0: वाह
2: वाह
0: वाह
2: वाह,
0: वाह,
2: शेर देखिए कि क्या लुभाएंगे तुम्हारे ये सितारे मुझको,
0: क्या
2: क्या
0: लुभाएंगे
2: लुभाएंगे
0: तुम्हारे
2: तुम्हारे ये
0: ये सितारे
2: सितारे मुझको,
0: मुझको,
2: क्या लुभाएंगे तुम्हारे ये सितारे मुझको, मेरे हाथों में हैं खुद शम्सो कमर तो देखो।
0: वाह
2: वाह
0: वाह
2: वाह
0: वाह
2: वाह वाह,
0: वाह,
2: मेरे हाथों में हैं खुद शम्सो कमर तो
0: तो देखो,
2: देखो। और ज़हनो दिल में कोई तस्वीर बना देता है,
0: ज़हनो दिल में कोई
2: कोई
0: तस्वीर
2: तस्वीर
0: बना
2: बना
0: देता
2: देता है,
0: है।
2: बात कहने में मुअज्जम का हुनर तो
0: वाह
2: देखो।
0: वाह
2: वाह वाह
0: वाह
2: वाह
0: वाह
2: वाह
0: वाह
2: वाह।
0: वाह। दोस्तों, आप सुन रहे थे जनाब मुअज्जम सैफी साहब को, और हमारी ये खूबसूरत शेरी नशिश्त अपने इख्तिताम के बहुत करीब पहुंच गई है। फहमी बदायूनी साहब ने कहा था कि तेरे जैसा कोई मिला ही नहीं, कैसे मिलता कहीं पे था ही नहीं,
1: वाह वाह वाह,
0: रात भी हमने ही सदारत की, रात भी हमने ही सदारत की, बज्म में और कोई था ही नहीं।
1: वाह वाह वाह वाह
0: मैं
1: वाह
0: आवाज दे रहा हूं जनाब मुकर्रम सैफी साहब को कि वो
1: जी
0: आखिर में अपने कुछ अशार से हमें नवाजे।
1: जी हमजा बिलाल, वक्त को मुलहुज़े खास रखते हुए मैं सीधा गज़ल पे आता हूँ।
0: जी इरशाद।
1: मरासिम चाहे तुम गहरे ना रखना,
0: मरासिम चाहे तुम गहरे न रखना,
1: मरासिम चाहे तुम गहरे ना रखना, पर दिल में बुझ के शोले ना रखना,
0: क्या वाह वाह
1: वाह
0: वाह
1: वाह
0: वाह
1: वाह,
0: वाह,
1: दिल
0: बहुत
1: में बुझ
0: प्यारा।
1: के शोले ना रखना, तुम्हें ऊंचा उठाएगी मोहब्बत,
0: तुम्हें
1: तुम्हें
0: ऊंचा
1: ऊंचा तुम्हें
2: उठाएगी
1: ऊंचा
2: तो
1: उठाएगी
2: उठाएगी
1: मोहब्बत,
2: मोहब्बत।
1: तकब्बुर के कभी जीने ना रखना,
0: क्या
1: तकब्बुर
0: वाह वाह
1: के
0: वाह वाह,
1: कभी जीने ना
0: जीने वाह वाह
1: रखना,
0: वाह वाह
1: और
0: वाह,
1: मुनाफिक की नहीं ताजीम कोई,
0: मुनाफिक
1: मुनाफिक की
0: की
1: नहीं
0: नहीं ताजीम
1: ताजीम
0: कोई।
1: मुनाफिक की नहीं ताजीम
2: बहुत प्यारा मिश्रा
1: कोई,
2: है।
1: लगाकर चेहरे पे चेहरे ना रखना, लगाकर
0: वाह
1: चेहरे
0: वाह वाह
1: पे
0: वाह वाह वाह,
1: चेहरे ना रखना, हवा जब फैसला करके ही आए,
2: हवा जब
1: हवा
2: फैसला,
1: जब फैसला करके ही आए, चिरागों से गिले शिकवे ना रखना,
0: क्या
1: वाह
0: वाह
1: वाह
0: वाह
1: हवा
0: वाह,
1: जब फैसला करके ही आए, चिरागों से गिले
0: गिले
1: शिकवे
0: शिकवे
1: ना
0: न रखना,
1: रखना, दिलों को जीतना चाहो अगर तुम,
0: दिलों को जीतना चाहो
1: दिलों
0: अगर,
1: को जीतना चाहो अगर तुम, किसी की सोच पर पहरे ना
0: पहरे ना
1: रखना,
0: रखना,
1: क्या
0: वाह क्या
1: किसी की
0: बात है,
1: सोच पर
0: पहरे ना
1: पहरे ना
0: रखना।
1: रखना। और आखिरी शेर के, बड़े होने का मतलब ये नहीं है,
0: बड़े
1: बड़े होने
0: होने
1: का
0: का मतलब
1: मतलब
0: ये
1: ये
0: नहीं
1: नहीं है,
0: है।
1: बड़े होने का मतलब ये नहीं है किसी के वास्ते दर्जे ना रखना,
0: वाह
1: और
0: वाह
1: लगता
0: वाह
1: पेशे
0: वाह,
1: खिदमत है
0: क्या
1: कि
0: कह रहे हैं जी,
1: तुम्हें घर
0: क्या कह रहे
1: मोतबर
0: हैं,
1: बनना है सैफी,
0: तुम्हें घर मोतबर बनना
1: तुम्हें
0: है।
1: घर मोतबर बनना है सैफी, जबां पर झूठ के किस्से ना रखना।
0: क्या
1: वाह
0: वाह
1: क्या
0: वाह वाह वाह
1: शुक्रिया,
0: वाह। दोस्तों, हमारी ये महफिल अब खत्म हुआ चाहती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सुनते रहें ऑल इंडिया रेडियो जालंधर।
3: हुणे तुसीं सुन रहे सी मुशायरा, जिहदे विच शोरा हज़रात सन मुहम्मद

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय आतंकरोधी नीति और रणनीति प्रहार सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में प्रहार के 7 स्तंभों पर चर्चा हुई। इनमें आतंकवाद की रोकथाम, उससे निपटने की कार्रवाई, आंतरिक क्षमताओं का एकीकरण, मानव अधिकार, आतंकवाद के लिए अनुकूल परिस्थितियों को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में समन्वय तथा पूरे समाज की भागीदारी से पुनर्प्राप्ति और लचीलापन शामिल है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से 2026 के बीच सरकार 36 देशों से 288 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाई है। श्री शाह ने नया प्रत्यर्पण पोर्टल भी शुरू किया। ये विदेशों में मौजूद भगोड़ों को भारत वापस लाने के प्रयासों में समन्वय और तेजी लाने में मदद करेगा। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार के निपटान, भुगतान और संदेश प्रणालियों के एकीकरण तथा केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राओं से संबंधित पहलों के समय पर कार्यान्वयन के लिए कदम उठाने पर सहमत हुए हैं। दोनों पक्षों ने आज मुंबई में निवेश संबंधी भारत यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के दौरान इस समझौते पर सहमति व्यक्त की। बैठक की सह अध्यक्षता वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अबुधाबी निवेश प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक शेख हामिद बिन जायद अल नहयान ने की। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ाने के लिए ऊर्जा, उद्योग, बुनियादी ढांचा और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों की पहचान की गई है। केंद्र सरकार कर्नाटक और महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए टीमें भेजेगी। नई दिल्ली में रबी फसल अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही। सरकार ने आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत की। ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच उपलब्ध कराएगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य पशुधन बीमा सेवाओं को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और सुलभ बनाना है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वेलिंग आयोग की 17वीं बैठक में वेल और अन्य समुद्री स्तनधारी जीवों के संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया है। ऑस्ट्रेलिया के हुबार्ट में आज से शुरू हुई 5 दिवसीय बैठक में भारत ने कहा कि समुद्री स्तनधारी जीवों के प्रभावी संरक्षण के लिए संबंधित देशों, वैज्ञानिक संस्थानों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच लगातार सहयोग जरूरी है। भारत और मंगोलिया के बीच आज से सीधी विमान सेवा शुरू हो गई है। नई दिल्ली और उलानबटार के बीच नियमित उड़ान शुरू होने से दोनों राजधानियों के बीच यात्रा का समय करीब 5 घंटे रह जाएगा। मंगोलिया की हुनू एयर द्वारा संचालित ये सेवा हर सोमवार को उपलब्ध होगी। सीधी विमान सेवा से पर्यटन, चिकित्सा और व्यापार सहित कई क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच आवागमन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज भी पदक जीतने का सिलसिला जारी रखा। निशानेबाजी, क्रिकेट, कुराश, एथलेटिक्स और मुक्केबाजी में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। भारत ने आज अपने खाते में 8 और पदक जोड़े। पुरुष क्रिकेट टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। अब तक भारत कुल मिलाकर 45 पदक

0: ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਔਰ ਉਹ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ नमस्कार जी कौन बोल रहे हैं
1: और आपको सुनवाते हैं सईद राही का कलाम मधुरानी के संगीत से सजा
0: हेलो जी
1: पिनाज मिसानी ने इस
0: हेलो जी नमस्कार जी कौन बोल रहे हैं
2: सर जी मैं राजू बोल रहा जी चंडीगढ़ तो
0: राजू जी बहुत बहुत स्वागत है तोड़ा तोड़ा अपना ही प्रोग्राम है जी स्वागत
2: कंठ कलेर का गीत सुनना सर जी
0: लो जी कंठ कलेर का गीत तोड़े कहन तो पहला ही अपा कट के रखे होया सी ਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਇਹੀ ਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਲੇਰ ਕੰਠ ਦਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਧੰਨਵਾਦ ਫੋਨ ਲਾਉਣ ਲਈ
2: ਧੰਨਵਾਦ

0: प्रोग्राम चल रहा है जी, थोड़ा सारिया का अपना स्वागत। साढ़े अगले कॉलर दोस्त जुड़ गए ने साढ़े नाल। नमस्कार जी, कौन बोल रहे ने? हेलो, हाँ नमस्कार जी, कौन बोल रहे ने? तरसेम जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम स्वागत दे विच। फिर अज केड़ा गीत सुनने का दिल कर रहा है? हाँ
1: जी,
0: केड़ा गीत सुनना जी? गुरदास मान दे लाओ जी। गुरदास मान साहब नूं तुसीं हाक मारी है ते आ रहे ने। गुरदास मान साहब बहुत बहुत धन्यवाद जी कॉल करने लई। लो जी, गुरदास मान साहब तक आया एक गीत।

0: जी हाँ बिल्कुल, ये काफी देर बाद गल हुई है और जो कहते देर बाद गल होंगी है ना तो उदो गल करन दा जड़ा मजा है ना होर वध जांदा है। देखो जी बिल्कुल तुहाडा सारयां दा प्यार है और धन्नवाद भी इस गल दा है कि तुसीं रात रात जाके साडा प्रोग्राम सुनदे हो शिरकत करदे हो इहदे लई दिलों धन्नवाद। बिल्कुल जी बिल्कुल ये गल है तो फिर हक नाल दस दियो आज गीत केड़ा सुनना जी। हेलो
1: सर इश्कां दे लेखे सज्जना दीप दा।
0: अच्छा इश्कां दे लेखे बहुत वधिया पसंद है और कर दे कि ये दस दियो सारे नूं तुसीं।
1: हाँ,
0: इस तो वड़ा ता काम कोई है ही नहीं।

दुनिया ने आके नहीं तेरे हथिया ते रखी दुनिया ने आके नहीं ओ एमी सड़ते तड़पते रहते ते लोकी।

0: बस दूर में दिल नाल नाल रवे आप दूर दूर में दिल नाल नाल रवे आप दूर दूर में एवे चौकीदार बन बन बैंदे ते लोकी पैड़े शक कर दे ते लोकी पैड़े शक कर दे किते दंद हसनू नहीं रेंदे ते लोकी पैड़े शक कर दे ते लोकी पैड़े शक कर दे।
1: देखो जी लोकां ने शक तो कर रही हैं और शक लोकां ने उदों भी करना जदों उन्होंने मैसेज में ना पड़े क्योंकि मेरे को दो मैसेज पाए ने वो भी पढ़ना बहुत जरूरी है। तीजा मैसेज भी है जी कृष्ण लाल राजू दीपू शीतल श्रद्धा शारदा दीपक शारदा शीतल शारदा विवान गोपाल पिंड मक्खनपुर जम्मू तो साढ़े नाल ने बहुत बहुत धन्यवाद जी। जम्मू की गल की थी ते मैं दो दिन पहला ही जम्मू कश्मीर तो होके आया जम्मू तो माता वैष्णो देवी तो कटरे तो होके आया तो माता ने बुलावा आया सी जम्मू की गल आई तो गल याद आ गई। तो यवतमाल महाराष्ट्र तो संतोष खड़गे तो विनोद खड़के ये भी जुड़ गए ने साडे नाल और बहुत बहुत धन्यवाद जी। तुसीं इन्नी दूरों सानू मैसेज किया भावें किया वट्सएप ते ही है पर किया बहुत दूरों है। डॉक्टर रमेश कुमार जजोरिया गीता राणी गगनदीप आरजू गुड्डू पटेल नगर मनोड़ तो साडे नाल जुड़े ने इन्हां दा भी बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। तो लो जी इन्हां सारयां दी मिली जुली जिहड़ी फरमाइश है ना वो तुहानू सुनाउण जा रहे हैं और उम्मीद है ये मिली जुली फरमाइश तुहानू पसंद जरूर आएगी क्योंकि ये गीत भी बहुत वधिया मेरे भी दिल दे बहुत करीब है। ये गीत है शाजिया मंजूर दा गाया हुआ ये गीत है।

0: दोस्तों स्वागत प्रोग्राम चल रहा है थोड़ा दोस्त गौरव थोड़े नाल है और कॉल करने लिए नंबर हाजिर है 0181-2342-171। आ देखो ये कॉल बजदी है ना इदा बस इदा ही तुसी नंबर मिलाओ कॉल बजेगी आओ कर दें गलबात। नमस्कार जी कौन बोल रहे ने?
1: हेलो
0: हेलो जी कौन बोल रहे ने?
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी कौन बोल रहे ने? कांता जी बहुत बहुत स्वागत है। मैं तीन बार पूछना पाया कि कौन बोल रहे ने, मैं लगे कि ओह किसी सैलीब्रिटी का फोन आ गया ता ही दसता नहीं पाया कि कौन बोल रहा है।
1: कांता वर्मा बोल रही।
0: हाँ मैं लग गया पता जी हूँ। तो कांता जी की हाल चाल है?
1: बढ़िया है जी।
0: कांता जी केड़ी जगह तो गल कर रहे हो? सोलन तो गल कर रहे हो? तो सोलन का मौसम किदा था? ठंड शुरू हो गई या नहीं अजे?
1: हाँ जी बहुत बारिश हो गई जी।
0: बारिश? हाँ बारिश तो अज इत्थे भी हुई सी सवेरे सवेरे ते तुहाडे भी बारिश काफी हुई है?
1: काफी हो गई जी। और वहां पे पर और कांगड़ा पालमपुर में बर्फ पड़ी हुई जी।
0: बर्फ पड़ी है पालमपुर च जी?
1: हाँ जी जी तक ट्रेनिंग को गया हुआ ना पुलिस की।
0: अच्छा पालमपुर च बर्फ पड़ी है तो मतलब फिर आना पैना सानू जे बर्फ पै गई है तो। चलो ये दसो गीत केड़ा सुनना है? सिंगर दा गीत सुनना?
1: गीत सुना दो सर जी आप कलाकार तो बहुत है पंजाबी है ना?
0: हाँ जी
1: कलाकार काफी है पंजाबी में।
0: हाँ बहुत सारे कलाकार ने सरदूल सिकंदर दा सुनाया, दलजीत दोसांझ है और एमी विर्क है, बहुत सारे कलाकार ने। तुसी किन्ना दा सुनना है?
1: आप सुना दो बब्बू मान की आवाज में।
0: हाँ मैनू पता नहीं क्यों लग रहा सी तुसी बब्बू मान जी दा ही सुनोगे। गीत चलाने बहुत पसंद है बब्बू मान जी दी गीत नूं सुनने की फरमाइश की है, वह गीत तुहानू सुनाने आ। साडे नाल जुड़े हो सानू कॉल की है, बहुत बहुत धन्यवाद कांता जी।
1: ठीक है सर जी आपके प्रोग्राम बहुत अच्छे चले हुए जी सारे।
0: शुक्रिया जी तुहानू सारे नूं पसंद है। थैंक यू थैंक्स अ लॉट।
1: हाँ जी हाँ जी सर आपने कॉल उठा दी उसके लिए धन्यवाद जी।
0: थैंक यू जी धन्यवाद।
1: क्योंकि बहुत बार कॉलें लगी ऐसे जाती थी मतलब रेंज जाती थी।
0: देखो जी टाइम लगता है और टाइम का फल मिठा होता है तो आओ फिर सुनते हैं तुहाडा गीत। धन्यवाद।
1: ठीक है
0: ये सन कांता वर्मा जी और बब्बू मान का इन्होंने गीत सुनना। बब्बू मान के बहुत सारे गीत मेरे को पे ने ते आओ फिर एक गीत जरा मेरे भी दिल के बड़ा करीब है। वैसे तो मेरे सारे गीत दिल के बहुत करीब ने पर कुछ गीत ने जोड़े बहुत चंगे लगते हैं जो खास करके बब्बू मान जी की आवाज़ गाए जाते हैं तो आओ सुनते हैं फिर।

प्रोग्राम चल रहा है जी सौगात और आखिरी कुछ पल जड़े ने थोड़े नाल ने क्योंकि रात के 12:52 जड़े ने वो हो गए ने और मैसेज मेरे को कुछ पए ने आओ पढ़ दियो मैसेज टीडी मल्होत्रा ऋतिक मल्होत्रा प्रतीक मल्होत्रा अनिल शर्मा जयवीर सिंह डॉक्टर अमनदीप ते इन्हां दे बहुत सारे साथी जुड़े ने सैक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ तो बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र कुमार मलकीत कौर आरती रानी राघव हरमन ते इन्हां दा सारा परिवार ज़िला अंबाला हरियाणा तो साढ़े नाल ने इन्हां दा भी धन्यवाद और एक होर मैसेज आया है इन्होंने अपना नाम नहीं रखिया कोई लिंक भेजिया देखो जी लिंक ना भेजो नाम भेजो सानू निसार सलमानी नौशाद सलमानी बेबी आलिया ते आयान बाबू ये भी जुड़ गए ने तेली वाला तो बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद मैसेज किया है तुसी सानू शंभू दयाल खटक विमला देवी अमरजीत सुंदर लाल खटक योगेश कुमार दीपक कुमार कुमारी पूजा खटक ये पिंड जखौद राजस्थान तो ने आ जाओ जी राजस्थान वाले तुसी भी आ जाओ बस तुहाड़ी घाट सी तुहाड़ी थोड़ सी तुहाड़े प्यार दी लोड़ सी शिवाजी चौंक कटनी तो अनिल ताम्रकार अमर दिलीप राजू रजन रंजन विपिन प्रकाश अरुण संजय पवन सुनील लालू सोना मोना हनी ते उन्होंने बहुत सारे साथी वह भी जुड़ गए ने जी आया जी मुहम्मद सईद अब्बासी निहत परवीन शहनवाज अब्बासी सरफराज फरदीन सुहान अरजान अब्बान ते सारा का सारा अब्बासी परिवार जुड़िया मोहल्ला चौखुंटी बुलंद शहर तो लो जी इन्हां दी भी जड़ी शिरकत है ना वो हो गई है और होर बहुत सारयां दी शिरकत जड़ी अज होई है उन्हां सारयां नूं बहुत बहुत मुबारकबाद भी है धन्नवाद भी है कि इस तरह थोड़ा जिहड़ा प्यार है ना साढ़े नाल बनिया रहना चाहिए तो प्रोग्राम के आखिर दे विच हुण मास्टर सलीम दी फरमाइश दा एक गीत चलान जा रहा

जैसे ही गीत नाल सौगात प्रोग्राम होने से खत्म होता है, लेकिन तुसी जाना कितने नहीं, क्योंकि साडा अगला सैगमेंट शुरू होने जा रहा है जिहदा नाम है पंजाबी मेलोडियस गीत। और उस तो बाद ठीक 2 बजे तुसी सुनोगे पंजाबी दो गाने, और फिर असी चलांगे तुहानू सरवण करवान भगती संगीत दे नाल, भगती संगीत दे रास्ते नाल गुरबाणी विच।

माफ करना स्रोतों, तकनीकी खराबी दे कारण ये जड़ा गीत है वो नहीं चल पा रहा। तो हुण असीं तुहानू सुणाने आ हंसराज हंस तक आया ये हीर।

गुरबाणी प्रभु दी उस्तत है, सच्ची सिफत सलाह है, सच्चे दी कीर्ति है। मनुखी मन अते इंद्रियां दा उचित प्रयोग यही है कि इन्हां नूं चंगे पासे लाया जावे। इस नाल समा भी सफल हुंदा है ते इंद्रियां दा परिवार भी सफल हुंदा है, पर यह समा प्रभु दी कृपा सदका ही टुकदा है। सूही राग विच उचारे हुए शब्द विच पंचम गुरदेव बेनती करदे हुए फरमाउंदे ने, हे दीना उत्ते दया करन वाले दयालु प्रभु, मेरी बेनती सुनो। जिस तरह साधु जन सदा प्रभु दे गुण गा के रस माणदे हन, अमृत रस प्राप्त करदे हन, कृपा करो मेरे लिए भी ऐसा

योग बनाओ कि जिस वेले मेरी रसना भी प्रभु दा नाम उचार सके। हे प्रभु जी, आप जी दी याद सिमरन ही मनुखा जीवन है। जिस उपर प्रभु जी आप मेहर करदे हो, उही आप दी निकटता हासिल कर सकदा है। आप उससे दे ही अंग संग हो जांदे हो। प्यारे जीवानू आप जी दे सच्चे नाम दी भुख हुंदी है, ते इस नाम दे दाते प्रभु जी आप ही हो। सृष्टि विच रमे हुए राम नू चेते कीत्या ही संतां प्रभु प्यारिया ने आत्मिक सुख माणिया है, ते ए दात सब किछ जाननहार प्रभु दे हथ विच ही है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंग 743 ते फरमान है, से संजोग करो मेरे प्यारे, जित रसना हर नाम उचारे। इस शब्द का गायन कीता है भाई गुरमेज सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

से संजोग करो मेरे प्यारे, जित रसना हर नाम उचारे। इस शब्द गायन की तसी पाई गुरमेज सिंह ते उनादे रागी जत्थे ने। आपे बहु बिद रंगला सखिए मेरा लाल, नित रवै सुहागणी देख हमारा हाल। इसी तरह ही फरमान है, आपे हर एक रंग है आपे बहु रंगी। गुजरी राग विच उचारे हुए शब्द विच पंजवें पातशाह मन नू मोह लैण वाले प्रभु नू प्राणा दा आसरा जिंद जान मंदे ने। उस रंगले प्रभु नू अपने हिरदे विच वस्या जान के उस दी अश्चर्ज लीला नू वेखते हुए प्रसन्न हुंदे ने ते हिदायत करदे ने कि दिने राती उस प्यारे प्रभु दी आराधना करन दे कारज विच ढिल नहीं करनी चाहीदी। अपने मन दा हठ त्याग के संतां दी सेवा भावना रख के मन नाल करनी चाहीदी है। उस प्रभु नू जेते कीत्यां मन विचों विकारां दा जंजाल लह जांदा है, मन आनंदित हो जांदा है, उसकी आराधना करनी बनती है। फिर जदों उस नाल मिलाप हो जांदा है तां उस आनंद दी महिमा बयान तो परे है। इसे करके फरमान है, दिन राती आराधो प्यारो निमक न कीजे टीला, संत सेवा कर पावनी लाइए त्याग मान हाठीला। इस शब्द गायन कीता है भाई गुरिंदर सिंह होरां दे रागी जत्थे ने।

0: दिन राती आराधो प्यारो निमक न की जय टीला संत सेवा कर पावनी लाइये त्याग मान हठीला। इस शब्द अगायन की तसी पाई गुरिंदर सिंह ते उना दे रागी जत्थे ने। हुण सरवण करदे आ इस शब्द दी व्याख्या। व्याख्याकार ने प्रिंसिपल बलदेव सिंह।
1: यह पावन शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पवित्र अंग 478 गुजरी राग विच श्री गुरु अर्जन देव जी दे पवित्र मुखवार बंध तों उचारिया होया है। गुरु साहिब जुग्यासु नूं संबोधित हुंदे होए फरमाउंदे हन कि हे प्यारे गुरसिखो, परमात्मा दा नाम जपो, उस दी आराधना दिन रात स्वास स्वास करदे रहो। दिन राती आराधो प्यारो निमख ना कीजै ढीला। इन्हां पावन पंक्तियां विच आराधो शब्द आया है जो कि आराधना शब्द तो बनिया है। आराधना पुरातन संस्कृत का मूल शब्द है जिसका अर्थ है पूजा करना, भक्ति करना, इबादत करना। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच आराधना शब्द की वरतों गुरु साहिब जी ने बार बार की है, जिमें आराधो आराध आराध्या आराधी। परमात्मा की आराधना करने वाला मनुख आप तो सरदा है, अपने नाल जगत को भी तार दिता है। गुरबाणी का फरमान है जन नानक नाम आराध्या सब जगत तराया। जड़े मनुख परमात्मा की आराधना करते हैं उन्हां दे बराबर कोई होर नहीं हो सकता। गुरबाणी का फरमान है जन नानक नाम आराध तू तिस अपड़ को ना सिकाही। आराधना का कोई समा स्थान निश्चित नहीं है क्योंकि परमात्मा हर जगह ते है ते जदों मर्जी उसनू असी याद कर सकते हैं। गुरबाणी का फरमान है जिथे हर आराधी है तिथे हर मित सहाई, गुर किरपा ते हर मन वसै होर तबिद लया ना जाई। परमात्मा आप पूरा है, उसका नाम पूरा है, सो हे मनुख परमात्मा दे नाम दी आराधना कर। गुरबाणी का फरमान है पूरा प्रभ आराध्या पूरा जां का नाओ, नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। इस तरह गुरबाणी का एक होर शब्द है आराधना आराधन नीका हर हर नाम आराधना, उदा सोना नाम हे मनुख तू जपना कर। गुरबाणी का फरमान है जे सुख देहे ता तुझे आराधी, दुख भी तुझे त्याई, जे भुख देहे ता इत ही।

आओ जी, तू आओ हमारे हर जस श्रवण सुनावना। तुद आवत मेरा मन तन हरिया, हर जस तुम संग गावना। इस शब्द गायन की तसी पाई बख्शीश सिंह ते उन्होंने रागी जत्थे ने।

कुदरत पातालीं आकाशी कुदरत सर्व आकार कुदरत वेद पुराण तेबा कुदरत सर्व विचार कुदरत खाना पीना पहनन कुदरत सर्व प्यार कुदरत जाति जिनसी रंगी कुदरत जी जहार कुदरत नेकियां कुदरत बदियां कुदरत मान अभिमान कुदरत पौन पानी।

0: गहने पौन पानी बैसंतर चंद सूरज अवतार सगली तरतल सगली धरती माल तन वर्तन सर्व जंजा नानक मुसे ज्ञान विहुणी खाए गया जमकाल माला पहला
1: वायन चेले नचन गुर पैर हलायन फेरन सिर उड़ उड़ रावा चाटे पाए

पौड़ी बिन सतगुर के ना पायो, बिन सतगुर के ना पाया। सतगुर विच आप रखियो ओंकार प्रगटाक सुनाया। सतगुर मिले सदा मुक्त है जिन विचों मोह चुकाया। उत्तम विचार है जिन सच्चे सो

मूर्ख पंडित हिकमत हुज्जत संजय करे प्यार धर्मी धर्म करे गवावे मंगे मोक्ष द्वार जति सदावे जुगत न जाने छड़ पहे करबार

सवैये श्री मुख बाक्या महला पंजवा आद पुरख करता कारण कारण सब आपे सर्व रहो भरपूर सगल का

सारे, जी जंत सब थारे, सगल को दाता एक है अलख मुरारे, आप ही अपन तारे, कुदरत है देखारे, वर्ण चहन नाही मुख नाम सारे, जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म संसार, एक जी क्या बखाना, हाँ के बल बल बल बल सद बलिहार, सर्व गुण निदान कीमत ना ज्ञान ध्यान, ऊचे ते ऊचो जानी जय प्रभ तेरो थान, मन तन तेरो प्राण एक है सूत है जहान, कमन उपमा देओ बड़े ते बढ़ान, जाने कौन तेरो पेओ अलख पार देओ, अकल कला है प्रभ सर्ब को तान, जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म संसार, एक जी क्या बखान है, हाँ के बल बल बल बल सद बलिहार।

0: अशल पूर्ण अवनासी हर खवन अनंतर निर्मल विगासी गुण गावे बे अंत अंत एक तिल नहीं पासी जा को हो हे कृपा सो जन प्रभ तुम्हें मिलासी तन तन ते तन जन जय कृपाल हर हर प्यो हर गुर नानक जिन परस्यो से जनन मरण दो थेरे हो तन तन ते तन जन जय कृपाल हर हर प्यो हर गुर नानक जिन परस्यो से जनन मरण दो थेरे हो
1: सत सत हर सत सत सते सत फणिए दूसर आन अवर पुरख पौरातन सुनिए अमृत हर को नाम लैत मन सब सुख पाए जे रसन चाखियो तेजन तिपत अगाए जे ठाकुर सो प्रसन्न पियो सत्संग तै प्यार हर गुर नानक जिन परस्यो तिन सब कुल कियो उदार जे ठाकुर सो प्रसन्न पियो सत्संग तै प्यार हर गुरु नानक जिन परस्यो तिन सब कुल कियो उधार
2: सच सभा दीवान सच सच्चे पै धरियो सच्चे तख्त निवास सत पावस करियो सत सिरजियो संसार आप भुल न भुलो रतन नाम अपार कीमनो भवे अमुलो जय कृपाल होयो गोबिंद सर्व सुख तिन्हु पाए हर गुर नानक जिन परस्यो ते बोर फिर जोड़ न आए कवन जोग कौन ज्ञान ध्यान कवन भी दुस्तत करिए सिद्ध साधक ते तीस कोर तेर कीम ना परिये ब्रह्मा दिक संकाद से गुणंत ना पाए अगौ ग्यो नहीं जाए पूर सर्व रहो समाए जे

0: जपियो जिन अर्जुन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आयो।
1: काची दे मोह फुन बांधी, सठ कठोर कुचील को ज्ञानी, तावत भ्रमत रहन नहीं पावत, पार ब्रह्म की गत नहीं जानी। जोबन रूप माया मद माता, बिचरत बिकल बड़ो अपमानी, पर तन पर अपवाद नार निंदा, जह मीठी जी माहे तानी। बल बंच शाप करत उपावा, पेख तो सुन तो प्रभ अंतर जामी, सील धर्म दया सोच नासत, आयो शरण जी के दानी। कारण करण समर्थ

0: देहे न गेहे न नेह न नीता, माया मत कहां लो गारो, शतर न पतर न चोर न चावर, बहती जात हृदय न बिचारो, रथ न असव न गज सिंघासन, छिन में त्यागत नांग सिधारो, सूर न वीर न मीर न खानम, संग न को दृष्ट निहारो, कोट न ओट न कोस न छोटा, करत विकार दउ कर चारो, मित्र न पुत्र क्लतर साजन सख, उल्टत जात बिरख की शारो, दीन दयाल पुरख प्रपूरन, छिन छिन सिमरो अगम पारो, श्रीपत नाथ सरन नानक जन, हे भगवंत कृपा कर तारो।
1: रंचक रेत खेत तन निर्मत, दुर्लभ दे सवार तरी, खान पान सोदे सुख पुंचत, संकट काट विपत हरी, मात पिता भाई अर बंदप, बूजन की सब सूझ परी, वर्धमान होवत दिन प्रतनित, आवत निकट।

रसक ठाकुर गुण गावत, इंद्र मुनिंद्र खोजते गोरख, तरन गगन आवत फुन तावत, सिद्ध मनुख देव अर दानव, इक तिल ताको मर्म न पावत, प्रिया प्रभ प्रीत प्रेम रस भगति, हर जन ताके दर्श समावत, तिसे त्याग आन को जाच है,

हमें आव गुण पर एक गुण नाही, अमृत छाड बिखे बिख खाई, माया मोह परम पै पुले सुत

का नाम रते लेवलाए। सदा तान आंतर नाम संभाले, जीव जानत जिन है प्रतपाले। मुकत पदार्थ तिन को पाए, हर के नाम रख

अंतर परवास हर नाम त्यागे रहाउ एहो हर रंग गूड़ा तन पिर हो सांत सीगार राव प्रभ सो प्रभ कोई न पाए मूल हो पुल्ला जनम

पांच रती प्रभ आप मिलाई। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। तनासरी महला तीजा, सदा तन अंतर नाम संभाले। जीव जंत जिन्ह प्रतपाले, मुक्त पदार्थ तिन को पाए। हर के नाम रते लेवलाए।